आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

नाम भी उसका रावण, उसका जीवन उसका मरण भी उसका पांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आग तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में नाद उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: अच्छी वजह है। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना। नमस्कार।
1: नमस्कार नितुषा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सेशल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम के साथ वहां इस समारोह में भाग लेने गए हुए हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 50वीं वर्षगांठ के समारोह में राष्ट्रीय एकता और देश की उपलब्धियों को विशेष रूप से उजागर किया जा रहा है। करण एतवा की मौत की जांच अब हत्या की ओर रुख कर रही है। कल किए गए पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष निकाला गया कि करण एतवा की मृत्यु स्कल फ्रैक्चर के कारण हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर ने अपराध की संभावना को प्राथमिकता दी है। डॉक्टर के अनुसार मृतक के सिर पर पाए गए घाव किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए हमले के कारण हो सकते हैं। बाचीमाहे रहने वाले 31 साल के करण एतवा शनिवार 27 जून की शाम को सुहिनाम में सड़क किनारे मृत पाए गए। इस मामले की जांच अब सुयाकी सीआईडी कर रही है। बताया गया है कि घटनास्थल पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनागानो में हुई एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद किया गया। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है।

0: परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हो गया। कुछ घंटों के बाद उससे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबोद के रूप में हुई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। विदेश की खबरों में फ्रांस में ये दुखद घटना। फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक नागरिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी लोग, पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो पहली बार स्काई डाइविंग करने गए हुए थे। ये विमान जो एक पैराशूटिंग स्कूल द्वारा संचालित हैं, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। बताया गया कि कुछ पीड़ितों के परिजन भी दुर्घटना के समय एयरफील्ड पर मौजूद थे, क्योंकि वे पहली बार किए जाने वाले टैंडम जंप्स को देखने आए हुए थे। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल दिन के दौरान स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद दक्षिणी और पूर्वी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर कोहरा भी छाया रहेगा। रात तक को भी बादल घिर रहेंगे। पूर्वी दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लाटू पर कुछ बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। सुबह सूर्योदय 7:45 बजे, शाम को सूर्यास्त 5:41 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: सुबह के 6:06 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आज सोमवार 29 जून 2026 इस सप्ताह का पहला दिन है और इस दिन की शुरुआत हम आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम को लेकर। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ निभाएंगे। और आपका दिन कैसा शुरू हो रहा है ये भी बता दीजिए, लेकिन अभी के लिए चलिए हम सुनते हैं जागृति।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवार मोह नवम वयम कांतिमिदं वपुश्च येनार्पितं तत् जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। जागृति कार्यक्रम के सभी

श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का विषय है सत्यार्थ प्रकाश में स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुलासों को पूर्ण करने के पश्चात स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश विषय को लिखते हैं। स्व का अर्थ होता है अपना और मंतव्य का अर्थ होता है मान्यता। अर्थात यहाँ पर ऋषिदेव दयानंद जी अपने खुद की जो मान्यताएं हैं व अमान्य विचारों का दर्पण का वर्णन करते हैं। इस विषय का प्रारंभ महर्षि दयानंद जी 2 महत्वपूर्ण शब्दों से करते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, अर्थात हमारी मान्यता कैसी होनी चाहिए, तो कहा सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र का अर्थ होता है ऐसी सिद्धांत जो सर्वमान्य हो, अथवा जो सभी शास्त्रों द्वारा मान्य हो। महर्षि दयानंद जी का यह मानना है कि वे जिस विषय को मानते हैं वह विषय सभी आर्ष शास्त्रों द्वारा स्वीकार्य होता है। आगे प्रथम वाक्य में ही स्वामी जी और एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वे लिखते हैं साम्राज्य सार्वजनिक धर्म, अर्थात हमारी मान्यता ऐसी होनी चाहिए जिससे विश्व के सभी लोग माने, अर्थात भौगोलिक रूप से हमारी मान्यता सर्वमान्य होनी चाहिए। मान्यता या मत ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई सीमा ना हो, विश्व के सभी कोनों में सबके लिए सामान्य हो और स्वीकार्य हो। इस कारण स्वामी जी इसको सनातन नित्य धर्म कहते हैं, जो सदा से होता रहा है और भविष्य में भी रहे, उस मत को हमें माननी चाहिए और हमारी मान्यता का कोई भी विरोध न कर सके, सर्वमान्य होने चाहिए। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि जो इस प्रकार की मान्यता वाले होते हैं वे बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान वही हैं जो अविद्या व भ्रम से युक्त विचारों का स्वीकार न करें, परंतु आप्त लोगों की बात माने। आप्त पुरुष किसको कहा गया, तो ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्यमानी, अर्थात जो सत्य मानता है, सत्य बोलता है, सत्य कर्म करने वाला, परोपकारी, परोपकारक, पक्षपात रहित विद्वान को आप्त पुरुष कहा गया है। बुद्धिमान लोगों को इन्हीं आप्त पुरुषों की बातों को माननी चाहिए। स्वामी जी आगे लिखते हैं जो वेद आदि सत्य शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंतों के माने हुए ईश्वर आदि पदार्थ हैं जिनको मैं मानता हूँ। इस स्वमंतव्य प्रकाश में स्वामी जी इन्हीं वेद आदि शास्त्र एवं ऋषियों की मान्यता को सामने प्रकाशित करते हैं। वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि वे अपना खुद का मंतव्य नहीं डाल रहे हैं, वे तो आप्त पुरुषों एवं वेद आदि सत्य शास्त्रों के आधार पर ही अपना मत रखते हैं। अभी तक हमने देखा कि जिस धर्म व विषय को ऋषि मानता है वह सभी लोगों द्वारा स्वीकार्य होनी चाहिए, अविद्या एवं ब्रह्म से रहित होनी चाहिए, आप्त पुरुषों की बात माननी चाहिए, वेद आदि सत्य शास्त्रों के आधार पर मान्यता होनी चाहिए और ब्रह्म से लेकर जैमिनी ऋषियों पर्यंत के विचारों को ही वे मानते हैं। ऋषि जी लिखते हैं कि वे अपना मंतव्य उसी को मानते हैं जो सभी तीनों कालों में एक सा मानने योग्य हों, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्यत काल में जो मान्यता एक हो, जिसमें काल परिवर्तन के कारण कोई भी बदलाव न हो, तीनों कालों में एक सा हो, उसको माननी चाहिए। उदाहरण के रूप में सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, इसको सभी लोग मानते हैं। इस मान्यता को सभी देशों में एवं हर एक काल में मान्य होती है, अतः हमारी मान्यता भी ऐसी होनी चाहिए। पुनः स्वामी जी लिखते हैं कि

0: हमारी मान्यता में पक्षपात नहीं होनी चाहिए। पक्षपात रहित होकर के ही सत्य को माना जाता है। वैदिक धर्म मनुष्य मात्र के लिए विचार देता है, न कि एक विशेष मत या संप्रदाय के लिए। स्वामी जी लिखते हैं, यदि वे पक्षपात करते तो वे उस समय में अर्थात उनके समकालीन में प्रचलित कोई भी मत में से किसी एक का स्वीकार कर लेते, परंतु महर्षि यह मानते हैं कि जो अधर्मयुक्त चाल चलन है उनको त्याग देना चाहिए। उन्होंने यह देखा कि अन्य मतों में पक्षपात एवं वेद विरुद्ध मान्यताएं प्राप्त हैं, अतः मनुष्य वही हैं जो इन पूर्वोक्त कथित मान्यताओं के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। ऋषि दयानंद जी यह मानते हैं कि मनुष्य को मननशील होने चाहिए। निरुक्त में भी आया है, मत्वा कर्माणि सेव्यन्ति इति मनुष्यः। जो मनन पूर्वक अपने कर्मों को करता है वही मनुष्य होता है। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करनी चाहिए। मनुष्य वह है जो अपने समान अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को समझे। अन्यायकारी बलवान से भी वह न डरे, न्यायकारी धर्मात्मा निर्बल से भी डरे। मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह धर्मात्माओं की रक्षा करने वाले हो, और अधर्म चाहे चक्रवर्ती बलवान गुणवान भी क्यों ना हो, उसका नाश एक न एक दिन हो ही जाता है। अतः मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि वह कभी भी अधर्म का साथ न दे। मनुष्य धर्म दर्शाने के लिए स्वामी जी अनेक श्लोकों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वे सर्वप्रथम भर्तृहरि जी का श्लोक प्रस्तुत करते हैं, निंदन्तु नीतिपूर्णान् दीयास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यान्यान्त पन्थः विचलन्ति पदं न धीराः। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें, धन चाहे आए या अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए, मृत्यु आज ही हो या युगों के बाद हो, जो धैर्यवान और साहसी पुरुष होते हैं वे कभी भी न्याय और सत्य के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। पुनः महर्षि दयानंद जी महाभारत का श्लोक प्रस्तुत करते हैं, न जातो कामान भयन लोभ धर्मः तेज जीवी तस्यापि हेतोः धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्यः त्वनित्यः। मनुष्य को किसी भी इच्छा भय लालच या अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी धर्म अर्थात कर्तव्य और नैतिकता का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म शाश्वत एवं नित्य हैं, जबकि सुख दुख क्षणिक हैं। आत्मा नित्य हैं, पर इससे बंधन में डालने वाले शरीर और परिस्थितियां अनित्य हैं। इस प्रकार मनुष्य के कर्तव्य का उल्लेख करते हुए महर्षि दयानंद जी विस्तार रूप से अन्य श्लोकों का भी वर्णन करते हैं। इसके बाद वे 51 शब्दों को अपने मान्यता के अनुसार वहाँ प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से उन्होंने सबसे पहले ईश्वर विषय को प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार यहाँ पर स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी अपने मंतव्यों को प्रस्तुत करते हैं, जो वेद आदि सत्य शास्त्रों के आधार पर हैं। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

0: 6:21 हुए हैं, जहां श्रोताओं हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बस खुद पर विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ना हमारा काम है। चलिए अभी के लिए हम सुनने जा रहे हैं सत्यात प्रकाश पर विशेष कार्यक्रम, और इसके बाद भूलिएगा नहीं 6:30 आप सुनेंगे समाचार। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। सम्माननीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में आर्य सभा द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के दसम समुल्लास पर चर्चा करेंगे। इस समुल्लास का एक विषय है आचार अनाचार, यानी कि आचरण और अनाचरण, कंडक्ट एंड मिसकंडक्ट। श्रोतागण, मनु महाराज के अनुसार मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जिसका सेवन राग द्वेष रहित विद्वान लोग नित्य करें, जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य वही धर्म माननीय और करणीय है। श्रोतागण, हर व्यक्ति इतना योग्य नहीं कि सही और गलत की पहचान कर सके, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि अपने से सीनियर है विद्वान लोग, ऋषि मुनि, वे क्या करते हैं उनके कर्मों के आधार पर चलना, यही आचार है। श्रोतागण, एक उक्ति है आचारः परमो धर्मः, यानी कि सदाचरण ही हमारा कर्तव्य है। सदाचरण क्या है तो महर्षि बताते हैं कि सत्पुरुषों का संग और सद विद्या का ग्रहण करना ही सदाचरण है। श्रोतागण, यजुर्वेद एक प्रकार की आचरण संहिता ही तो है। इनके हर मंत्र में बताया गया कि किस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। महर्षि आगे लिखते हैं कि हमें अपने 10 इंद्रियों को, यानी कि 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों को हरण करने वाले विषयों को चित्त के सहयोग से रोकने का प्रयत्न करें। वे उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे घोड़ों को सारथी हाँक कर अच्छे मार्ग पर चलाते हैं, इस प्रकार इनको अपने वश में करके पतन यानी कि बुरे रास्ते से हटा कर अच्छे रास्ते पर चलाते हैं। इसके विपरीत करने से यही अनाचरण बन जाता है। श्रोतागण, आजकल देखा जाता है कि कई शिक्षित लोगों के आचरण ठीक नहीं रहता। भौतिक विद्या प्राप्त हो गई पर आध्यात्मिक विद्या में शून्य के बराबर। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि शिक्षा अगर वर्ताव में न दिखे तो डिग्री महज कागज का एक टुकड़ा है। एक कहावत है जान भारे क्रिया बिना, अर्थात आचरण के बिना जान केवल भार होता है। श्रोतागण, शिष्टता सद्व्यवहार के प्राण है। व्यवहार में इस गुणों का समावेश होने पर ही पता चलता है कि व्यक्ति कितना सुसंस्कारी है। प्रायः लोग आत्मीयता जताने या अपने को दूसरों से बड़ा सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों से आदेशात्मक शैली तू तेरे का संबोधन करते देखते जाते हैं। इसका यह अर्थ होता है कि व्यक्ति में सेवा भावना होते हुए भी अच्छे संस्कारों की कमी है, अथवा केवल वह अपने अहंकार का पोषण करने के लिए इस क्षेत्र में आया है। हर किसी से आप या तुम का संबोधन तथा बातचीत करने में निर्देशात्मक अनुसार शैली के स्थान पर सुझाव शैली का उपयोग सिद्ध करता है कि लोकसेवी कोई संदेश लेकर पहुंच रहा है, न कि अपने बड़प्पन या विद्वता की छाप छोड़ने के लिए। शिष्टता का अर्थ है प्रत्येक के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार, अर्थात प्रत्येक के प्रति स्नेह और आत्मीयता का भाव रखना। श्रोतागण, संपर्क में आते ही मनुष्य के जिस कर्म का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है वह व्यवहार ही है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति और उसके बोलने का ढंग ही प्रथम संपर्क में आते हैं। खान पान की आदतें, रहन सहन, स्वभाव और आचार विचार बाद में मालूम पड़ते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय व्यवहार से ही मिलता है। इसलिए कहा गया है कि व्यवहार मनुष्य की आंतरिक स्थिति का विज्ञापन है।
सुंदर देह से सुंदर आचरण

0: अच्छा है। श्रोतागण, स्वामी जी लिखते हैं कि असंस्कृत मन अशिष्ट व्यवहार के लिए प्रेरित करते हैं। कुसंस्कारी चित्त उसी प्रकार व्यवहार के माध्यम से अपना परिचय दे देता है और पहले संपर्क की प्रतिक्रिया अंत तक अपना प्रभाव कायम रखती है। इसलिए लोक सेवी को अपने व्यक्तित्व का गठन करते समय आचरण, रहन सहन और स्वभाव को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ व्यवहार के द्वारा भी अपनी आदर्शवादिता का प्रभाव छोड़ना चाहिए। श्रोतागण, यदि आंतरिक एकात्मता उत्पन्न करने के प्रयास न किए गए तो व्यवहार में बनावटीपन बना ही रहेगा और एक न एक दिन वास्तविकता सामने आने से न रोकेगी। श्रोतागण, महर्षि आगे लिखते हैं कि सद्व्यवहार के लिए संयमी होना अनिवार्य है। संयमी उसे कहते हैं जो प्रशंसा सुनकर प्रसन्न और निंदा सुनकर दुखी नहीं होता, अच्छे स्पर्श रूप रस गंध शब्द आदि से प्रसन्न और बुरे विषयों से व्याकुल नहीं होता, कभी बिना पूछे व अन्याय से पूछने वाले को उत्तर न देवे और सरल जिज्ञासु जनों को बिना पूछे उपदेश करे, आयु के बड़ी होने से कोई वृद्ध नहीं होता, अधिक विद्वता बालक होने पर भी वृद्ध से बड़ा मान्य है। श्रोतागण, हमें मात्र प्रवचन से नहीं बल्कि आचरण से बदलाव लाने की संस्कृति पर विश्वास करनी चाहिए। श्रोतागण, अगर हम इस ग्रंथ को पढ़ें तो व्यवहार में लाएं और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: KHz यह है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के 6:30 हैं। सभी को नमस्कार। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम के साथ वहां इस समारोह में भाग लेंगे। सुयाक में हुई ये घटना कर नेतवा की मौत की जांच अब हत्या की ओर रुख कर रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्कल फ्रैक्चर का कारण तेज धार वाले हथियार से किए गए हमले बताया गया। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनाहानो में हुई एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। वहां मलगासी मूल की एक महिला का शव बरामद और मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबोद को दोषी पाया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसे गोली लगी। विदेश की खबरों में फ्रांस में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत। ये सभी वहां पर अपने इंस्ट्रक्टर के साथ स्काई डाइविंग करने गए हुए थे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए राउंड ऑफ 32 का दौर शुरू हो चुका है। कल पहला मैच खेला गया। इस राउंड के लिए कनाडा के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम टकराई। स्कोर रहा कनाडा 1 और बाफना 0। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पेश है समाचार विस्तार से। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम अपनी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम के साथ वहां इस समारोह में भाग लेने गए हुए हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशल

एस ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 50वीं वर्षगांठ के समारोह में राष्ट्रीय एकता और देश की उपलब्धियों को विशेष रूप से उजागर किया।

0: मृतक के सिर पर पाए गए घाव किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए हमले के कारण हो सकते हैं। बाचीमागे रहने वाले 31 साल के कगन इतवा शनिवार 27 जून की शाम सुरीनाम में सड़क किनारे मृत अवस्था में मिले। इस मामले की जांच अब सुयाक की सीआईडी कर रही है। बताया गया है कि घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनाहानो में हुई एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद हुआ। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हुआ। कुछ घंटों बाद उसे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबुद के रूप में हुई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ। बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। फिलहाल मॉरिशस में कानूनी व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: गए 27 जून को मडागास्कर के उत्तर उत्तर पूर्व में स्थित मनानारा में ये घटनाएं पेश आईं। सूत्रों के मुताबिक वहां की पुलिस को मलगासी वक्त के हिसाब से सुबह 4:30 बजे एक फोन कॉल मिला। स्थल पर पहुंचते ही पुलिस ने मलगासी मूल की एक महिला की लाश देखी। पहला संकेत और पहला शक हथियार से उसका कत्ल किया गया होगा। उस औरत के रिश्तेदारों ने कहा कि संदिग्ध उसका साथी था जो ये जुर्म करने के बाद फरार हुआ। 10 बजे के आसपास पुलिस को खबर मिली कि संदिग्ध कातिल कहाँ है। अपने हस्तक्षेप के दौरान गोलियां चलाई गईं। प्रथम सूत्रों के मुताबिक आदमी अपने आप को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर रहा था, तभी पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोलियों से संदिग्ध मुजरिम जख्मी हुआ और उसे सबसे करीब अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हुई। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद मलगासी अधिकारियों ने जाना कि राजीव जिबोध नामक व्यक्ति मुर्शन था और गैर कानूनी तरीके से मडागास्कर में रह रहा था। एक पैगाम में मडागास्कर में मुर्शन दूतावास ने इस ट्रेजेडी के चलते शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमदर्दी जताई। मुर्शस की पुलिस की तरफ से अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।
0: प्रधानमंत्री को संबोधित एक खुला पत्र आज आम किया जाएगा। इस पत्र का मुख्य विषय पेंशन है, जो बजट पेश किए जाने के बाद से श्रमिक संघ की चिंताएं बढ़ा रहा है। अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कई ट्रेड यूनियन के सदस्य आज दिन के 12 बजे राज्यसभा के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। उनका कहना है कि पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट में प्रस्तावित सुधार से उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार पर असर पड़ सकता है। श्रमिक संघ के प्रतिनिधि आत्मा शांतो को सुनते हैं। विवरण सुमेहराग पर अली का है।
1: हम एक खत को आम करेंगे। हम ये पत्र प्रधानमंत्री के सुपुर्द कर चुके हैं। हमारा मानना है कि पेंशन यूनिवर्सल है, सबका हक होना चाहिए। सलाह मशवरों में संतुलन नहीं था। समाज सुरक्षा मंत्री ने भी कहा कि जिम्मेदार मंत्री होने की हैसियत से उनसे भी कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया।
0: दूसरी ओर जूनियर मंत्री राजन नरसिंहन का कहना है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, बशर्ते कानून का पालन हो। उनके अनुसार इस मामले में संतुलन जरूरी है। पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट के तहत जुर्माने और कैद की सजा बढ़ाने का प्रस्ताव शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करेगा जब तक कि कानूनी कदमों और नियमों का पालन किया जाए। उनको सुनते हैं।
2: Pour la liberté de, d'expression.
1: हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में हैं। लोगों का जमा होना, प्रदर्शन करना, इनके भी हक में हूँ। संविधान में ये दो अधिकार हैं। धारा नंबर 12 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ गैदरिंग का भी प्रावधान है। इसके लिए पब्लिक गैदरिंग एक्ट भी है जिसके तहत लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। श्रमिक संघों ने अपनी बात कही है, हर बार जब कदम उठाया जाता है तो एक बुनियादी आदर्श का पालन करना जरूरी है, कानून का पालन होना चाहिए। ये मेरी खुद की राय है जो मैंने अटॉर्नी जनरल को बताई है।
2: Le principe de la proportionnalité dans la loi. Donc, moi, madame, mon opinion personnelle, bon dia ça à l'attorney général, bon dia ça.

0: qui de droit. Mal syndicaliste, c'est une faible de représentation. Mais seulement, nous pas capables aussi, d'un extrême à l'autre, nous devons garder ça l'équilibre, respecter ça principe de la proportionnalité.
1: बैंकिंग एक्ट में प्रस्तावित संशोधन को लेकर कानूनी जगत में कई सवाल उठ रहे हैं। प्रस्तावित संशोधन के तहत फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन सहित कुछ अधिकारियों को वित्तीय अपराधों की जांच के दौरान बैंक संबंधी जानकारी अधिक आसानी से प्राप्त करने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है और इस पर ज़्यादा विस्तार असद पीहू दे रहे हैं।
2: Et nous sommes en amour de mon là, les dire qu'il besoin de livre la confidentialité bancaire.
3: सुधारों में से एक ये है कि बैंकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट के तहत जांच की जा सके। बैंकों के कर्मचारियों को FCC को बैंक के ग्राहकों की निजी जानकारियां देनी चाहिए ताकि जांचकर्ता पूछताछ कर सके। कर्मचारियों को FCC में नहीं जाना होगा। ये मजाकिया और हैरत अंगेज है क्योंकि फेयर ट्रायल नहीं है। हर एक को सुनवाई का पूरा संवैधानिक अधिकार है।
2: Parce qu'il défie le whole purpose of a fair trial. Donc, il y a un droit constitutionnel de chacun d'avoir accès à un fair hearing et un fair trial. C'est garanti par la Constitution. Mais demande-moi une autre question. Est-ce que ça a la loi là pour bypass the judge's order? Est-ce que ça va proposer un amendement là? Quel est le but derrière? Donc, je invite la population à poser question, réfléchir.
1: बैंकिंग एक्ट में प्रस्तावित सुधार पर एक और प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि इन संशोधनों का उद्देश्य वित्तीय अपराधों की जांच को आसान बनाना है, लेकिन कुछ कानूनी पेशेवरों का मानना है कि कानून में अधिक स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान होने चाहिए। अधिवक्ता देवी चरण के अनुसार कानून में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी उजागर करने की शक्तियां केवल उन्हीं वित्तीय अपराधों तक सीमित रहनी चाहिए जिनका स्पष्ट रूप से कानून में उल्लेख किया गया है। उनको सुनते हैं।
4: Donner la FCC un blanket comme ça pour fouiller dans toutes les comptes des consommateurs bancaires, je pense que ça cela bafoue.
3: FCC को इस तरह का अधिकार देना कि वो हर किसी के बैंकिंग अकाउंट में तफ्तीश कर सके, ये बैंक और अकाउंट होल्डर के दरमियान मौजूद भरोसे और ग्राहक की खुफिया जानकारियों के लिए उचित नहीं है। इसे लागू करके निवेशकों के साथ मसला होगा। कौन निवेशक मुशर्रफ में पैसे निवेश करेगा, ये जानकर कि उसके बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर FCC का एक्सेस है। बैंकिंग एक्ट में सुधार लाना चाहिए, हाँ, लेकिन ये सुधार सिर्फ फिस्कल जुर्मों के लिए होना चाहिए।
4: मैं जो पेंस के ला बैंकिंग एक्ट डूव एट अमेंडे ओवी मैं सा डूव एट ओसी लिमिटे जस्ट को ऑफेंस फिस्को ई सों डन ला लॉ।
1: कल मंगलवार को बजट 2026-2027 को पारित करने की अंतिम प्रक्रिया पूरी होगी और अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 को राष्ट्रीय सभा के कार्य सूची में तीसरे पढ़त पर पढ़ा जाएगा। ये विधेयक 26 जून को सीमित चरण यानी कमिटी स्तर से बिना किसी संशोधन के पारित हो चुका है। इस विधेयक में ऐसे कई प्रावधान शामिल हैं जिनका सीधा असर आम लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। इनमें क्रय शक्ति यानी खरीद शक्ति, कर व्यवस्था यानी टैक्सेशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं। कई उपाय कल 1 जुलाई से अमल में लाए जाएंगे। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
3: सबसे बड़ा कदम बुनियादी खाद्य चीज़ों पर सब्सिडी है। प्राइस स्टेबिलाइजेशन में मजीद 2 बिलियन रुपए लगाकर कुल रकम को 12 बिलियन रुपए कर दिए जाएंगे। इससे 485 पैदावारों पर सब्सिडी होगी। फहरिस्त में कोंड बीफ, मकारोनी, कैंड चूना, दाल, लाल सेम और बच्चों के खाने की चीज़ें शामिल होंगी। कैंड चूना की कीमत में 69% की गिरावट लाई जाएगी। शिशुओं के सामानों के दामों को 70% से घटाया जाएगा और दूसरी मूलभूत पैदावारों पर 40% से ज़्यादा छूट दी जाएगी। दूसरा बदलाव VAT है। ई बुक्स, फोटोवोल्टाइक पैनल्स, फिटिंग्स, नमक, डाकिया सेवाएं वगैरह, इन पर VAT की कीमत को बदला नहीं जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में सोशल रजिस्टर ऑफ मॉरिशस पर होने के लिए मासिक आमदनी के मापदंड को 14,000 रुपये से 16,000 रुपये कर दिए जाएंगे और

0: ज्यादा लोगों को इससे फायदा होगा। कैरेज अलाउंस को 3,500 रुपए से बढ़ाकर 4,250 रुपए कर दिए जाएंगे। टैक्स के सिलसिले में एक नया मापदंड लागू होगा। एक साल में 1 मिलियन से 12 मिलियन रुपए की आमदनी प्राप्त करने वालों के लिए 20% का टैक्स लाजमी कर दिया जाएगा, जबकि इससे ज्यादा आय हासिल करने वाले लोगों को 35% का टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये कदम उच्च आमदनी हासिल करने वालों के लिए उठाया जाएगा। एक और बदलाव, देश की शख्सियतों की तनख्वाह और पेंशन प्रणाली पर टैक्स लागू होगा।
1: विदेश की खबरों में जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंपों के कई दिन बाद रविवार को चमत्कारी बचाव की नई कहानियां सामने आई। वहां के अधिकारी ने बताया कि सप्ताहांत के दौरान अब तक मलबे से 33 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया। इनमें 2 11 वर्षीय लड़के भी शामिल हैं, जिन्हें रविवार को अलग अलग समय पर वहां से मलबों के नीचे से बचाया जा सका है। और पिछले 48 से 72 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जहां सबसे ज्यादा लोगों को जीवित बचाने की आशंका और संभावना सबसे अधिक होती है। लापता लोगों के परिजन अब भी अपने प्रियजनों की खबर के इंतजार में 5वीं रात बिता चुके हैं। फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक नागरिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी लोग, पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो पहली बार स्काई डाइविंग करने की तैयारी कर रहे थे। ये विमान, जो एक पैराशूटिंग स्कूल द्वारा संचालित है, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना की जांच शुरू की गई है। बताया गया है कि कुछ पीड़ितों के परिवार वाले भी दुर्घटना के समय वहां के एयरफील्ड पर मौजूद थे, जहां वे पहली बार किए जाने वाले टैंडम जंप्स को देखने आए हुए थे। बुलेटिन के अंत में फीफा वर्ल्ड कप की बात। राउंड ऑफ 32 का दौर शुरू हो चुका है और अब सभी टीमें खेलेंगी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करने के लिए। कल ग्रुप जे का अंतिम मैच खेला गया। अर्जेंटीना और जोर्डन के बीच मैच का स्कोर रहा 3-1, जबकि राउंड ऑफ 32 का सबसे पहला मैच कल रात खेला गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम का सामना हुआ मेजबान देश कनाडा के साथ और मैच काफी रोमांचक रहा। स्कोर रहा कनाडा 1 और बफाना 0। आज रात 9 बजे ब्राजील खेलेगा जापान के खिलाफ। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज दिन के दौरान स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद और रात को दक्षिणी इलाकों और पूर्वी इलाकों तथा सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर कोहरा भी छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 7:45 हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:41 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और टेक्निकी पर कादर का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड लेस्पेरेंस क्वार्टर मिलिटेयर में 39 साल के 39 ईयर्स ओल्ड के श्री श्री वेंकटेश्वर राव नरसिम्हलू श्री श्री

वेंकटेश्वर राव नासिमुलु, जो क्रिश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ ही आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी कोमल नासिमुलु के मकान रा रोड लेस्पेरांस गौचेमिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। Avenue Manguier, 4 Bonne Mai. Avenue Manguier, 4 Bonne Mai. 74 Sal K, 74 years old K. Janab Elam Lal Mahomed. Janab Elam Lal Mahomed. Intakal kar gai hai. Unka janaza subah 10 baje. Unki biwi Ghazala ke makan number 6. एवेन्यू मांगिए कैट्रोबोन से उठाकर सबसे पहले नमाज़ी जनाजे के लिए रिशमा की मस्जिद और दफनाने के लिए रिशमा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। नंबर 118 एडगार लोहान स्ट्रीट प्लैनवेट में, नंबर 118 एडगार लोहान स्ट्रीट प्लैनवेट में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी जुबेदा हुसैन, मिसिज बीबी जुबेदा हुसैन पैदाशी नाम रावा और जो बिल्किस के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा दिन के 12:30 बजे उनके दामाद मोहम्मद सलीम पहाउची के मकान नंबर 118 एडगार लोहान स्ट्रीट प्लैनवेट से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। बादामिया रोड कालबास में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिरुद्ध बुधू जो अनिरुद्ध के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11:30 बजे उनके मकान बादामिया रोड कालबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। ब्रांच रोड पेटी व्याजे सेंपिया में, ब्रांच रोड पेटी व्याजे सेंपिया में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड की मिसिज अमातस शरेका महमूद, मिसिज अमातस शरेका महमूद पैदाशी नाम बनू और जो शरेका के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा दिन के 11 बजे उनके मकान ब्रांच रोड पृथ्वी सैंपिया से उठाकर दफनाने के लिए सियाकोस्तान सैंपिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। थ्रोबिश रोड थ्रियोले में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री शैलेंद्र कुमार रामतहल, श्री शैलेंद्र कुमार रामतहल जो जैक्सन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके भाई अनूप रामतहल के मकान थ्रोबिश रोड थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। सीते थ्वा बुचिक यूनियन वेल में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री ज्ञान दत्त गोवर्धन जो ज्ञान संदाव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके बेटे पटेल गोवर्धन के मकान सीते थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रारो थ्वाबुचिक यूनियन वेल में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री धनराज चिनीबांस जो बाबू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 2 बजे उनकी पत्नी बेलवंती चिनीबांस के मकान रारो थ्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। मालोचिक स्ट्रीट क्यूपिप में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के जनाब कसम दाऊद हुसैनी इंतकाल कर गए हैं। जनाजा दिन के 11:30 बजे उनकी बीवी सुल्ताना हुसैनी के मकान मालोचिक स्ट्रीट क्यूपिप से उठाकर दफनाने के लिए

0: बीगाहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 11:30 AM। कौम बिल है नंबर एक अंकिता वाकवा में 68 साल के 68 years old के श्री विवेकानंद बालगोबिन जो विवेकानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनकी पत्नी शोभा बालगोबिन के मकान कौम्बिलय नंबर एक कौकेता वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉ रोड बोबासे में लाउस्टुलालुविया स्ट्रीट फ्लोरियाल में 73 साल की 73 years old की श्रीमती शारदा देवी चतू पैदाश नाम भी से सर और जो गरीब के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे लाशा पैलाव दौतिलियन सन्स रॉ रोड बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। सिवक सिंह लेन गोकुला में 87 साल के 87 years old की श्रीमती मावती दुर्गा पैदाशी नाम रावा और जो मावती के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके बेटे रंजीत दुर्गा के मकान सिवक सिंह लेन गोकुला से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामिचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। मुंबई में 71 साल की 71 years old की श्रीमती आशा देवी जमन पैदाशी नाम गुलब और जो आशा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। रॉ रोड पुस्तफ्लाक में 79 साल की 79 years old की श्रीमती देवंती उचिगाडू पैदाशी नाम कुदी सिंह और जो साबित के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके बेटे राजेश उचिगाडू के मकान रॉ रोड पुस्तफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौलोबिन बेलमौ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सत्यार प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस सोमवार 29 जून को गौबुआ आर्य समाज में शाम के 4:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
3: 819 kilohertz.
4: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ड्रामेटिक लेट विनर एडिशनल टाइम के दूसरे मिनट में स्टेफन स्टक्यू का गोल और कनाडा पहुंचा अपने वर्ल्ड कप के बेस्ट ऑफ 16 में। कनाडा 1 साउथ अफ्रीका 0। इस वर्ल्ड कप से पहले कनाडा की टीम 6 वर्ल्ड कप मैच हार चुकी थी। इस बार विचियम दे फिनाल में है। अब कनाडा का सामना नेदरलैंड्स या मोरक्को से होगा, यानी बेस्ट ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली टीम बनी कनाडा। अब लास्ट 32 नॉकआउट राउंड में 9 बजे आज ब्राजील का मुकाबला जापान से होगा और रात्रि के 12:30 बजे जर्मनी वर्सेस पैराग्वे। फिर कल सुबह 5 बजे नेदरलैंड्स मोरक्को, कल ही रात के 9 बजे आइवोरी कोस्ट नॉर्वे और 1 बजे फ्रांस वर्सेस स्वीडन। मामला अब गंभीर होने लगा है। जीत कर आगे जाओ, हार हुई तो घर जाओ। ट्रांसफर न्यूज, आइवोरी कोस्ट का स्टार खिलाड़ी पेरिस सेंट जर्मेन में जाना चाहता है जियो मांडे। लिवरपूल उसके लिए 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग ऑफर कर रहा था, लेकिन जियो मांडे को पेरिस पसंद है। सीजन शुरू होने से पहले आर्सेनल 5 नए खिलाड़ियों को साइन करना चाहता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड

लिवरपूल मोनाको के मिडफील्डर मैग्नस अक्यूशे के पीछे थे, पर यह भी पेरिस सेंट-जर्मेन में जाना चाहता है। क्रिकेट भारतीय टी20 टीम की शर्मनाक हार, घमंड टूटा है। आयरलैंड की ओर से व्हाइट वॉश, दूसरा मैच भी टीम इंडिया हार गई। द बिग क्वेश्चन, अभी तक वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया गया? दो ओपनिंग बैट्समैन जीरो पर आउट हुए, टीम इंडिया की शर्मनाक हार 2-0 से, वो भी आयरलैंड के खिलाफ। एक रन से टीम इंडिया की हार हुई दूसरे टी20 मैच में। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम इंडिया में खेलने का मौका मिले, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों ओपनिंग बैट्समैन डक आउट और टीम इंडिया की हार हुई इस मैच में। उधर इंडिया की महिला टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 6 विकेट से हराया। अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट राउंड का पहला मैच कनाडा जीत गया 1-0 से। उसने कल दक्षिण अफ्रीका को हराया। आज बाकी मैच खेले जाएंगे जिनमें ब्राजील और जापान के बीच घमासान मुकाबला है। बहुत गोल बनेंगे, दो फुटबॉल स्टाइल, और आज एक बड़ी टीम जाएगी वापस। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। सुदना कथोबोन के आसपास के इलाके अवेन्यू बंगाली डुडो कॉर्डिनल एपीएफए फ्लामो मोसेलमो मारुमा हिरोडेल किवी एबिस पेजिक्स और अवेन्यू इलक्रेस और एसएसओ अवेन्यू के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 29 जून सुबह के 9 बजे से दिन के 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: सुबह के 7:01 हुए हैं। श्रोताओं एक बार फिर से नमस्कार आप सबको और आपका स्वागत है रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है दोस्तों, जो आप लोग रोज़ इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं ताकि दिन की शुरुआत अच्छे हो। और हम भी तो हैं यहाँ पर पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये प्रोग्राम और ज़बरदस्त बनाए गानों के साथ साथ। जब आप कहते हैं ना, अपने जीवन से प्यार करना सीख लो, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत रिश्ता है। जब इंसान खुद की कदर करने लगता है तब ज़िंदगी भी मुस्कराने लगती है। चलिए आज हम यही फैसला करते हैं कि सबसे ज़्यादा हम अपने आप से प्यार करेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, लेकिन प्यार जो है, ख्याल जो है, अपना भी रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं चिंतन डॉक्टर शांति महावीर जी से।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक आप स्वयं हैं। खुद को पढ़िए और समझिए, सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा।

7:10 हुए हैं। कहते हैं ना, उम्र गुजर गई लेकिन कुछ गाने आज भी दिल की धड़कन बनकर जीते हैं। कुछ सुर कभी पुराने नहीं होते, उम्र बीत जाती है पर एहसास वही रहते हैं। चलिए एक से बढ़कर एक गाना आप लोगों के नाम हम कर रहे हैं। और कहते हैं ना, जब दिन की शुरुआत अच्छी हो तो बस पूरा जो सप्ताह है वो पूरे सप्ताह हम आगे बढ़ना पूरी कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अगला गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम है भाभी, रफी साहब की आवाज़ में।

तेरे सदके बलम। जी हाँ, ये फिल्म अमर का ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे। अमर एक ऐसी पुरानी फिल्म है जिसमें प्यार, इंसानियत, गलती और ज़मीर की गहरी कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म में पुराने दौर की वो सादगी और एहसास हैं जो आज भी दिल को छू जाते हैं। दिलीप कुमार साहब, मधुबाला और साथ में निमी की अदाकारी ने इस फिल्म को बहुत खास बना दिया। हर किरदार अपने जज्बात को इतनी गहराई से दिखाता है कि देखने वाला उस दौर में खो जाता है। 7:19 हुए हैं दोस्तों, चलिए कल की चिंता छोड़ो, क्योंकि हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। जब जिंदगी का सच यही है दोस्तों कि जो बीत गया वो लौट कर नहीं आता, और जो आने वाला है उसका किसी को पता नहीं है। तो चलिए, क्यों कल की चिंता करना है, आज में जियो और ये जो गाना है आप लोग एंजॉय करो।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है।

7:30 बज चुके हैं दोस्तों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक छोटी सी कहानी जीवन पर। एक गांव में एक लड़का रहता था जो हर बार हार जाने पर कहता, मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक पुरानी चाबी दी और कहा, इसको ले जाओ और पास के पुराने कमरे का ताला खोलो। लड़का गया पर चाबी पुरानी थी, ताला भी जिद्दी था। वो कई बार ट्राई करता रहा पर दरवाज़ा नहीं खुला। थक कर वो लौट आया और बोला, ये चाबी बेकार है, ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। दादाजी ने मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सिर्फ चाबी को कोशिश की, जो दरवाजे हैं ना उसको नहीं समझा। वो खुद गए, धीरे से चाबी घुमाई और हल्का सा धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। फिर उन्होंने कहा, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, किस्मत हमेशा मौका नहीं देती पर उसे खोलने के लिए सही कोशिश और सब्र चाहिए होता है। उस दिन लड़के को समझ आया कि किस्मत तभी खुलती है जब इंसान हार मान कर नहीं समझ कर कोशिश करता रहता है। चलिए, आप भी अगर हार मान गए ना तो हार मत मानिए, बस कोशिश करते रहे, आपका भी दिन आएगा।

7:40 हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही पसंद आ रहे हैं आपको हमारा जो प्लेलिस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह से, बस मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। श्रोताओं, 50s और 60s के गाने आप सुन रहे हैं और भी, और ये दौर बॉलीवुड का वो गोल्डन टाइम था जब संगीत सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जज्बात की ज़ुबान होता था। उस ज़माने के गाने आज भी दिल को वही पुराना सुकून देता है जैसे वक्त वही ठहर गया हो। गीतों में सादगी थी, अल्फाज दिल से लिखे जाते थे और धुन सीधे रूह तक पहुँचती थी। इस दौर में लता जी और रफ़ी साहब जैसी आवाज़ों ने संगीत को एक अलग ही पहचान दी। उनकी आवाज़ सिर्फ गाना नहीं गाती थी बल्कि कहानियाँ भी सुनाती थी। और यहाँ पर एक और प्यारा सा गाना, मेरे दिल में एक बात है। लेकिन क्या बात है लता जी की आवाज़ में।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सात बजकर 50 मिनट होने को है दोस्तों, और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। जी हाँ, खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम। और यहाँ पर कहते हैं, स्वार्थी जिंदगी हमेशा बाहर से नॉर्मल लगती है लेकिन अंदर से खोखली होती जाती है। जब इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है तो धीरे धीरे रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। लोग पास होते हैं पर दिलों में दूरी बढ़ जाती है। ऐसा जीवन एक ऐसे सफर की तरह होता है जिसमें मुसाफिर तो होता है पर साथ देने वाला कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, अगर साथ साथ चलना है तो ये जो स्वार्थी है उसको छोड़ना पड़ेगा।

जी हाँ, ये मौसम बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है जो आप लोग साथ दे रहे हैं। ऐसे ही साथ दीजिए। 7:53 हुए हैं। लता जी की आवाज़ में ये अगला गाना सुनते हैं और ये गीत हमें लेकर जाएगा 8:00 के भोजपुरी समाचारों की, और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घड़ी मिलाल फजर के 8 बजल बा। सबको के नमस्ते, संक्षिप्त समाचार सुना जा। सेशल्स अपन स्वतंत्रता के 50 बरिस पूरा हो के उत्सव मनावट बाटे। कई दिन के तैयारी के बाद आज जश्न के दिन है। ये ऐतिहासिक अवसर पर ही पूरा देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम के आयोजन करल जात बा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम अपन पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम संगे हौजा ए इस समारोह में भाग लेवत हवन। 1976 में स्वतंत्रता के बाद सेशल्स राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रगति कर ले बाटे। करण इत्वा के मौत के जांच अब हत्या के ओर बढ़त बा। काल करल गल पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष आल कि करण इत्वा के मौत स्कल फ्रैक्चर के कारण भल बाटे। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर अपराध के संभावना के प्राथमिकता देवे हवन। डॉक्टर के अनुसार उकर सिर परी घाव कोनो तेज धार होला हथियार से करल हमला के कारण भल बाटे। बाची मागे रहे होला निक 30 बरिस के करण इत्वा सामदी 27 जून के सांझ के सोहिनाम में सीमा परी मृत अवस्था में मिलल रहलन जा। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास मानानारा नो में होल एगो दुखद घटना के बाद शोक में डूबल परिवार संगे संवेदना जतैले बाटे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून के एगो मलगासी महिला के शव मिलल। उकरा चाकू से हमला करके ओकरा मुआवल गर रहल। परिवार के अनुसार संदिग्ध ओकर साथी हवनजा जे घटना के बाद हौजा से भाग गर रहल। कई घंटा बाद ओकरा मलगासी पुलिस पकड़लक। संदिग्ध के पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जीबुद के रूप में करल गल है। आरी यही मामला के लेके कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस के गोलीबारी में राजीव जीबुद घायल हो गयलन, जेकर बाद अस्पताल में उनकर मृत्यु भेल। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़ल अधिकारी लोग ई मामला पर ही कोनो औपचारिक बयान जारी नहीं कर ले हवन जा। विदेश के खबर में वेनेजुएला में दुगो शक्तिशाली भूकंप के कई दिन बाद दिमास के चमत्कारी बचाव के कहानी आ गया बाटे। सप्ताहांत के दौरान अब तक लिख मलबा से 33 जना के जीवित बाहर निकालल गल है। इमें दुगो 11 बरिस के लड़का शामिल बाटे। अब हो कई गो हजार जना लापता हवन जा, जिनकरा जीवित बचाए खातिर खोज कार्य जारी रखल जात बा। जिमास लिख कम से कम 1,450 जना के मौत भेल बाटे। फुटबॉल के दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप खातिर राउंड ऑफ 32 के दौर शुरू हो गल बाटे। यार अभिलेख टीम खेली राउंड ऑफ 16 में अपन जगह पक्का करे खातिर अब सब टीम आपस में तक रहन जा। राउंड ऑफ 32 के सबसे पहला मैच काल

0: रात के खेलल कल दक्षिण अफ्रीका के टीम के सामना भेल मेजबान देश कनाडा संगे आरी मैच रोमांचक रहल स्कोर रहल कनाडा एक आरी बाफाना बाफाना जीरो आज रात 9 बजे ब्राजील खेली जापान के खिलाफ इराहल संक्षिप्त समाचार तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद हमने के आज्ञा दिया नमस्ते
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुना जा गांधी रोड एनएस फ्लोहा में 73 बरिस की स्वसंथ जौके श्रीमती उमावती जुजाई पैदाशी नाम सुनाराम आरजे गीता नाम से जस्ती डानल जाथलन गुजर गल हवन माती दिन के 1 बजे उनकर दमाद उन्दू के घरे गांधी रोड एनएस फ्लोहा से उठा के किराकरम खातिर बुशों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डेट 1 PM रॉ रोड लेस्पेहांस कौचे मिलितिया में 40 बरिस के 39 ईयर्स ओल्ड के श्री श्री वेंकटेश्वर राव नौसिमलू जे कृष्ण नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी दिन के 2 बजे उनकर पत्नी कोमल नौसिमलू के घरे रारो लेस्पेहांस कौछे मृत्या से उठा के किराकरम खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे 8 PM नंबर 6 एवेन्यू मौगी काठोबोन में 74 बरिस के श्वसन कातोजों के जनाब इलम लालमाउमेद गुजर गल हवन जनाजा फजर के 10 बजे उनकर बीवी गजाला के घरे नंबर 6 एवेन्यू मौगी काठोबोन से उठा के सबले आगे नमाजा जनाजा खातिर रिश्मा के मस्जिद आर दफनाए खातिर रिश्मा के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे 8:10 AM नंबर 118 एट गोलोहा स्ट्रीट प्लान व्यत में 74 बरिस के सुसन कास्टोजों के मिसिस बीबी जुबेदा हुसैन पैदाशी नाम रावा आलजे बिल्किस नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी दिन के 12 बज के आधा पर ही उनकर दमाद मोहम्मद सलीम पाहौची के घरे नंबर 118 एट गोलोहा स्ट्रीट प्लान व्यत से उठाकर दफनाए खातिर रिश्ते के कब्रस्तान जबल जाए फ्यूनरल टुडे 8:30 PM बादामिया रोड कालबास में 73 बरिस के श्वसन थेजों के श्री अनिरुद्ध बुधू जे अनिरुद्ध नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माती दिन के 11 बज के आधा पड़ी उनकर घरे बादामिया रोड कालबास से उठा के किराकरम खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे 8:30 PM ब्रांच रोड पेची व्याजे सैंपिया में 72 बरिस के श्वसन दूजों के जनाब अमातस शरेखा महमूद मिसिस अमातस शरेखा महमूद पैदाशी नाम बनू आज शरेखा नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजर गल हवन जनाजा आज दिन के 11 बजे उनकर घरे ब्रांच रोड पेची व्याजे सैंपिया से उठा के दफनाए खातिर सिया कुस्तों सैंपिया के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे 8:11 AM थोबी श्रोत थ्रियोली में 54 बरिस के सेकंड काथों के श्री शैलेंद्र कुमार रामतोहल जे जैक्सन नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माती दिन के 11 बजे उनकर भाई अनूप रामतोहल के घरे थोबी श्रोत थ्रियोले से उठा के किराकरम खातिर त्यामिनिस थ्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे 8:11 AM सीते 3 बुटीक यूनियन वेल में 88 बरिस के 88 के श्री ज्ञानदत्त गोबर्धन जे ज्ञान संदो नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माती दिन के 1 बजे उनकर बेटा पटेल गोबर्धन के घरे सीते 3 बुटीक यूनियन वेल से उठा के किराकरम खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टू डेट 1 PM राडो 3 बुटीक यूनियन वेल में 67 बरिस के श्वसन सेतों के श्री धनराज चिनीबांस जे बाबू नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माटी दिन के 2 बजे उनकर पत्नी चिनीबांस बेलवंती के घरे राडो 3 बुटीक से उठा के किराकरम खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टू डेट 2 PM मालौचिक स्ट्रीट क्यूपिप में 71 बरिस के 71 के श्री जनाब कसम दाऊद हुसैनी जनाब का सामदाउड उसे नी गुजरगल हवन जनाजा दिन के 11:00 आधा परी

0: उनकर पत्नी सुल्ताना हुसैनी के घरे मालोचिक स्ट्रीट की पिप से उठा के किरा कदम खातिर भी गहा के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM कौं बिले नंबर एक कौं येता वाकवा में 68 बरिस के 68 अंके श्री विवेकानंद बाल गोबिंद श्री विवेकानंद बाल गोबिंद जे विवेकानंद नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर गल हवन माती दिन के 1 बजे उनकर पत्नी शोभा बाल गोबिंद के घरे कौं बिले नंबर एक कौं येता वाकवा से उठा के किरा करम खातिर सुल्फेगिनो के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM La hausse de la Louvrière Street Floréal, mais 73 baris que 73 ans que Shrimati Sharda Devi Chatu. Shrimati Sharda Devi Chatu. Pedashi Nambi Sesar, Alje Garib Nam Se Jasti Janal Jatalan Guzar Gal Hawan Mati. Ninke 1 baje. La Chapelle Audente Lienson Swal Road Bubasin Se Utake Kida Kadam Khater. Bigaha Keshmashan Bhumide Jawal Jai. Permission to Jat 1 PM. Ra Road Post de Flak, mais 79 बरिस के 79 ans के श्रीमती देवंती उचिगादू श्रीमती देवंती उचिगादू पैराशी नाम कुदी सिंह आज साबित नाम से जस्टी डानल जाथलन गुजर गल हवन माती आज सपहर 3 बजे उनकर बेटा राजेश उचिगादे के घरे रा रोड पुस्त फ्लाक से उठा के किरा करम खातिर मौलोबिन बेलमा के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टू डेट 3 PM शोक में डूबल परिवार संगे हमने के सहानुभूति है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आज बजकर 28 मिनट हो गया हुआ है श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रेडियो मॉरिशस के लहरों पर और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। चलिए अब समय आ गया है सुनाने के लिए आपको आपका साप्ताहिक राशिफल।
1: आपकी राशि रेडियो मॉरिशस पर।

0: मेष राशि, इस हफ्ते आपके अंदर एक बहुत ही एनर्जी रहेगी। आप किसी भी काम को पूरा जोर लगा कर कंप्लीट करना चाहेंगे। काम के मैदान में आप जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, जो कभी कभी फ़ायदा और कभी नुकसान दोनों हो सकता है। बिजनेस या जॉब में नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। लकी नंबर है 3, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस, वृषभ राशि,
0: इस हफ्ते स्टेबिलिटी और पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आप धीरे धीरे लेकिन आप तरीके से अपने गोल्स को की तरफ बढ़ेंगे। पैसे के मामले में सुधार आ सकता है और पुराने पेंडिंग काम पूरा हो जाएगा। लकी नंबर है 2, लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी, मिथुन राशि,

0: जी हाँ, जेमिनी सोशल सर्कल एक्सपांड होगा, नए लोग और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, लेकिन कंफ्यूजन और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम है अच्छा होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है दूर हो जाएगी। लकी नंबर है 11, लकी कलर है नीला रंग।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: इमोशन हाई रहेगा, दिल और दिमाग के बीच कंफ्लिक्ट हो सकता है और परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बढ़ सकती है, इमोशनल हो सकते हैं आप और आप अपनों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लियो सिंह राशि,
0: करियर में बढ़ावा मिलेगा और आप लीडरशिप में नज़र आएंगे। ईगो अगर कंट्रोल ना हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रेम संबंधी मजबूत रहेगा और लकी नंबर है 1, लकी कलर है सुनहरा रंग।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: कन्या राशि काम का प्रेशर बढ़ सकता है, आप परफेक्शन के पीछे ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आपकी जो सोशल लाइफ है एक्टिव रहेगी, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, डिसीजन लेने से पहले बुजुर्गों का सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है, खान पान पर ध्यान दे। लकी नंबर है 6, लकी कलर है नीला रंग।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: कुछ छिपे हुए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आपको और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, काम में सफलता मिलेंगी और स्वास्थ्य के मामले में सर में दर्द हो सकता है, इसके लिए आपको सावधानी लेना चाहिए। लकी नंबर है 9, लकी कलर है लाल रंग।
1: सजिटेरियस धनु राशि,

नुराशे सप्ताह आप यात्रा पर जा सकते हैं, अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। और आप सक्सेस की तरफ ले जाएंगे, सकारात्मक सोच से आप आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की भी कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के मामले में खान पान कंट्रोल करना आवश्यक है। लकी नंबर है 3।

0: लकी कलर है नीला रंग।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: मकर राशि कार्य में स्टेबिलिटी आएगी लेकिन स्ट्रेस और थकान बढ़ सकती है और प्रेम संबंधी में आप डिस्टेंस हो सकता है, इसके लिए इस पर आपको काम करना चाहिए। लकी नंबर है 4, लकी कलर है पीला रंग।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: नए आइडियाज और प्रोजेक्ट सक्सेस ला सकते हैं, दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगा, खान पान पर आपको ध्यान देना चाहिए और पैसों के मामले में ज्यादा खर्च करना अनिवार्य नहीं है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। लकी नंबर है 11, लकी कलर है सफेद रंग।
1: Pisces, मीन राशि।
0: मीन राशि स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ होगी, रोमांटिक फीलिंग डीप रहेगी, स्वास्थ्य के मामले में आप अच्छे तरीके से मामले को निभा रहे हैं, आप खान पान पर जरूर ध्यान दे रहे हैं जिसके लिए आपके जीवन में सुधार ला सकता है। लकी नंबर है 3, लकी कलर है नीला रंग।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मोशन। रेडियो मोशन
2: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
3: अच्छा दादा।
2: हाँ तो बच्चों,

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे

0: एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा,
1: हुजूर, गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं।
0: उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,

मंजिल थी कहीं, जाना था कहीं। ऐसा कई बार होता है कि हमें कहीं जाना है लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते ये बस भगवान ही जाने। यारा सिली सिली लेकिन का ये खूबसूरत गाना एक बार फिर से लता जी की प्यारी आवाज़ में सुनते हैं। बस आपका दिन शुभ हो, हम यही कामना करते हैं।

0: 8:52 हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सुनने जा रहे हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने जनजाति या आदिवासी लोग पर बात करब जा। जनजाति या आदिवासी मॉरिशस में नहीं बा, लेकिन बड़ा बड़ा दूसर देश में ये लोग उपस्थित हवन जा। भारत में भी, अमेरिका, कनाडा में भी, बल्कि कनाडा में इंडिजिनस पीपल आदिवासी लोग पर जो कितने बरिस आगे सामूहिक कब्र मिलल बा एकर से संबंधित, तो एकर बाद ई सवाल भी उठल बा बहुत लोग के मन में कि ई जनजाति लोग के अधिकार कितना बा। ऐसन बड़ा बड़ा देश में जब जनजाति के बात कर बा और जो आज के नवा पीढ़ी बा, तो एगो बहुत ही नाजुक स्थिति पैदा हो जाला। यूनेस्को जनजाति लोग खातिर एगो कन्वेंशन भी बनई ले बा। बोलल जला कि ई जोन जनजाति हवन सा आदिवासी ई लोग ही अपन जमीन के पहला हकदार हवन जा। फिर जैसे जैसे हमने के ई दुनिया में डेवलपमेंट शुरू होल बड़ा बड़ा देश में खासतौर पर, तो ई आदिवासी लोग के जे लोग जंगल में रहत रहलन सा हटा के हुआ पर डेवलपमेंट होल। और फिर ई आदिवासी लोग अपन जोन परंपरा बा, अपन जोन घर बा, उ लोग के जोन संस्कृति रहल, उ सब बिला दिलन सा। आदिवासी लोग एगो बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के सहारे जियलन सा, और उ लोग के सांस्कृतिक धरोहर जिंदा रही। इ खातिर इ बहुत जरूरी बा कि इ आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य, उ लोग के खुशहाली के ख्याल रखल जाए। इ जो नवा

कन्वेंशन बनावल गलबा यूनेस्को द्वारा इमे ई बात के प्रावधान करल गलबा कि ई लोग के सांस्कृतिक धरोहर के एगो इन्वेंटोरी एगो सूची तैयार करल जाए। ई सूची में विस्तार से ई संस्कृति के हर पहलू पर जानकारी देवल जाए और ई खातिर अधिक से अधिक आदिवासी के सहमति और उ लोग के सहयोग पर काम करल जाए, काहे कि जेकर धरोहर है आपके चाहे ओकर इजाजत से ही ओकर धरोहर के संरक्षण पर काम करेंगे। आदिवासी लोग के भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, कहे कि भाषा ही संस्कृति के माध्यम है। काल मतलब कि सुख के दिन हमने भाषा पर बोलत रली जा, भाषा गल त संस्कृति गल। ये आदिवासी लोग के अधिकार आम इंसान के अधिकार के बराबर है। उ लोग भी इंसान ही हवन सा तोहर और हमर जैसन। उ लोग के अपन भाषा है, अपन संस्कृति है। उ लोग के प्रकृति के एकदम घनिष्ठ संबंध है। मॉरिशस में तो जैसे बोली आदिवासी नहीं बा, ई एगो छोटा टापू देश है जहाँ पर कोई नहीं रहल आगे, नो मैंस लैंड रहल। लेकिन दूसर देश के जनजाति इतना शक्तिशाली हवन जा, इतना ज्ञान रखेलन जा और साहस रखेलन जा कि उ लोग सकेलन सा मौसम परिवर्तन पर नज़र रखे और नियंत्रण पावे। चांद सूरज सितारा नक्षत्र के बहुत अच्छा ज्ञान रखेलन सा उ लोग। जनजाति समुदाय प्रकृति के मित्र हवन सा, काहे कि उ लोग के जीवन एकर पर ही निर्भर रहेला। उ लोग पर्यावरण के बहुत अच्छा से सुरक्षा करेलन जा। आज हमने घड़ी देख के समय जानी ला जा, लेकिन जनजाति के हियाँ कोनो घड़ी नहीं बा। उ लोग परछाई हवा और सूरज के किरण के जो रंग बा ओके देख के तोहरा समय सक्यंचा बतावे। केन्या में एगो जंगल बा काया जंगल और हुआ के जनजाति के नाम है मिजिकेंदा। हुआ के राजनीतिज्ञ भी इस सब समुदाय के बहुत इज्जत करे लंसा और उ लोग से आशीर्वाद लेवे बिना उ लोग चुनौती के न सामना करे लंसा ना ही उ लोग चुनाव में खड़ा हो लंसा। और आदिवासी के नेता बहुत प्रतिष्ठित और आदरणीय हवन सा। उ लोग के बात पूरा समुदाय मानेला, पूरा राजनीतिक गुट मानेला। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलब जा। नमस्ते।

चलिए सुदेश बोई जू की आवाज में ये भोजपुरी गाना सुनते हैं और यही गीत हमें लेकर जाएगा 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। भूलिएगा नहीं आज की चर्चा कार्यक्रम नीतूषा के साथ आप सुनेंगे 9 बजे के बाद।

0: 19 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना। नमस्कार।
2: नमस्कार नितुषा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सेशल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य जश्न आज मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज उत्साह का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम के साथ वहां इस समारोह में भाग लेने गए हुए हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। करण इतवा की मौत की जांच अब हत्या की ओर रुख कर रही है। कल किए गए पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष निकला कि करण इतवा की मृत्यु स्कल फ्रैक्चर के कारण हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर ने अपराध की संभावना को प्राथमिकता दी है। डॉक्टर के अनुसार मृतक के सिर पर पाए गए घाव किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए हमले के कारण हो सकते हैं। बाचीमागे रहने वाले 31 साल के करण इतवा शनिवार 27 जून की शाम सुरीनाम में सड़क किनारे मृत अवस्था में मिले थे। इस मामले की जांच अब सुयाक की CID कर रही है। बताया गया है कि घटनास्थल पर कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगाया गया है। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मानानागानो में हुई एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद हुआ। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद वहां से फरार हो गया था। कुछ घंटों बाद उसे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबुद के रूप में की गई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु की पुष्टि की गई है। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र आज आम किया जाएगा। इस पत्र का प्रमुख विषय पेंशन है, जो बजट 2026-2027 पेश किए जाने के बाद से श्रमिक संघ की चिंताएं बढ़ा रहा है। अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कई ट्रेड यूनियन के सदस्य आज दिन के दौरान राष्ट्रसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट में प्रस्तावित सुधार से उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार पर असर पड़ सकता है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में वेतन में वृद्धि जारी है। पहली तिमाही 2026 में वेज रेट इंडेक्स पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% से बढ़ा है। ये वृद्धि कई क्षेत्रों में वेतन में बढ़ोतरी की पुष्टि करती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि देश में मजदूरी और श्रम में सामान्य सुधार देखा जा रहा है। विदेश की खबरों में वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंपों के कई दिन बाद रविवार को चमत्कारी बचाव की कहानियां सामने आई। सप्ताहांत के दौरान अब तक मलबे से 33 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है, जिनमें 11 वर्ष के दो लड़के भी शामिल हैं। अभी भी हजारों लोग लापता हैं, जिससे जीवित बचे लोगों की खोजने की उम्मीद हर घंटे कम होती जा रही है। फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार

0: सभी लोग पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर्स और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो स्काई डाइविंग करने गए हुए थे। ये विमान जो एक पैराशूटिंग स्कूल द्वारा संचालित था, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना की जांच शुरू की गई है। बताया गया है कि कुछ पीड़ितों के परिवार वाले भी दुर्घटना के समय एयरफील्ड पर मौजूद थे, क्योंकि वे पहली बार किए जाने वाले टैंडम जंप को देखने आए हुए थे। अंत में फुटबॉल की कुछ बातें। फीफा वर्ल्ड कप के लिए राउंड ऑफ 32 का दौर शुरू हो चुका है और अब सभी टीमें खेलेंगी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करने के लिए। कल ग्रुप जे का एंटी मैच खेला गया। अर्जेंटीना और जॉर्डन के बीच मैच का स्कोर रहा 3-1, जबकि राउंड ऑफ 32 का सबसे पहला मैच कल रात खेला गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम का सामना हुआ मेजबान देश कनाडा के साथ और मैच काफ़ी रोमांचक रहा। स्कोर रहा कनाडा 1 और बाफाना 0। आज रात 9 बजे ब्राज़ील खेलेगा जापान के खिलाफ। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. NBC Radio, हर पल आपके साथ।

0: आज की चर्चा।
1: सबको एक प्रणाम, नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत बाटी। हाँ जी, अभी जो गीत सुनला आठ आना बारह आना आजकल के जाने ला कर बारे में सब कोई बे जाने लन सर, एक रुपया पाँच रुपया के जन दस रुपया के जन कौन बाटे। आगे के जमाना जो रहल वो बहुत ही जोली जमाना रहल। जी हाँ, आप हमने के सुनत हुआ देखत हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने के मेहमान हुआ फागेदानी से जो अधिकारी हवन श्रीमान संजय शंभु। दर्शकगण श्रोतागण, आज हमने एगो ऐसन टॉपिक पर चर्चा करब सर, जैसे जनबे करेला हमने के दादा दादी लोग आगे जब जियत रहन जा उन लोग के लाकोर में, उन लोग के आंगन में कौन ची नहीं रहल। हाँ, पैसा सकेला उतना नहीं रहल, पर जितना चीज उन लोग के आंगन में रहल, खाए के पिए के सब कुछ मिल जात रहल, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो एगो फल हो। आगे हम ही अपन जमाना के सोचब तो हमार लाको में रहल काबल और कौन ची रहल, इतना जो फल रहल, फुसितिया रहल, मंगासाय रहल और कौन ची रहल, बाप हम ही नहीं जानत है इतना चीज रहल। पर आज ये सब हमने देखा था जा रैपिड अर्बनाइजेशन, हमने जैसे बोली ला जा डेवलपमेंट होते गल। हाँ, चाहेला डेवलपमेंट हो के कंस्ट्रक्शन होते जात बा, घर चाहेला बनाए के हमने के जो आबादी बातें पॉपुलेशन बातें वो बढ़ले जात बाते, तो जस जस डेवलपमेंट होते गल हमने के जो माटी वो सब बातें ओकर वाले ओकर मोल कमती नहीं होल बा। पर जहाँ देखबा आज ये सब कमती हो गल बा और जितना चीज वो लोग खात रहन जा, आगे हमने बचैली जा तोहरा दिखैली जा माटी के मोल कार्यक्रम में मौजू। हमने के आज के जिनकाशो सकेला नहीं जाने लन जा, पर हमने के माता पिता दादा दादी लोग सब के बारे में जाने लन जा, अंबुवाद जौताक इस सब के बारे में आज तरी सुन हमने बचाव जा। हाँ, जो हमने के वैनिशिंग हेरिटेज बातें, हमने के धरोहर ये सब बातें, जो डिजापियरिंग क्रॉप्स है, आज ये पर हमने चर्चा करब जा। और जैसे कि हमने तोहरा बोली, आज हमने के विशेष मेहमान हवन फागे के अधिकारी श्रीमान संजय शंभु जी। भाई संजय, तुहर स्वागत बाटे फिरों से माटी के मूल कार्यक्रम। तो हमने टीवी में करी लाजा, आज हमने करत है ऐसा, पर आज की चर्चा कार्यक्रम में बस जैसे कि हम बोले हैं ये सब जो नाम ले ले हैं जौताक अंबुवाद ढेर चीज बा जे हमने के आज के जिनगासो लोग नहीं जाने लान जा, तो चाहेला फिरों से ओ लोग के वाले पहुँचाए के आगे बढ़ाए के, तो ये सब हमने देखा था जा जो मॉरिशन लैंडस्केप बातें वो हमने सकब सा बोले वो कल्ले कल्ले वो लुप्त होते जाए बातें डिजापियर होता। पर एकर से आगे हमने जाने खोजब जा ये सब के कोज कौन ची है, तनी सुन एकर से आगे हमने के जो इतिहास बातें आगे तू अपन बारे में तनी सुन बताओ, व जब तू छोटा रहला तो कैसे रहल।
2: नमस्ते निशा, आज ना कोई हमने संगे जुड़ल हो जा, सबके नमस्ते। है कोई अच्छा चीज बोला है इतिहास में चले के कुछ, तो हम जब छोटा रहनी तो चला काटबोन के पर बतियाला जा। अच्छा। क्योंकि हमार मामू मामी सब काटबोन के होन जा, तो वहाँ पर जाते नहीं सर रहे, तो उस समय में लासूस में है, लासूस काटबोन में जब जेब या फिर कहूँ जेब व्यजनाज में जेब कहूँ जेब इन्हें उन्हें सुरनाक वगैरह, तो तोरा दो घर के बीच में या घर के और रास्ते के बीच में जो बाउंड्री बा बराज है तोरा ब्लुक के नहीं लौकत हल। ये हम तोरा शहर में बोलते हैं, तो उस समय में दीवार नहीं रहल, एगो पौधा रहल ओकर नाम हम नहीं बताने से तूत। हाँ। में ओकर नाम मलबेरी है। मलबेरी के बागाज बनावल जाता है, तो ताई सब कर जाता है नीमन से बागाज के। हाँ। बागाज की तरह, तो वहाँ पर ही हर साल थोड़ा तूत मिली खाए के आई शहर शहर में बात
1: आगे तो फतक रहल हमके याद। हाँ। बते फतक रहल बाले में जा।
2: हाँ बिल्कुल, हुआ पर ही फतक भी रहल, तो काट के झाड़ू

0: ना अल्लाह तहल और इस सब आंगन में जब देखब त कहीं ना कहीं एगो अमरूद के पौधा रहल पपीता रहल पपाई रहल
1: बेगामुत रहल
0: बेगामुत रहल हमके याद बा पीछे में जैसे कि बोला सा आई जाक कटहर
1: कटहर
0: कटहर भी रहल
1: मान्योग रहल
0: कोको के गांची रहल
1: कौन ची नहीं रहल
0: अनेक प्रकार के ऐसे चीज इस शहर में बोलता है अब निकल के आप जा रूरल एरियाज में किसी गांव में हम खेप क्या के हैं तो वहां पर तो और अनेक प्रकार के चीज रहल आज का जो नेलो केला जमालाक रहल जौ बुजवा रहल जौ बुश रहल जैसे शुरू में बोला जौ तक अंबुवाद रहल तो इस सब जब देखब तो शायद हमने के बाप दादा लोग के पास उतना शायद पैसा शायद नहीं रहा शायद रह भी रहा लेकिन वो एगो कैसे बोलने को किलचिया की तरह रहल कि चाहे ला हमने के आंगन में एक आध गो चीज रहे के ताकि उसे हमार परिवार के सकब एक आध गो चीज गुजारा नहीं लेकिन एक आध गो चीज मिली जो सिक्योरिटी आलिम होते हैं खातिर बहुत एक महत्वपूर्ण जगह है ओकर में क्योंकि ओकर में कुछ मिल रहा विटामिन रहा मिनरल रहा वगैरह वगैरह तो और नहीं पहला खरीदारी करे कि ना सब रहल
1: ये सच्ची बात बोलत हुआ और हमने को सकेला हमी जितना चारा तोहरा देखत हुआ सुनत हुआ उन लोगों के अपन बचपन उ सब अपन जवानी के दिन उ सब याद आवा था कौन ची नहीं रहा आज जैसे कि हमने बोला था ऐसा इतना फास्ट डेवलपमेंट हुआ था कंस्ट्रक्शन सगरो जहाँ देखबा जैसे कि बोली आबादी बढ़ा था अब चाहे ना कंस्ट्रक्शन करे के
0: धीरे धीरे कौन ची होता धीरे धीरे जब देखबा ये जो शायद 40 साल जो बीतल बात जोन जगह में उतना घर नहीं रहा किसी सुदनाक के लिए बकाटबोन में पहले शुरू में उतना घर नहीं रहा वहाँ पर ही लेकिन अब जब जेब तक खाली घर घर घर घर लगेगा कहूँ पर ही देख बता घर यहाँ के गांव में आज जेब तो गाँवों में वहाँ पर भी देखबा घर घर घर घर सगरो बनल बा तमने के जोन माटी बाते वो अब टुकड़ा टुकड़ा में बटल जाता अगर टुकड़ा में बटल जाता ओकर में घर बनावल जाता जगह कम हो जाता ये कारण से जन जन बोली जा एक आध गो चीज जब रोपा तहल तब कमती दिखाई दे रहा लेकिन हबी ले भी हवन सा शहर में भी या फिर गांव में भी एक आध गो आदमी एक आध गो परिवार जन हवन सा जन जाने लन सा एक महत्वपूर्ण चीज है कि एक आध गो चीज छाना रहे कि हमने के आंगन में लोग आज ले भी देखब वो लोग के आंगन में हरियाली रहेला
1: तो आज एगो आंगन में देखबा दो तीन गो घर बनल बाते कबो कबो एगो आंगन में हाँ एक गो घर बा लेकिन वो जब जैसे बोलत हुआ वो लोग के आंगन में एगो गौची मिली लिक्सी के एगो गौची मिली आम के तरी सुन तुलसी के पौधा मिल जाए हईजा तरी सुन अनार हौजा मिल जाए तरी सुन प्रौताशो सब करेलन आजो बाते कई जना बोलेलन देखा प्लासवे नहीं बात आज तो अपार्टमेंट में रही ला सा घर के प्रॉब्लम हुआ था अपार्टमेंट में रही सा मानी कि जितना जगह मिली हमने के जो माटी के मोल जैसे हमने बोला था जा वो कमती नहीं होला आजकल हमने कंटेनर गार्डनिंग के बात कर रहे थे माने कि हाउ जो बोलोते हुआ बा चाहे ला हो के जहाँ रबा रूफ गार्डनिंग करे सकब एगो प्लॉट एगो पो में डलबा सगरो सकबा करे आज
0: बिल्कुल एगो ऐसा तो हर एगो एमिशो में आला नहीं सकेला एक महीना होते हुए देखो चीज बोला नहीं फैसिलिटी
1: जी
0: जब एक आदमी फैसिलिटी में गिर जला तो वो जो हो श्रम रहला जिफो रहला वो इतना नहीं करेला
1: भूल जाला वो
0: तो माटी के सकेला माटी सकेला टुकड़ा टुकड़ा होते हुए लेकिन कहीं ना कहीं हमने हमने ही पहाड़ों की तरह माँ बाप की तरह हमने ही एक में हमने के वो होल बातें कि काहे नहीं हमने रुपाई नहीं होता क्योंकि हमने अपन लड़का लोग के कौन चीज़ सिखाते हैं सब सोफा पर बैठे के टेलीविजन देखे के तब बाहर में कौन चीज रुपाई करिए तो गते गते हई किलचेवा हई तो बढ़ता ना
1: जी
0: तो फैसिलिटी में जा सुपर मशीन में खरीद या दुकान में खरीद
1: मतलब सब कुछ फैसिलिटी मिले था सब कुछ तो मिले था काहे चाहे ला रोपे के तो आज हमने सो सब जा देखब जा तो हमने के जो मॉरिशन लाइफ बात है हमने के जो मॉरिशन हवन जा वो लोग कौन ची यानी कि लूज करत हवन जा वो लोग कौन ची मिस करत हवन जा ये सब जितना अभी प्लांट की बात करत है जहाँ आपको वाद जाऊँ तक आज तो लाकूर में नहीं देखब लोग कौन चीज मिस करा था वन जा
0: सबसे पहला था अजय को चीज तरह नहीं मिला था खाए की तो अपन जीवन में कबूल ने जानना कि कैसे टेस्ट होता है सबसे पहला था ई बा जितना अजय हमरे हम

0: मेरी उम्र के आज हम जिन जिन लोग बा शायद ने जानते हैं जो बुजुआ कौन छी जो बुस कौन छी वावांग कौन छी पोमजा को कौन छी एक में हम अनेक चीज का बैसे बोले ब्रेड मॉडल कौन छी तो साकेला ने जानते हैं जा
1: ou dire moi un tablet soufflet et go
0: bread soufflet bia ou ta bread basmati
1: baté
0: ha bread basmati baté bread soufflet baté ta isab gâté gâté ta ne lo kata non lekin ta hamri umar ke shayad jandal janba usake la hisab chine jana
1: to ji ji
0: ta sabse pehla ta sabe ja jan jan taste baté ou lo carbone jan lanja carbone jan jan ja ke kon jive asti rahal hamni ke mauritius me कितना चीज सकते हैं निशा खाए और लुफ्ट उठाए और फायदा उठाए
1: तो एक रीजन कौन सी हवा संजय अभी हमने जब बात कर रहे थे ऐसा तो जैसे बोली डेवलपमेंट हुआ था कौन सुशो सग्रो हुआ था तो कले कले ये सब जो हमने के जो न क्रॉप्स बातें वो लुप्त होते गल बातें तो कैसे
0: ये का सीधा सीधा जवाब नहीं बामा लगे लेकिन जहाँ तक हमने के जो ट्रेन दे वी बा जैसे बोला सा हमने के जीवन जैसे जाता एक रश में जाता सवेरे उठ बड़े लाल लैका फैका के देखे के तब तरह पहला भागे के काम में ये दिखा यहाँ पर याल नहीं जा शाम के जेब फिर से चला पकवान सब सब बनाए के वगैरह
1: सुबह फिर से फजर के उठ
0: थकान रहेला तब समय ही नहीं मिलेला तो ये भी वो कारण बात है कि उतना समय नहीं मिला था हमने के एज एन इंडिविजुअल या परिवार सहित कि ऐसा ऐसा चीज कड़प जा तेकर में खाली हो टेस्ट के ओकर समस्या ने समस्या नहीं लेकिन टेस्ट नहीं सकनी सकते ना खाली ये नहीं बात है आजकल देख बात साइंस रिसर्च जन आवेला तब बोला बोला कि जितना एगो पेड़ पौधा बा एगो फल बा ओकर में सकेला कुछ ना कुछ हो ताजे मिस करब से आगे जाके के जानियो कर में कौन चीज देख हुआ हो कि सकेला वो एक एक प्रॉपर्टी में जिस नाल रहत
1: एगो रीजन हयो सकेला होए भाई संजय कि आगे हमने न्यूक्लियर फैमिली में रत रह जा दादा दादी माताजी पिताजी लैका फैका सब एक एक घर में लगभग 10-15 लोग आज देखबा त खाली माँ बाप ओकर एगो लैका दुगो लैका उहू एगो कमरा में हौ एगो कमरा में हौ जो नकुल चौ बाते दादा दादी नाना नानी के जन आगे हमने कहानी सब सुनत रही जा उ लोग जानत रह जा अब कोई नहीं बा तक के बचाए
0: के बोल जन अनुभव वाले के बाते उन्हें मटा था ना नीचे नहीं आवे था तो रेजो मा जन बोला तो दादा अनुभव ने दादा दादी के बा परदादा परदादी के रहल गते गते परदादा से परदादा तक दादा से बाप तक उ लोग
1: पकावत रह सब
0: तो गते गते सब एक आध गो जन चीज बा नहीं आवे था नीचे ले ना
1: जी तो बहुत बहुत धन्यवाद तो आज के चर्चा कार्यक्रम देखा था वह सुनत हुआ तो आज हमने ऐसन क्रॉप्स के बारे में सब्जी हो फल हो ढेर चीज हमने के ढेर बजरना लोग सुनत हुआ जा देखा था वन जा कुछ शेयर करे के मन बातें तो लोग अपन जमाने में कौन सी की याद बातें कौन फल कौन सब्जी के जब हमने बात कर रहे थे जा अपन कुछ शेयर करे के बातें तो हमने के नंबर है 402-85-85-402-80-85

0: आज की चर्चा।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा कार्यक्रम देखा था हुआ, सुना था हुआ। जी हाँ, आज हमने अवसन जो क्रॉप्स के बारे में, सब्जी फल के बारे में हमने बताया था जा, जो नकले कले लुप्त हो गल हवन सा। आज हो बातें हमने के मेहमान हवन जहाँ श्रीमान संजय शंभू जी फागे दने से। शंभू जी, हमने जब डिजापियरिंग क्रॉप्स के बात करा था जा, तो हमरा याद बातें मान्योग, आज हो मान्योग के हमने बात करी ला जा। मुरुंग के याद आल, आज हम तो बुझू बना ठंडा मौसम में मुरुंग के, तो मुरुंग तनी सुन एकर बारे में बताओ, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गल बा।
2: तो देखला जैसे बोला, मुरुंग पहले हमने के आंगन में रोपा था, तब परिवार लोग पकावत रंजा, बुयो बनाते रहा बातों रहा, वो तक ओकर से तकारी आलू सब डाल के मसाला में पकावल जाता हल। समय के साथ तो जिस पागित होता ना, लेकिन समय के साथ ही अब कैसे बोलिए, रिसर्च होता साइंस बातें, तो अब देखा लता कि देखा मुरुम में अनेक प्रकार के जो मिनरल्स बातें,
1: विटामिन ढेर चीज में,
2: मिनरल कैल्शियम ओकर में बातें। हम सोचा था खाली दूध में कैल्शियम है ना, मोरिंगा में मुरुम में कैल्शियम भी मिलेगा, जिंक मिलेगा, अनेक प्रकार के मिकोइलेमा मिलेगा। तो उसे ओके अब बोल दे सुपर फूड
1: जी,
2: सुपर फूड इंटरनेशनली संसार में और खासकर अफ्रीकी देश में, तो अब बोलन सा मोरिंगा एगो मुरुम एगो सुपर फूड है। तो मॉरिशस में एक आध गो हवन जा छोटा मोटा कंपनी खेल बा जो मुरुम के ओकर उत्पादन के लंच और मुरुम के ओके थोसवो में करत वंस, जैसे कि बा मुरिंगा चाय
1: जी,
2: सकबा को से चाय बनाए या एफ्यूजन की तरह प्रयोग करके देखा कहाँ से मुरुम हमने बुयो तो बुयो बनाया था घरे, तक मुरुम कहाँ पहुँच गल बा, अब ओका से चाय बना लेता। तो एक खासियत आजकल ढेर कोई आपोषे कर ला, और घर पे हम जानला ढेर कोई जो हमारे दोस्त लोग बा जेकर पास शायद मुरुम नहीं बातें, तो कुछ कल जाके आके आवेलन सा घर पे तोड़ के जालन सा, तो घरे लेके सुखा देवेलन सा, तो सुखा के
1: पीस के
2: हाँ तब रख देवेलन सा, नहीं पीसे लन सा खाली सुखा देवेलन सा, तब पत्ता निकाल देवेलन सा खूब सुखा लेला, तो जब गरम पानी में लेके दुगो पत्ता
1: या फिजिक कर दी लन सा,
2: ऐसे प्रयोग कर लन सा।
1: तो ऐसे देखबा तो इतना हमने के लोकल मुरुम हमने के लोकल प्रॉन था

0: लोकल में गनाला शुरू में इतना जो हमने के जन टापू बात है प्लाओदेमिक वगैरह रहा ना तो इस सब प्लाओदेमिक नहीं हो जा लेकिन इतना ले बरिश से हमने के पूर्वज के साथ साथ यहाँ पर आल हो जा लोकल में गनाला
1: जी तो हमने के बतावा शंभू जी कि कितना प्रकार के जो प्लान बातें सब्जी बातें हमने मंगाए ला जाए पोते कर जाए कितना प्रतिशत हमने मंगाए ला जा ये सब जो अभी लोकल प्लॉन्स के बात हुआ था कितना चीज हमने मंगाए ला जा।
0: अच्छा देखा जन हमने बोला सब फ्रेश वेजिटेबल्स
1: जी
0: किसे गाजर खा ल गोभी खा ल वगैरह वगैरह ये सब हमने तो सुफिजा है सर बाहर से नहीं मंगाएला सर मंगाएला सर जब एगो कमी होला जब जैसे एगो एगो तूफान चला बर्बादी के जन जन कृषि बातें वो में हानि पहुँचल तब जाके मंगाला लेकिन ऐसे जब मुझे सर फ्रेश वेजिटेबल्स वो हमने उच्च सुविधा है सर एक आध गोवन सर ओके बोला सर सीजनल क्रॉप्स जैसे आलू प्याज लहसुन वगैरह और उतना भी नहीं नहीं सकेला सा पोज करे जितना चाहेला कैसे आलू के शायद 26,000 टन हमने के चाहेला तो उतना नहीं पोज के लासा तो ये पोते होला और ये जन्मा आलू प्याज और लहसुन सीजनीय भी हो
1: जी
0: तो एगो एगो एगो मौसम रहेला जब के रोपी ला जा कैसे अप्रैल से लेके सितंबर तक लगभग तब ओकर फसल तर सकेला जनवरी महीना या फरवरी महीना में भी चलता है तो लेकिन लेकिन सीजनी है तब ओकर बाद नहीं सकब से न रुपये
1: जी
0: तो कमी तब महसूस होला तो पहला ये लोग के पहला ऐप होते करके फिर जन चीज़ में ऐप होते कहला जन खाए ला सा फूड सबसे बड़का ओकर में रहेला हम गेहूँ और चावल
1: जी
0: लगभग हमार ख्याल से 80,000 टन तक सकेला हमने चावल ऐप होते कहला सा और लगभग सकेला 150,000 टन तक हमने गेहूँ ऐप होते कहला
1: तो हर देखे में मोरिस एगो एगो ट्रॉपिकल आइलैंड है ऐसा हमने तो कोनो कोनो लावेनीय बातें हमने जब बात कर रहे थे जब फूड सिक्योरिटी मॉरिशन फूड सिक्योरिटी की हजे परी हमने के जो गेहूँ बातें चावल बातें जे सकब सब रुपाए पैदावार करे
0: बिल्कुल लेकिन जो प्रकार से तुझे चाहता हूँ नहीं देखा हमने के हमने के टापू जन बातें शुरू में बोले से ना हमने के माटी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता तो हमने लगे उतना माटी शायद नई बातें कि जब स एगो रुपाई करे आटा खातिन या फिर चावल खातिन कुल मिला के देखब जब मिलेब तो सकेला दो दो दो सौ पच्चीस या 250,000 टन के पैदावार करे
1: जी
0: लेकिन हमने लगे हमने के टापू में अनेक ऐसा ऐसा चीज बा जन से सकब स एकर एक हम प्लासी करे 100% नहीं लेकिन एगो ज्यादा मात्रा तक सकब जा कैसे सबसे पहला हमने सकब सा अपन अपन जो भोजन माते जो भोग कैला सा ओकर में एगो बदलाव लाए
1: कैसे
0: ये जो चावल और गेहूं बाते जैसे बोला सा एलो ग्लिसेमिक तो होन सा तो उतना खाए खाते उतना नहीं अच्छा तो एक ही सकब सा हम प्लासी करे कैसे हमने के जो डाइट बाते ओकर में सकब सा ओके हम प्लासी करे मान्योग से पतात से बतात से सकब सा फुयापे के भी प्रयोग करे तो ये लोग में ग्लिसेमिक नहीं होन सा तो स्टार्ची होन सा तो ओकर में तो स्टार्ची माना तो सकब सा जो जब जब भोजन करे तो एगो बुट बतात खाए तो कि सकब सा हम प्लासी करे
1: हाई जो बात अभी बोले थे भाई शंभू हाय सकेला 10 जना में दुगो मानियन सा का कि मॉरिशन जो माइंडसेट बाते उ स नै सकब बदले
0: फैसिलिटी में
1: पड़ल रात के उ लोग अपन चावल खावन सा खयन सा अपन रोटी वे खयन सा उ लोग के ई जो माइंडसेट पर बदले खातिर तनी सुन लेता ली
0: एगो एगो एजुकेशन चाहला एगो अवेयरनेस चाहला के अपन न्यूट्रिशन पर चाहला थोड़ा बातचीत करे के कि कौन में ज्यादा सुविधा बा कौन में ज्यादा हानि सकी तो हर अपन स्वास्थ्य के पहुंचे हाय खाली डायरेक्ट नहीं सकब सा खाए लेकिन सकब सा थोसो में करे ओके आटा में तो कैसे अभी मान्योक में अभी देख लीजिए कैसे होता बेचाला तो महंगा बेचाला क्योंकि उतना पैदावार नहीं बा और उतना ओकर थोसो माशो नहीं होता थे लेकिन एगो आज बाद में एगो एगो एगो विजो की तरह

5 साल में 10 साल में अगर हमने सकब्जा हमने के मान्योक के ओकर पैदावार बढ़ाए स्वीट पोटेटो के बतात के बढ़ाए फुयापै के बढ़ाए ऐसा ऐसा चीज सकब्जा बढ़ाए तो एक आटा सकब्जा जो आटा आवता 35% तक मिला के

0: Takala ki pakwan mate diversité sa kap sa préparer kade la cuisine kade ta di sa kap sa remplacer kade ta 65% mais chala adha je ghat dai tamni ke jon hoa pe ta shoma bata sa ke la kali 30% tak ra jai
1: ki 100% jon niman bat bolle hoa hamni ke jon pla me hamni ke plates me jitna chiz chahela paushtik chahela hoi ke ta tohar dekhe me hamni aaj disappearing crops ke bare me bat kare thai ja ta कौन कौन क्रॉप्स बातें हमनी के कल्चर में हमनी के ट्रेडिशनों में है जा परी मॉरिस में जो डिजर्व करे लंसा उन लोग के कम बाक होई की
0: अच्छा एगो चीज बा जो हमनी बोला सा पल्सर्स हम बस ही प्रोटीन सा पकेट आ मिले ला ता एक कल ता इंपोर्टेशन भी दे रहा है एक अलमें बातें जैसे गो पॉइंट पोते हो ला ची पॉइंट पोते हो ला हाँ की नहीं ता शुरू में बोले ला हमी लगे कुछ बा पॉइंट जंतक पॉलिश्री वो बातें ता ओकर में से हाउ एको चिपवा के तेने रहला तो उही तसा कप्सा पकाए या फिर अच्छे जब तान रहला तसा कप्सा पकाए एको दूसर बात जस्ती जन आजकल नहीं है लोग केला अंब्रेवाद पहले हमने के आंगन में रहल ता अंब्रेवाद में एको छोटा सुन पौधा हो तो ओके ताई ताई कर बा छोटा ही रही तब ओकर में हो जन पौध मिलेला तो हो जब जुआ जला हरियर हुए बाल लेकिन जुआ जला तो खुल के निकल बा तो कर में से कुछ मिला तो चिपवा कर मिली पा गए अब एक दूसर बातें वो पौधा ने हा उसे जो नहीं हा वो हा बुक ला
1: जी
0: वो तो और नहीं लोग ला
1: हमने माटी के मूल कार्यक्रम कर रहे रली सा और इस सब के बारे में जैसे हम प्रवाद पाशीष जैसे बोकला की बात कर रहे थे वह आज हमने देखा था ऐसा जो नपलौते वो सब हवन सा कई जना वो लोग कल कल एक प्रभागाशो अब कर रहे थे हवन जब फिर से
0: जो तर प्रोग्राम कहला कैसे माटी की मूल करते आज जैसे जगह पर एक पर वार्तालाप करते हैं सर तो यही से ओकर पर कैसे बोला क्यूरियोसिटी जागी ना तब जाके आदमी लोग जाने की है अच्छा हयू एग्जिस्ट है तो कहाँ पर मिली कहाँ पर किनब तो ऐसे तो ये तो बहरहाल पल्सर्स पर थोड़ा सुन उदाहरण देनी स्टार्च पर तब बोलनी जैसे मनयोग बातें बटाल बातें बातें मिली अब देखा और एक आध वैसा चीज बा जो नेलो केला आजकल लेकिन हमने जब शादी रहला या उत्सव रहला ताको के आचार की तरह या कुचा की तरह प्रयोग केला ऐसा जैसे सुरन बातें
1: जी
0: देखा अब सुरन के कितना तरह के तरकारी सब पकाए बा चटनी पकाए बा तरकारी पकाए बा ओके आचार की तरह डलबा कुचा की तरह डलबा तो आजकल कहाँ लो केला सुरन
1: एगो चीज आचार के बात कर ले वह चलता
0: और चलता पहले बेलगी बगल जब जेबा तो हाँ। रास्ते में दो और हम के याद बा हम जब जब जवान हुई है लेकिन जब ज्यादा जवान रही तब जाके तुरा तनी सा हाँ। हमारा भाई तुर के घर पर लाके तब मामा आए चलता के आचार बनाओ
1: मन की जे सोचबो तो हमने के देश में ढेर चीज रहल ढेर चीज रहल जो हमने आज बोला था जा सकेला अब नए लौकता अब हमने तरस जायला सा एगो कहाबुल खाए के एगो जौबला खाए के परी बाजार में जाए के ना एगो मौसम आए अभी तब भगते भगते लोग को पीछे जमने जाप सा
0: लेकिन तू जाने लाओ खाते तू तरसे ला
1: हाँ
0: तो जे नहीं जाने लाओ कहाँ से तरसे
1: ये तो प्रॉब्लम है
0: तो नहीं जानी वो तो कई पूछे कहा तो फैसिलिटी में अब पूछे ला एगो जन एगो रसोई घर बा अब देख बा वीरे तो उन्हें जैसे बोला ऐसा एक हफ्ता में हवे पकेला सोच के बोल जा निमन से हवे लिशु पकी शुशु पकी वगैरह वगैरह
1: एको वही थे जैसे नई बातें
0: हाँ ता एको जस्ती वही थे चाहेला ता हम किसानों के मांग करती आज सकबा जा बुकला अभी लिवे में सा बुकला के आज सकबा जा रुपे अंब्रेवाद सकबा जा रुपे सुरन सकबा जा रुपे एको बढ़िया चीज रहत
1: तो जे हमने के जितना जना हमने के दादा दादी हबी ले खावन जा जे तो लोग लगे घरे लयका सब बातें तो लोग के बचाइया कौन ची हाँ विवाद कैसे रहल आगे का अपन जमाना कैसे बितावत रहला कौन ची खात रहला जब मैं उ लोग के योजन लेते गए वह बा उ बढ़ी और उ एगो जना हवन फोन पर उनका से हमने बचाए ला जा हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते जी
2: नमस्ते भैया से बोले नमस्ते दोनों जना के घर कमरों में नमस्ते बोला चाची
1: जी नमस्ते बोला चाची
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम रख लेगा जी तू चलता के बाद देख लिया चलता के जब बोला तभी मैं पानी भर गया लगा जाने लो हम भी डल ले हैं सा हम भी खाई ले हैं सा
1: जी
2: तो कर ककारी भी पकेला
1: अच्छा
2: तनी सन मेहनत था ओकर में मेसेल में बहुत अच्छा तू तो हर किसी के आम छोड़ दे बाकी चलता बात और अब ये कहाँ मिली
1: मुंह में पानी भरल हबी।

0: चढ़ा के खोज के खा के
1: हमनी खइले कैसे भैया बड़ा जे नहीं जाने लगे नहीं चले बात का जाने
2: सच्ची
1: नहीं चले बात नहीं जानी फिल्म है पहले की चीज जो रहल बहुत सभा चालू है अभी मानियो बात आपसे बोला भाई मानियो बात खाई जाता भात नहीं खाई जा एक बुध खा लेला में शांति से सूची
2: तो चाची हमनी के बतावो तू आज खा ला बता खा ला मान्यो खा ला
1: तू है बोला तो
0: चर्चा करनी जा अनेक प्रकार के जो फल बातें सब्जी बातें तोहरा तोहर ता जैसी अनुभव बाते एकाद गो जो तोहरा याद बाते एकाद गो फल सब्जी जो आजकल तन को भी नहीं लौकेला
1: देखा एक गो चीज हमरा याद बाबी की नहीं है मोवा बोला उसाई के बूत नहीं जा
2: उसाई
1: हाँ उसाई के बूत नहीं जा उतना बरका मिक्सिंग है जनिया में के जावे पहुंचो के अब वो चीज तनी जहर है जहर है उसा नहीं है ओके खाए के जाने चाहिए और जो पौध जाए जितना तोहरा अच्छा लगे खाई के
2: पानी
0: चला क्योंकि जन जन
2: लाल ढेर जना नहीं जानेल हमनी के दीपशिका बोला था एक और जना हवन चलो उनका से हमने बताया जा हेलो
3: नमस्कार
2: नमस्कार जी
3: जी मैं आपके कार्यक्रम में कुछ कहना चाहती हूँ हमारे द्वारी में बाबा बा बहुत बहुत बाबा हम तो तुर के सब की बाटी ला दे पकाईला हाँ अली सुफले में डलब सुसु आलू में डलब बैगन में डलब घुगनी पका देब के भूई करके लड़का लोग बहुत खुश कर खाई के जौता भी बा गोपा भी प्लौटले है एक आध गौछ बनान भी बा मानियक भी बा कोड़ा के भाजी बा हम सब रुपया
2: तोरा नहीं परेला बाहर जाके किने के तोरा सब कुछ तुम
3: जीते जीते हम ही रोपले हैं जीते खूब होवा बढ़िया
0: नीचे सब बता माटी के मोल के प्रोग्राम में की तोहर लगे
2: तो चल माटी के मोल कार्यक्रम तोहरे लगे हम सब करे
3: धन्यवाद
2: बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगा था चाची लोग के सुन के उन लोग के आंगन में हबी लेक बोला था वन अपवाद बाटे हाँ वो लोग सबके बाटे लन खा लन सुफले में डाल के और ची चीज आज तो मुंह में पानी हुए भर जाए अच्छा लगे था बहुत बहुत धन्यवाद चले एगो फटाफट म्यूजिकल ब्रेक लेके हमने वापस आईला जा

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम हबी तनी सुन बखत बातें जे कुछ हो पूछे के बातें फिर से हमने याद दिला दिला जा हमने के नंबर है 402-85-85-402-80-85 पर हमने के बढ़ जाना लोग हबी बता तवन जहाँ अपवाद बातें आंगन में ढेर चीज बातें हो लोग लगे तो चला हमने के फोन करिया शेयर करिया कौन सी बातें और कौन कौन से देवा आगे जो हमने के जिनेगासो तो हो लोग के सुनत हवन जा देखत हवन जा वो लोग जानियन जा हमने के जो डिसअपीयरिंग क्रॉप्स कौन जी एक और कैसे चाहेला उन लोग के पोते से करे के फिर से उन लोग के आने के दीपशिका बोला हवन भाई शंभू एक और जना हवन चला उनका से बताया जा। हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते
2: नमस्ते निशुषा जी और मेहमान को भी नमस्ते।
1: नमस्ते भैया जी बोला
2: लोग एक बड़ा गंभीर विषय पर बात कर रहा हुआ हम खुद से अपन
1: जरूर करेंगे जरूर
2: हमने के जो अभी देखी जो चीज मिला था मैं एक बात बोला कि आगे के जिंदगी में कुछ चीज
1: जी
2: उधर लगे वो औषधि के रूप में काम कर रहा था बाकी का है केमिकल नहीं रखल आज सब पियो रखल जैसे अमरता के तौर पर बोला कहीं अफवा है यहाँ पर कच्चू भाजी सुसु भाजी अरुई जलाता
3: था
2: एगो

0: আমি যে পুরানি আর ভুয়া বিপ্লব কাল আমি লাগে ভুয়া বিপ্লব কাল আমি তো সুরান কেসে গোল জেলা কব সুতু বিশপ দাও আপনি আই আচার কে চিত দলব সুলি প্রাণী বিবাহ সহি ফ্রি রহি যোগন মদামি আই সে পঙ্গাতাই সব সব আদি कैसे हमने चाय के पत्ती के बोला जा तो औषधि के रूप में कोई चाय चाय चूरे हमने लगे तो अपन मुंह में देते ताको पत्ता डाल दे तो वो पेट में जो कीटाणु बहु मार तो ऐसे ऐसे हमने के पुरानिया लोग ऐसे जिया चला जा आज हर एक जना से अभी अमर लाखों में अध्याकर बा पुदीना बा हरिफुले बा शिशु भाजी बा देखवा सौबारक बा सौबूस बा साबुका बा সব লাইচি বিবাহ আমি তো খাইলে আমার বা আর ভাবিলে খাইলে সদা এইসন সাবাদ সেইসন চটকার সে বলে যেন খাই লাগা তুই তোরে বাস এই আমার টিলাল পাতি করে কি আপ সবই কো আম সুদা খাই আর শুভ দিন আর প্রোগ্রাম বানাই দে রাখ
1: बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी
2: बहुत और
1: शुभ दिन तोरो अच्छा लगे था सुन के जब चाचा जी बोलत होवन बुझा था हाउ विजन वा सामने आल बाकी
2: हाँ, जैसे बोलत होवन एक आद गो फल के नाम ले लन जन अब हम किने लोकेला तन कोई ने लोकेला बिबास हम लगे था हल पहले तब का में से निकाल के आचार दलवा करंडा
1: जी
2: करंडा या लावता ने लोकता और एक चीज बोलन चाचा हमने यही पर ही बोल दिला जा और हमने के आंगन में पहले कैसे आजकल तक जहाँ देखबा तक क्लिनिक दुखते है डॉक्टर के पास जाए था पहले हमने के आंगन में एक आध गो चीज़ ऐसा न हल जो हमने प्रयोग करते जा हमने किसी खांसी होए वगैरह वगैरह होए तो इस प्रकार से आयापाना रहल ये भी अभी भया बोलन जैसे पास आए अज्ञाकर किसी तो अज्ञाकर पान पान के पत्ता ओके ओके तवा पर डाल के गरम करके निचोड़ के कर रस निकाल के या भी ले हुआ ला तो ऐसा अनेक चीज बातें जो नहीं लोग किला आजकल
1: जी
2: ये भी
1: ये सच्ची बात बोला था हुआ हमने आज तो हमने मलाट हो जाए सर बीमार हो जाए दर्द होगी ला सर डॉक्टर लग गए क्लिनिक जाए ला सर हाइजा हो जाए
2: हाँ। पहले जब घाव लगा था हल तो एगो एगो पौधा हल बेलजामिन
1: बेलजामिन पीस के ऊपर जूस
2: हाथ से हाँ पीस के तब के जहाँ घाव लगल रख दे या फिर एक दूसरा पौधा रहा टूट गए
1: जी
2: तो ओकर भी पत्ता पीस के सरफ से डाल दे
1: और
2: एगो आप पल्हा पल्हा एगो पेड़ है जो में लड़ लड़ एगो चीज निकला वो भी ओकर प्रयोग होता
1: डे चीज रहल हमने जानत रह लीजा तो है ये तो प्रॉब्लम नहीं है पर हाँ इग्नोरेंस अकेला हमने बोला स कि जो हमने के आज के जो माता पिता हवन सा वो लोग ही नहीं जाने लन सा तो वो लोग अपन लड़का के कौन सी बोलन सा तो जितना घर में दादा दादी हवन जब हमने के बर्जना हवन जा बुजुर्ग हवन जा हमने तो मांग करती जा हाँ अपन लड़का के अपन नाती पोता के तू सिखाव दिखाव कौन ची है आगे कौन ची रहल आजो सब जब देखियन स जब बोलब तब जनियन स ना तो हमने बात करा था जहाँ भी क्लाइमेट ऑफ चेंज हो गल बाते चेंज ऑफ क्लाइमेट हो गल बाते सब कुछ बदलते जा बाते और आली मौत हमने बात करा था जब फूड सिक्योरिटी तो है जो लोकल क्रॉप्स बाते वो लोग के ढेर महत्व बातें काहे कि एगो सकम से बोले विन सिचुएशन बातें हमने के जितना खेती हर और हमने के पर्यावरण को खातिर
2: बिल्कुल जहाँ तो अभी जन हमने के जो खेती बाड़ी बातें जरा तक जन बोला सा बाहर के सेमा सेमा इब्रिड पर निर्भर बातें
1: जी
2: तो ये लोग हाई परफॉर्मिंग वराइटीज होन सा जेकर जेकर खातिन चाहला तोरा बहुत रिसोर्स डालेंगे बहुत पानी बहुत खाद बहुत ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह तो दिग्बत सकेला गो गानमा जस्ती मिलत हुई पैदावरण सकेला ज़्यादा हुई थोड़ा बहुत लेकिन देख रहे कितना ले पहला कह रहे कि उसमें जितना खर्चा होला बहुत रहेगा और ये लोग हाल ही से स्ट्रेस है वो भी होना चाहिए आज तनिशुन पानी नहीं दिला था फ्लिट की जान जा बेहतर रहत कि हमने एगो एगो विजन की तरह एगो रिवाइवल रहत

0: कि हमने जन जन प्लान लोकली अडाप्टेड बाटे तो वो तो हिंगे के है ना अडाप्टे बाटे आज ओकर दे ओकर ओकर खेती बाड़ी करब जा तो वो तो देख रेख ने मांगेला हाँ एगो एगो न्यूवो वाइटे हाइब्रिड कैसे को फूल गोभी के लेबर सकेला हुआ है पोते सकेला इतना बड़ा हो तो हाँ लेकिन नहीं बड़ा हो तो हिब्रिड सकेला हमने के लोकल भी बा वाइटे लोकल फूल गोभी के उस अकेला इतना बड़ा नहीं होते ही टेंशन मुआयें होते ही लेकिन देख रेख में उतना उतना चीज नहीं पड़ा डाले के उतना खाद नहीं पड़ी डाले के उतना पानी उतना रासायनिक पदार्थ नहीं पड़ी डाले के तो इन दी एंड जैसे बोला सा हमने हमने तो के कर में विनर बातें हमने क्योंकि उतरा उतना रासायनिक नहीं मिली खाए के वगैरह वगैरह और एक पर एक चीज़ अगर बोले हमने के बीजे में एगो एगो चीज शायद ढेर कोई नहीं अगर मौके कर ले कुछ निमन चीज भाई वो उसका नाम है 25x35 विजन यानी कि लाने 2035 ले हमने के चला 25% जो हमने पोजुए के लासा चला मिनिमल एग्रीकल्चरल इनपुट से पोजुए करे के
1: तो अभी जैसे बाल अबोलत हुआ चाहे ला मिनिमल इनपुट हो के
0: यानी कि मिनिमम खाद मिनिमम पेस्टिसाइड मिनिमम वगैरह वाला देखो विजन तो आप चाहे ला एक कर पर
1: जब एगो विजन रहेला तब एगो मिशन वे हो जाला तब अपन मिशन के सक्सेसफुली ले जाए खातिर चाहे लागे वो वोलोंटे चाहे लागे विजन और सरकार फागे हमेशा हमने के जितना खेतिहर सब हवन जाओ लोग के मदद पहुँचावेलन तभी ढेर जाना तह सकेला तुहरा देखत हवन सुनत हवन और लोगों के मन बा अब इस सब के बारे में सुनन जो तक बोकलास है हौ तो लोग के मन बा अब रोपाए करे के उ लोग कहाँ जानियन सर बाटे मोरिस में सब
0: नहीं बाटे हबी ले बाटे जहाँ तहाँ लोग किला गाँव में खासकर जे बता थोड़ा लोग किला तो दुगो दुगो जगह से सकल ऐसा प्रबंध करे एगो तो देखा कैसे अभी भैया जी बतेलन चाची बतेलन वगैरह वो लोग लगे बाटे तो तू अगर आस पास में वहाँ पर ही हो तू जाने ला ऐसा ऐसा चीज बाटे तो हम बोलती जाके भैया या चाची के भेंट करे के बोला देखा हम कितनी सुन सकेला बीज मिले या बुछिया मिले हम घरे रूपब ऐसा ऐसा आदमी जो बातें एक उपाई करते हम 100% से कब बोले कि हंस हंस के खुले दिल से दियन सा तो राजा के अपन घरे रोपे के हाँ एगो चीज दूसरा कृषि मंत्रालय के नीचे एगो संस्था बाते नाम बर्कली एक्सपेरिमेंट स्टेशन बर्कली में हाँ 467950 ओकर नंबर है 4679150 तो वहाँ पर ही अनेक प्रकार के ऐसन ऐसन रोपाई करे खातिर बीज तरह मिली या फिर ओकर प्लान ही पौधा ही सकेला मिली ओकर लगे वो लिस्ट बा जे बाद देखिए आज कैसे बुकला बुकला का भी बुकला सकेला भी मिलत हुई लेकिन आज नहीं हुई अभी तो चाहे ला थोड़ा एगो एप्लीकेशन करके वो मैं लिख दे के हमके कटहर के वो गौछी के काम बात हमके वावांग के वो गौछी के काम बात वगैरह वगैरह जमलाक के वो एगो पौधा के काम बातें तो अपन अपन एप्लीकेशन करब दर्ज करब तैयारी करके तोरा ध्यान से और हम हजन बोला है हम सब कोई के बोलती करे के घर पे देखा कैसे वो अमरूद के पेड़ पौधा तो लगे हुए अमरूद में थोड़ा जोगों से जैसी विटामिन से मिली
1: ये सच्ची बात
0: अच्छा नहीं बात है घर पे तो न्यूट्रिशन खाते हैं मिनरल खाते हैं विटामिन कुछ ना कुछ मिली ना
1: कंसोमों से कोई प्रोजविजों है हम बाइपा हमेशा हमारे दिमाग में रहेला तो चला जितना चीज सकबा जा रुपाए करे है जे अपन आंगन में एगो पो में एगो वास में कुछ हो तनी सुनवे जगह रही कुछ हो ना कुछ हो हमने के जो डिसअपीयरिंग क्रॉप्स है वापस हमने के चाहेला वो लोग के आने के जमे हमने तनी सुन वो तो सुफिजा नहीं सकब सब बोले हाँ कि नहीं पर हमने के कुछ ना कुछ मिली खाए के और हमने के इस निगासुमन जानियन सा कौन ची है हमने के डिसअपीयरिंग क्रॉप्स वापस आने के बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संजय शंभू जी फागे के अधिकारी हवा और जितना जना हमने के देखलन सुनलन और पार्टिसिपेट करलन सब कोई के हमने के सच्चे टीम देने से बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम।

0: या शाह की स्टूडियो उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
1: सभी को, नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। करण हितवा की मौत की जांच अब हत्या की ओर रुख कर रही है। कल किए गए पोस्टमार्टम में ये निष्कर्ष निकाला गया कि करण हितवा की मृत्यु स्कल फ्रैक्चर के कारण हुई है। पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर ने अपराध की संभावना को प्राथमिकता दी है। डॉक्टर के अनुसार मृतक के सिर पर पाए गए घाव किसी तेज धार वाले हथियार के किए गए हमले के कारण हो सकते हैं। बाचीमा के रहने वाले 31 साल के करण हितवा शनिवार 27 जून की शाम सुकीनाम में सड़क किनारे मृत अवस्था में मिले थे। इस मामले की जांच अब सुयाकी सीआईडी कर रही है। बताया गया है कि घटना स्थल पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनानारा नोड में हुए एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद हुआ। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हो गया था। कुछ घंटों बाद उसे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबुद के रूप में हुई है। कथित गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। सेशल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद आज जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम अपनी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम के साथ वहाँ इस समारोह में भाग ले रहे हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फुटबॉल की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए राउंड ऑफ 32 का दौर शुरू हो चुका है और अब सभी टीमें खेलेंगी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की करने के लिए। कल ग्रुप जे का अंतिम मैच खेला गया। अर्जेंटीना और जोर्डन के बीच मैच का स्कोर रहा 3-1, जबकि राउंड ऑफ 32 का सबसे पहला मैच कल रात खेला गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम का सामना हुआ मेजबान देश कनाडा के साथ और मैच काफी रोमांचक रहा। स्कोर रहा कनाडा 1 और बफाना 0। आज रात 9 बजे ब्राजील खेलेगा जापान के खिलाफ। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: दिन के 10:04 हुए हैं श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रस्तुत है भक्ति धारा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आप लोगों की सेवा में मैं उषा यहाँ पर साथ दूंगी। सबसे पहले चलिए इस कार्यक्रम को हम का आरंभ करते हैं एक भक्ति गीत, एक गणेश वंदना के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मानस मंथन कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहनों को विनु अरुण का सादर वंदन और अभिनंदन।
2: मानस मंथन
1: रामचरित मानस
2: प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर
1: 253 के नीचे की चौपाइयां आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रसंग आपको याद होगा कि सभी राजाओं ने शिव धनुष को उठाने का प्रयत्न किया लेकिन कोई सफल नहीं हो सका और ऐसी स्थिति देखकर राजा जनक बहुत निराश हुए और उन्होंने अपनी निराशा को इस प्रकार अभिव्यक्त किया कि लगता है इस धरती पर अब कोई वीर नहीं बचा, मैंने बेकार में

ये प्रण कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। और उनके इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी का पारा चढ़ जाता है, वे आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध से कांपने लगते हैं और ऐसी बातें कहते हैं कि मैं यदि हे राम जी आप आज्ञा दें तो मैं इस धनुष को बड़ी आसानी से उठा सकता हूँ। अनेक उदाहरण दे करके वे इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि इस धनुष को उठाना उनके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और उनकी क्रोध से आक्रोश से भरे हुए इन वचनों को सुन करके सभी राजा लोग एक तरह से कांपने लगते हैं और सीता जी अपने मन में प्रसन्न होती हैं और राजा जनक संकुचित हो जाते हैं, एक तरह से उनके मन में थोड़ी सी लज्जा आ जाती है। तो निराशा और संकोच से राजा जनक का पूरा अस्तित्व आक्रांत हो उठा। उन्होंने लक्ष्मण जी के ऐसे उद्गारों की कल्पना भी नहीं की थी, इसलिए उन्हें संकोच हुआ कि श्री राम और लक्ष्मण जी के शौर्य को, उनके पराक्रम को जाने बिना मैंने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी कि वीर बहीन मही मैं जानी। लेकिन साथ ही उनके मन में ये प्रसन्नता भी हुई कि उनकी निराशा अब आशा में फलित होगी और उनका मनोरथ पूर्ण होगा। और साथ ही सीता जी भी मन ही मन बहुत प्रफुल्लित हो उठती हैं, उन्हें भी विश्वास हो गया कि श्री राम धनुर्भंग करने में समर्थ हैं, इसीलिए लक्ष्मण जी ऐसी बातें कह रहे हैं। और जब लक्ष्मण ये करने के लिए तत्पर हैं, वे ये सब करने के योग्य हैं, तो फिर राम के पराक्रम का तो कहना ही क्या। और श्री राम बड़े भाई के होते लक्ष्मण जी तो धनुष उठाने आएंगे नहीं, इसलिए ये विवाह श्री राम से ही होगा। तो गुरु विश्वामित्र, श्री राम और सभी मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। आइए अब हम इस प्रसंग पर दृष्टि डालते हैं इन चौपाइयों के माध्यम से। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। एक स्थिति है, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ रहा है। जब लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचन व्यक्त हुए तो तुलसीदास जी ने लिखा कि पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाओं के हाथी कांप गए, जितने राजा थे वो डर गए, लेकिन सीता जी के मन में हर्ष हुआ और राजा जनक के मन में संकोच हुआ कि मैंने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी। अब कौन बचा? गुरु विश्वामित्र और राम जी और उनके साथ साथ जितने भी ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे, वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए और पुलकित होने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि लक्ष्मण जी ने राम जी के धनुष उठाने की भूमिका बना दी है। अभी तक कोई श्री राम को ये नहीं कह रहा है कि तुम उठो और धनुष तोड़ो, और राम तो अपने आप उठ करके धनुष तोड़ने आएंगे नहीं जब तक उन्हें कोई कहेगा नहीं। बाकी राजा तो एक एक करके अपने आप उठ करके आ रहे थे, लेकिन श्री राम अभी राजकुमार हैं और वे अपने गुरु के साथ आए हैं, अभी गुरु का आदेश नहीं मिला है, भला वे कैसे उठ करके जाते और धनुष उठाने का प्रयास करते, इसलिए वे चुपचाप बैठे हैं। तो भूमिका कौन बना रहा है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने जब ये बातें बोली तो इसका मतलब है कि अब श्री राम को कहा जाएगा कि आप आइए और धनुष तोड़िए, और इस प्रकार ये जो पूरा यज्ञ चल रहा है, जो धनुर्भंग का ये जो महोत्सव हो रहा है, इसकी पूर्णाहुति, इसका इतिश्री कैसे होगा? श्री राम के धनुष तोड़ने में

और सीता जी के साथ उनका विवाह होने में अब उसी की प्रतीक्षा है और उसी की पृष्ठभूमि यहाँ लक्ष्मण जी ने बनाई है। तो विश्वामित्र सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। सब लोग प्रसन्न तो

मुझे तो अपनी मर्यादा का पालन करना है। तो लक्ष्मण जी ने अपना सारा क्रोध व्यक्त कर दिया, और ये क्रोध लक्ष्मण जी का वास्तव में राजा जनक के प्रति नहीं है, ये एक तरह से वे निंदा कर रहे हैं उन राजाओं की जो मन में अपने पराक्रम का अहंकार लेकर के आए थे। एक तरह से व्यंग है ये लक्ष्मण जी का उन सब के प्रति कि तुम लोग क्या सोच के आए थे और किसी काम के नहीं निकले, और तुम्हारे कारण राजा जनक को इतने कठोर शब्द बोलने पड़े, राजा जनक के मन में इतनी निराशा आ गई है, ये सब तुम लोगों के कारण। तो स्वाभाविक है कि अब कौन बचा, श्री राम, अब उनकी बारी आएगी ही। तो सैन ही रघुपति लखन अनिवार्य। जब लक्ष्मण जी इस प्रकार क्रोध भरी बातें बोल रहे हैं तो रघुपति ने यानी राम जी ने उनको संकेत दे करके बैठने को कहा, यानी इशारे से ही उन्हें कहा कि बहुत हो गया, अब बैठ जाओ, और प्रेम समेत निकट बैठा रे। और वो जानते हैं कि लक्ष्मण मुझे कितना प्रेम करते हैं, जो कुछ भी लक्ष्मण जी ने कहा है वो मेरे प्रेम के कारण कहा है, वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा कहीं से भी कोई अपमान हो ये श्री लक्ष्मण जी कभी सहन नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण जी के प्रेम को श्री राम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। वाल्मीकि जी ने कहा कि लक्ष्मण जी राम जी के मान लो बाहरी प्राण थे, उनके प्राण थे, तो ऐसे लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके राम जी उन्हें प्रेम से बैठने को संकेत देते हैं और साथ ही अपने पास उन्हें बिठा लेते हैं। विश्वामित्र समय सुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात जनक का संताप मिटाओ। अब वो शुभ घड़ी आ रही है जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी को लगा कि अब वो शुभ समय आया है, यानी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो समय की, उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं, वो कभी धैर्य नहीं खोते, वो कभी जल्दी बाजी नहीं मचाते, वो कभी अधीर नहीं होते, वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि उचित समय आए। यदि पहले ही श्री राम जाकर के धनुष तोड़ देते तो ऐसा लगता कि अरे बहुत बड़े बड़े राजा आए थे, वो भी तो तोड़ सकते थे, यदि श्री राम ने तोड़ दिया तो कौन सा बड़ा काम किया, कौन सा कबाल किया। लेकिन जब सब पराजित हो जाए और उस समय कोई भी उस कार्य करने के लिए बचा ना हो और तब कोई आके उस कार्य को करे, तब उसकी महानता मानी जाएगी, तब उसके गुणों का प्रदर्शन होगा, तब उसके गुणों को एक तरह से प्रमाण माना जाएगा। इसलिए गुरु विश्वामित्र जी इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सब राजा पराजित हो जाएं, सब राजा असमर्थ हो जाएं, कोई उठा नहीं पाए, और तब मैं श्री राम को बुलाऊंगा। तो गुरु विश्वामित्र जी ने शुभ समय जान लिया और अब वो अत्यंत प्रेम से कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। बहुत सुंदर है, कह रहे हैं राम उठो, और भंजहु भव चापा, भव मैंने शिव जी का ये जो चाप है, शिव जी का ये जो धनुष है, इसे उठाओ और तोड़ दो। ये नहीं कहा कि उठो और कोशिश करो, ये नहीं कहा विश्वामित्र जी ने कि राम जैसे सबने प्रयत्न किया है उसे उठाने का, एक बार तुम भी उठो और अपने बाहुबल को आजमाओ। नहीं, उन्हें पूरा विश्वास है श्री राम के पराक्रम पर, श्री राम के बल पर, श्री राम के शौर्य पर, इसलिए वे अविश्वास से नहीं, संकोच से नहीं, दृढ़ता पूर्वक

विश्वास के साथ कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा। हे राम उठो, आ गया है सही समय, उठो और तोड़ दो शिव जी के इस धनुष को। और क्या करो, मेटहु तात जनक परितापा। राजा जनक इस समय ताप से जल रहे हैं, यानी उनके हृदय के अंदर दुख की ज्वाला भड़क रही है। एक पिता के रूप में वे बहुत निराश हैं, वे बहुत हताश हैं। उनका दुख अभी हम सब ने देखा है, उनके दुख भरे वचन हमने सुने हैं। इसलिए अब उन्हें और कष्ट में नहीं रखा जा सकता। उठो और जल्दी से जा करके इस धनुष को तोड़ दो और राजा जनक का दुख दूर कर दो। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरषु विषाद न कछु उर आवा। ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि जुवा मृगराज उलजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी ऐड से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। श्री राम गुरु के आदेश की प्रतीक्षा में थे। जैसे ही गुरु ने उन्हें ये आदेश दिया कि उठो और जाकर के धनुष को तोड़ो, राजा जनक का संताप दूर करो, गुरु के वचनों को आज्ञा मान करके राम जी ने सबसे पहले उनके चरणों में सिर नवाया। वे गुरु हैं, उन गुरु के कारण श्री राम जनकपुरी आए हैं। ये उनके गुरु विश्वामित्र ही हैं जो उनमें अपना विश्वास दिखा रहे हैं। ये गुरु विश्वामित्र हैं जो धनुर्यज्ञ के लिए उन्हें लेके आए हैं। इसलिए गुरु का आदर करना, गुरु का सम्मान करना, जो हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा आधारभूत नियम है, सिद्धांत है, और जिसका पालन श्री राम ने सदा किया, वो आज भी सबसे पहले अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं और उठते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी कि जब राम जी उठ रहे हैं तो उनके मन में क्या है। देखिए, पुष्प वाटिका में राम जी सीता जी को देख चुके हैं और उन्होंने अपने मन की बात लक्ष्मण जी को बता भी दी थी और गुरु को भी बता दिया था। इसलिए लक्ष्मण जी को भी पता है कि राम जी सीता जी का वरण करना चाहते हैं, गुरु को भी पता है। दोनों चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी श्री राम और सीता जी का विवाह हो जाए। और राम जी के मन में तो कितनी उमंग होगी हम सोच सकते हैं, क्योंकि वे सीता को अपने हृदय में अंकित कर चुके हैं, हृदय में बिठा चुके हैं। उनकी यही इच्छा है कि सीता उनकी पत्नी बने। लेकिन जब वे खड़े होते हैं धनुष उठाने के लिए, जहां धनुष रखा है वहां जाने के लिए जब वे खड़े होते हैं गुरु की आज्ञा पाकर, तो हरषु विषाद न कछु उर आवा। ना उनके मन में हर्ष है और ना विषाद, यानी ना वे प्रसन्नता से, वो बिल्कुल लाल हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि आह बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, अरे वाह अब तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। जैसे हमारी स्थिति होती है, कुछ बड़ा हमें पाना होता है तो हम बिल्कुल फूले नहीं समाते हैं, हमारा पूरा हर्ष हमारे शब्दों में, हमारे चेहरे पर, हमारे पूरे भाव भंगिमा पर अभिव्यक्त होता है। श्री राम वैसे नहीं हैं, वो मर्यादा में हैं, और जो मर्यादा में रहते हैं, जिन्हें गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है, कि स्थित प्रज्ञ क्या है कि ना वो ज़्यादा हर्ष में हर्षित होता है ना दुख में दुखी होता है, वो हमेशा एक तरह से इक्विवेलेंस में रहता है, यानी समत्व में रहता है। वैसे ही श्री राम हैं, ना उन्हें हर्ष है कि मुझे आज्ञा मिली है अब मैं धनुष उठा करके तोड़ दूंगा और सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त कर लूंगा, तो ना उनके मन में हर्ष है और ना कोई विषाद कि यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो क्या होगा। वे दोनों से परे हैं, हर्ष और विषाद से बिल्कुल परे। और इसी का वर्णन अयोध्या कांड के मंगलाचरण के जो श्लोक हैं उनमें तुलसीदास जी ने कहा कि प्रसन्नता या न गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज

श्री रघुनंदनस्य से सदा मंजुल मंगल प्रदा। यानी जो श्री राम हैं उन्हें जब राज्याभिषेक का शुभ समाचार मिलता है तो ना उन्हें प्रसन्नता होती है और ना वनवास का समाचार पाकर उन्हें दुख होता है। उनकी जो मुख कमल की छवि है वो सदा एक सी बनी रहती है, ना दुख में निराशा और ना प्रसन्नता में अतिशय हर्ष। तो उसी को यहाँ पे तुलसीदास जी बोल रहे हैं, हर्षु विषाद न कछु उर आवा। उनके हृदय में ना हर्ष की भावना है ना विषाद की भावना है, ठाड़े भय उठी सहज स्वभाव, एकदम सहज रूप में वो खड़े हो जाते हैं। जैसे ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि मैं यहाँ आया हूँ, कोई राजा धनुष नहीं उठा पाया, गुरु ने मुझे कहा मैं जा रहा हूँ धनुष उठाने, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बिल्कुल सरल बिल्कुल सहज स्वभाव से वो वहाँ जा रहे हैं, ठवनी जुवा मृग राजु लजाए। लेकिन जब वो खड़े होते हैं तो लग रहा है कि जवान सिंह को भी वे लजा दें, मतलब इतने पराक्रमी हैं कि उनके सामने जो सिंह है शेर है वो भी उनके पराक्रम के आगे उनके ओज के आगे उनके आत्मविश्वास के आगे लज्जित हो जाए। और उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे, नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। श्रोताओं ये दोहा इतना सुंदर है कि इसे बताने में इसकी व्याख्या में थोड़ा समय लगेगा, इसे अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आपसे मैं विदा लूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।

10:51 हुए हैं श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। आप लोगों ने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आशना के स्टूडियो में उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
1: सभी को, नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सेशेल्स अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का भव्य उत्सव आज मना रहा है। कई दिनों की तैयारियों के बाद जश्न का दिन है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और

0: सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम भी अपनी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम के साथ वहां इस समारोह में भाग लेने गई हुई हैं। 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से सेशेल्स ने राजनीतिक स्थिरता, पर्यटन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 50वीं वर्षगांठ के समारोह में राष्ट्रीय एकता और देश की उपलब्धियों को विशेष रूप से उजागर किया जा रहा है। मडागास्कर में मॉरिशस के दूतावास ने मनानारानोट में हुए एक दुखद घटना के बाद शोक में डूबे परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून को एक मलगासी महिला का शव बरामद किया गया। उसकी चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है। परिवार के अनुसार संदिग्ध उसका साथी है जो घटना के बाद फरार हो गया। कुछ घंटों बाद उसे मलगासी पुलिस ने खोज निकाला। संदिग्ध की पहचान मॉरिशस के नागरिक राजीव जिबुत के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस की गोलीबारी में घायल हुआ और अस्पताल में बाद में उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल मॉरिशस में कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर कोई जानकारी नहीं दी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में वेतन में वृद्धि जारी है। पहली तिमाही 2026 में वेज रेट इंडेक्स पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% से बढ़ा है। ये वृद्धि कई क्षेत्रों में वेतन में बढ़ोतरी की पुष्टि करती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि देश में मजदूरी और श्रम में सामान्य सुधार देखा जा रहा है। विदेश की खबरों में फ्रांस के पूर्वी हिस्से में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी लोग, पायलट और 10 यात्री इस हादसे में मारे गए। मृतकों में 5 इंस्ट्रक्टर और 5 ऐसे लोग शामिल थे जो पहली बार स्काई डाइविंग करने की तैयारी कर रहे थे। ये विमान जो पैराशूटिंग स्कूल द्वारा संचालित है, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। बताया गया कि कुछ पीड़ितों के परिवार वाले भी दुर्घटना के समय एयरफील्ड पर मौजूद थे, क्योंकि वे पहली बार किए जाने वाले टैंडम जंप को देखने आए हुए थे। ये थे अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। ब्रांच रोड लालमाटी में 69 साल की 69 years old की कुमारी पद्मावती बसावा, कुमारी पद्मावती बसावा जो लीला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के एक बजे उनके मकान ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। महात्मा गांधी रोड स्टैनली रोजिल में 76 साल की 76 years old की श्रीमती हेमंती हृदय पैराशी नाम रतन और जो बसंती के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे धर्म हृदय के मकान महात्मा गांधी रोड स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्लेव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रा रोड लिस्पिहांस कॉचे मिलितिया में 39 साल के 39 years old के श्री वेंकटेश्वर राव नरसिमलू जो कृष्ण के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी कोमल नरसिमलू के मकान रा रोड लिस्पिहांस कॉचे मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: Radio Mauritius.
3: 800 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے

0: पहले ही थाम लेता है। वो जो चाहे क्या नहीं मुमकिन, वो ना चाहे तो क्या करे कोई। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फजले खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मोशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम्द, बयान, नातु सलाम। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्ज़ि वहुवल अज़ीज़।

सदकुल्लाहु लज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। पाक परवरदिगार, जो हाजत रवा, मुश्किल कुशा, शफीक, रहीम व वदूद, करीम है, अल्लाह के सिवा कौन है जो तंगी को आसानी में बदल दे, तकलीफ़ में राहत का सामान कर दे, आंसुओं में भी मुस्कुराहटें बिखेरे, बीमार को शिफा दे दे। वो सिर्फ़ अल्लाह ही है जो टूटे हुए दिल और दम तोड़ती हिम्मतों को नहायत शफ़क़त से जोड़ देता है। बेशक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह।

0: अल्लाह ताला ने इंसान को दिल दिया लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा और फरमाया, याद रखो दिल का सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। मौज़ सामेईन, अब आप समात फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान, मौजू है करबला के जानिसार। आइए समात फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं,

जमीनास व बेशक दुआ जमीन व आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और इसे कोई चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सन 61 हिजरी 61 इस्लामिक साल की बात है, मुहर्रम शरीफ का महीना था, 10 तारीख थी, जुमा का दिन था, मैदान करबला में अहले बैत अथार का इम्तिहान हो रहा था। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो जो काफिला अहले बैत के सरबरा थे, आप समझाने की आखिरी कोशिश के लिए यजीदी जालिमों के सामने तशरीफ़ लाए। कमोबेश 12,000 का लश्कर सामने है, इसके बावजूद आपके चेहरे मुबारक पर कोई खौफ व ख़तरा नहीं था। आप मैदान में तशरीफ़ लाए, यजीदी फ़ौज को अल्लाह पाक के अज़ाब और जहन्नम की आग से डराया, इन्हें बताया कि मैं हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु हूँ, हमारे नबी तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, सय्यदा पाक बतूल जहरा रदी अल्लाहु अन्हा का शहज़ादा हूँ, इस जुल्म से बाज आ जाओ, हमसे जंग करके अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। इस वक्त यजीदी फ़ौज में एक खूबरू बहादुर नौजवान मौजूद था, उसका नाम था हुर बिन यजीद। इनका दिल कुछ तो पहले ही से बेचैन था, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा सुनकर बेचैनी और बढ़ गई, बेकरारी ऐसी हुई कि एक जगह ठहर ना पाए। यजीदी लश्कर के सिपे सालार उमर बिन साद के पास पहुँचे, कहा तुम इमाम के साथ जंग करोगे, तुम रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे। उमर बिन साद के पास इसका सवाल का कोई जवाब नहीं था, मगर अफसोस दुनिया की मोहब्बत जब दिल में चढ़ी हुई हो तो कोई नसीहत काम नहीं आती। उमर बिन साद भी नसीहत ना ने असर ना किया। हज़रत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हो यहाँ से मायूस होकर वापस मैदान में आए, बदन कांप रहा है, चेहरा जर्द है, परेशानी के आसार साफ नज़र आ रहे हैं, दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा है कि पास के सिपाही भी हैरान हैं। इनके भाई मुसअब भी साथ मौजूद थे, पूछा भाई तुम बहादुर हो, बेहतरीन जंगजू हो, तुम पहली बार तो जंग में नहीं आए हो, तुमने बहुत सारे बहादुरों को धूल चटाई है, फिर आज क्या मामला है, ये बेचैनी कैसी। जते हुर ने मोहब्बत अहले बैत में डूब कर खौफ खुदा से लरसते हुए कहा, बात यह है कि ये जंग मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों के साथ है, किसी दुश्मन के साथ नहीं बल्कि अपनी ही आखिरत के साथ लड़ाई है। मैं इस वक्त जन्नत व दोजख के दरमियान खड़ा हूँ, दुनिया पूरी ताकत के साथ मुझे जहन्नम की तरफ खींच रही है, इसलिए दिल कांप रहा है। अभी ये बात हो ही रही थी कि एक बार फिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु की आवाज़ गूंजी, फरमाया कोई है जो आज आले रसूल पर जान कुर्बान करे और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हुजूर कामयाबी पाए। अल्लाह अल्लाह, ये प्यारी आवाज़ सुनने की देर थी, हज़रत हुर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने घोड़ा दौड़ा दिया। यजीदी जालिम समझ रहे थे कि शायद इमाम आली मकाम पर हमला करने जा रहे हैं, मगर यहाँ तो मामला कुछ और ही था। हज़रत हुर रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए, घोड़े से उतरे, अदब के साथ खड़े हुए, अर्ज़ किया ए इब्ने रसूल, मैं वही हुर हूँ जिसने पहले आपका रास्ता रोका था, मेरी गलती माफ़ फरमा दीजिए और आज अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हों ने इनकी माजरत कबूल फरमाई और इन्हें अपने लश्कर में शामिल फरमा लिया। जब हज़रत हुर के भाई मुसअब बिन यजीद ने यह मंज़र देखा तो इन्हें भी जोश आया, इन्होंने भी घोड़ा दौड़ाया और अहले बैत अथार के पाक लश्कर में शामिल हो गए। दौरान जंग ये दोनों भाई और इनका एक ग़ुलाम खूब लड़े, अकेले हज़रत हुर रहमतुल्लाहि ताला ने तकरीबन 40 यजीदियों को जहन्नम पहुँचाया, आखिर चोट खाकर गिरे और शहादत का जाम पीकर जन्नत की तरफ बढ़ गए। आला
हज़रत के भाई जान मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह ताला ले लिखते हैं, जब हज़रत हुर रहमतुल्लाह ताला ले ज़ख्मी हो

होकर गिरे तो आपने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा, ए इमाम आली मकाम। और इमाम आली मकाम बेकरार होकर तशरीफ़ लाए, यजीदियों से लड़ते हुए अपने जान निसार तक पहुँचे। हज़रत हूर को मैदान से उठाया, खेमे के करीब तशरीफ़ लाए और सुबहान अल्लाह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हूर का सर अपनी गोद में रख लिया। बड़े प्यार से उनका माथा और रुखसार साफ़ किए। हज़रत हूर की सांसें अभी बाकी थीं, आपने आंखें खोल दीं, मुस्कुराकर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की तरफ़ देखा और अर्ज़ किया, हुजूर अब तो मुझसे खुश हैं? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ मैं राज़ी हूँ, अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो जाए। हज़रत हूर रहमतुल्लाही ताला ने ये खुशखबरी सुनी और इसके साथ ही आपकी रूह जिस्म से परवाज़ कर गई। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हज़रत हूर रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी कबूल फ़रमाए। ज़रा गौर फरमाइए, ये कितनी हिम्मत की बात है। हज़रत हूर रहमतुल्लाही ताला अलैह यकीन के साथ जानते थे कि यजीदी लश्कर से निकलने का मतलब शहादत है। आपकी औलाद भी थी, घर वाले भी थी, आप जानते थे कि मेरा एक फ़ैसला मेरे बच्चों को यतीम कर देगा। इसके बावजूद आपने कैसी हिम्मत फरमाई? एक तरफ़ ओहदा है, मनसब है, इज़्ज़त है, शोहरत है, दौलत है, और दूसरी तरफ जन्नत है। आपने ओहदा, मनसब, दौलत, इज़्ज़त सब कुछ छोड़ा और जन्नत की तरफ बढ़ गए। रिवायतों में है, जब हज़रत हूर रहमतुल्लाही ताला अलैह यजीद लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन की खिदमत में हाज़िर हो गए तो एक यजीदी ने पुकार कर कहा, ए हुर हम तो तुम्हें अक्लमंद समझते थे, आज तुमने ये कैसा फ़ैसला किया? कसरत यजीद की तरफ है, जीत यजीद की होगी, माल और दौलत यजीद के पास है, हुकूमत यजीद की है, ये सब कुछ छोड़कर तुम इमाम हुसैन की तरफ चले गए? अब हज़रत हूर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान अफरोज़ जवाब सुनिए। आपने फरमाया, मैंने जन्नत और जहन्नम में से जन्नत का फ़ैसला किया। खुदा की कसम, चाहे मैं कट जाऊँ, जला दिया जाऊँ, मगर जन्नत पर किसी चीज़ को तरजीह नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही ईमानी सोच, यही ईमानी फ़ैसला, ये हिम्मत इंसान आसान नहीं होती, ये हौसला करना आसान नहीं होता। अल्लाह पाक जिनके साथ भलाई का इरादा फरमा लेता है, ये हिम्मत वही करते हैं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, इसमें हमारे लिए भी सबक है। ज़रा गौर कीजिए, क्या हम नहीं जानते कि नमाज़ पढ़ने से जन्नत मिलती है, ना पढ़ने में जहन्नम की हकदारी है? हम जानते हैं, मगर तरजीह किसको दी जाती है? अफसोस, लोग काम काज को तरजीह देते हैं, दुकानदारी को तरजीह देते हैं, दुनियावी ज़रूरी कामों को तरजीह देते हैं, मामूली कामों की खातिर जमात छोड़ देते हैं, बल्कि नमाज तक कज़ा कर देते हैं। हम जानते हैं रोज़ा रखने से जन्नत मिलती है, मगर कितने ऐसे हैं जो रमदानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े भी कज़ा कर डालते हैं। हम जानते हैं कि तिलावत करने से जन्नत मिलती है, मगर अफसोस कई महीनों तक कुरान करीम की ज़ियारत तक नसीब नहीं होती। हम जानते हैं कि ज़िक्रुल्लाह की बरकत से जन्नत मिलती है, मगर फजूल गपशप से सोशल मीडिया से फुर्सत ही नहीं मिलती। हम जानते हैं कि अच्छे अखलाक जन्नत में जाने का ज़रिया है, मगर क्या करें, गुस्सा बहुत आता है। हमें मालूम है कि माँ बाप की खिदमत दो जहान में कामयाबी का ज़रिया है। हम जानते हैं कि सच जन्नत का और झूठ जहन्नम का रास्ता है। हम जानते हैं कि लड़ाई झगड़े, गाली गलौज वगैरह जहन्नम में जाने का सबब है। हमें यह भी मालूम है कि गाने बाजे वगैरह गुनाह जहन्नम में ले जाते हैं, मगर अफसोस हमारे यहाँ आम तौर पर जन्नत में ले जाने वाले आमाल को नहीं, बल्कि जहन्नम का हकदार बनाने वाले कामों को तरजीह दी जाती है। आशिकाने अहले बैत, सुन लीजिए, हज़रत हूर रहमतुल्लाही ताला अलैह की ज़िंदगी हमें ये सबक दे रही है कि सर कटता है तो कट जाए, जान जाती है तो चली जाए, मगर एक मुसलमान का कदम उठता है तो सिर्फ़ जन्नत की तरफ उठता है। एक मुसलमान तलबगार है तो सिर्फ़ जन्नत का तलबगार होता है। मुसलमान मालो दौलत ऐशो इशरत शोहरत व इज़्ज़त को नहीं देखता, एक सच्चा मुसलमान अल्लाह व रसूल की रज़ा के पीछे चलता है, जन्नत में पहुँचने की कोशिश किया करता है। यही मुसलमान की शान और इसी का अहम हमें हुक्म दिया गया। अल्लाह पाक कुरान करीम व फुरकान हमीद में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान।

और अपने रब की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वसात आसमानों और ज़मीन के बराबर है, वो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई और सामेईन किराम, देखिए अल्लाह करीम, देखिए आयत करीमा में साफ फरमा दिया गया जन्नत की तरफ दौड़ कर पहुँचो। कौन सी जन्नत? वो जन्नत के अगर सात आसमानों को साथ साथ जोड़ कर बिछा दिया जाए

0: भलाई कितनी है ये तो अकल में आ ही नहीं सकता, बल्कि उलमाए किराम फरमाते हैं ये भी सिर्फ जन्नत के एक तबके की चौड़ाई है, बाकी जन्नत कितनी बड़ी है इसका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। तो अल्लाह पाक फरमाता है ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, इस अजीमुशान जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो, जल्दी चलो। देखिए हम इस दुनिया में सफ़र करते हैं, कुछ सफ़र पैदल किए जाते हैं, कुछ साइकिल कुछ मोटरसाइकिल पर किए जाते हैं, कुछ बस में सफ़र किए जाते हैं, कुछ कार वगैरह में किए जाते हैं, और अगर कहीं बहुत जल्दी जाना हो तो जहाज़ के ज़रिए उड़कर सफ़र करते हैं। यानी मौजूदा दौर में तेज़ तरीन सफ़र जहाज़ का है। अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया कि जन्नत की तरफ दौड़ो, मतलब ये है कि तेज़ से तेज़ तरीन सफ़र जो तुम कर सकते हो इतना तेज़ सफ़र करके जन्नत की तरफ पहुँचो। कैसे पहुँचना है? नमाज़ें पढ़कर, रोज़े रखकर, हज के ज़रिए, उमरा के ज़रिए, दुरूद पाक की कसरत कर, नेक कामों में जल्दी करके, हुस्ने अखलाक के ज़रिए, इल्म दीन सीखने में कोशिश के ज़रिए, वालिदैन की खिदमत कर, प्यारे नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपनाकर, दाढ़ी सजाकर, अमामा पहनकर, राय खुदा में सफ़र कर, निकी की दावत आम करके, दावत इस्लामी के दीनी मदनी काफ़िलों में सफ़र करके, नेक आमाल पर इस्तकामत के ज़रिए, गर्ज हर वो काम जो जन्नत में ले जाने वाला है हम इसमें तेज़ी करें, इन कामों की तरफ दौड़ कर पहुँचें, इसकी बरकत से जन्नत की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। अल्लाह पाक हमें जन्नत का शौक़ नसीब फरमाए। आमीन आमीन بجاه النبي الامين صلى الله تعالى عليه واله وسلم।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे मुबल्लिग दावत इस्लामी कारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला होगा। कटाओ सर जो सजदे में इबादत नास करती है, वुजू जो खून से कर लो तहारत नास करती है। शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर, हुसैन इब्ने अली तुझ पर शहादत नास करती है। जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। कटाओ सर जो सजदे में इबादत नास करती है, वुजू जो खून से कर लो तहारत नास करती है।

हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीने वाली चीज़ों को खड़े होकर मत पियो, किशमिश बलगम को कम करती है, कद्दू खाओ क्योंकि ये सब्ज़ी दिमाग को क़ुव्वत देती है, जिस हद तक मुमकिन हो लहसुन का इस्तेमाल करो क्योंकि ये 70 बीमारियों की दवा है, कलौंजी हर दर्द की दवा है सिवाय मौत के कि उसकी कोई दवा नहीं है, खजूर को नाश्ते में खाओ ताकि तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाए।

मोहतरम सामीन, इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। ए पाक परवरदिगार, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे। ए अल्लाह, ईमान के साथ खात्मा कीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: அதற்கு முன் என்னுடைய நீ இரு.
1: ஸ்வேதா மோகன் குரலில்.

好，听众朋友，今日的客家风情，啊，不只不过就到位同大家讲斋会的，多谢大家的收听。下次节目我等斋会。

घड़ी मिला लीजिए, समय दिन के ठीक 2:30 बजे है। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है मीडियम एवार्ड 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। मैं हूँ रत्ना, आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ। जून का महीना और आज की तारीख है 29, बिल्कुल इस महीने का आखिरी सोमवार। और अभी से लेकर बिल्कुल दिन के 4:15 बजे तक है। जी हाँ, आज ये कार्यक्रम 4:15 बजे तक जारी रखा जाएगा। तो चलिए, लाजवाब गीतों का ये सफर बिल्कुल सजता है आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ। और इस मौके पर इससे बेहतरीन तोहफा कोई हो नहीं सकता कि आप किसी के लिए गाने डेडिकेट करें और वो प्यार से इस गानों को सुने, अपने नाम को सुने। ज़रूर अगर आपके यहाँ कोई ऐसा ख़ास मौका है, कोई किसी की शादी की सालगिरह है या फिर जन्मदिन का मौका है, तो ज़रूर 402-8085 पर आप अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश कर सकते हैं अपने पसंदीदा इंसान के लिए। और इस इतना ही नहीं, बिल्कुल आप मैसेज भी हमें भेज सकते हैं ऑन 5251705 पर। तो चलिए, हमें है आपके कॉल्स का इंतज़ार। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं 90s के हसीन दौर के साथ, और 90s का ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो फिल्म 7वां आसमान से लिया गया है। आवाज़ें हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की।

चलिए यहाँ पर हमेशा की तरह ज्योति जी यूनियन पार्क से जुड़ चुकी हैं और अगला गाना नाम करना चाहती हैं प्रीति मयूर आदर्श वेदना विमला विवेक और अविष्ठा के लिए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोता हैं बस यूं ही साथ देते रहिएगा। आज तो भाई 4:15 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा आपके लिए और इस समय 2:36। चलिए अगली फरमाइश लेते हैं और ये गाना है एक बहुत ही प्यारी सी मूवी टावर हाउस का और लता जी की एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में गाया हुआ ये गाना 60s के दौर के ज़माने की ये मूवी का गाना है जो जाएगा पेंताया परिवार के लिए। और इस गाने की फरमाइश कर रही हैं सेलू इक्वायो से सभी दोस्तों के नाम। तो आशा करते हैं ये गाना सुनकर आपका भी दिल बिल्कुल खुश हो जाना है।

चलिए टावर हाउस के बाद लेते हैं ये अगला गीत एक बार फिर लता जी की प्यारी सी आवाज में, और ये है फिल्म तकदीर से लिया हुआ गीत, और ये जाएगा इंद्रानी जी के लिए जो इस वक्त लिस्ट कालिए से हमारा साथ दे रही हैं, उनके प्यारे पति मनोहर, तीन प्यारे बच्चे येशना, संजना और अक्षय साथ दे रही हैं, उनकी प्यारी ननंद उषा जो है वक्वा से। तो बस आप भी हमारा दिल से साथ दीजिएगा इस वक्त 2:40।

कानों के साथ गीत गुनगुनाने का एक अलग ही मज़ा होता है। और चलिए इसी के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये है अगला गाना और ये जाएगा अनीता जी के पसंद पर। अनीता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं त्रिओले से और हमेशा साथ देती हैं, और ये गाना है खास उनकी प्यारी बेटी अंजू। दामाद है वेद, बेटा सचिन, बहू है पूजा, साथ है कियांश और सिया के लिए। फिल्म है कभी हाँ कभी ना और आवाजें हैं कुमार शानू और देवकी पंडित की। 90s के दौर का ये गाना इस फिल्म में नजर आए थे शाहरुख खान, दीपक तिजोरी वाला।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं और चलिए यहाँ पर हमारे साथ हमारी प्यारी सी रेहाना जी भी जुड़ चुकी हैं, जो हैं नौखदाम से, हमेशा साथ देती हैं और ऐसे चुनिंदा गीत लेकर आती हैं भाई, लाजवाब गाने। और इस गीत के लिए उन्होंने मांग की है, और ये गाना वैसे तो उन्होंने मांगा है, पर कहती हैं कि जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं जो पुराने गीतों के शौकीन हैं, ये गाना ख़ास उनकी और से वे मांग रही हैं। और 1956 के दौर का ये गाना है, फिल्म है इंसाफ, और मोहम्मद रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़ और उनकी ख़ास दोस्त माला फाउदा, साथ है सुरेखा, और सभी सुनने वालों के नाम हम करेंगे ये अगला गीत माला रेहाना जी की पसंद पर।

0: बराबर है सब इंसान।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते चलेंगे और इसी के साथ यहाँ पर 2:54 और चलिए अगला गीत जो है फिल्म उपहार से लिया हुआ गाना और ये जाएगा श्यामा जी की पसंद पर, श्यामा रघुनंदन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गांव से और उनकी प्यारी उनके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी है नम्रता, साथ है केशव और युधीश जो हमेशा साथ देते हैं और उनकी प्यारी दोस्त सखियाँ विश्वानी जी और वीना रामफल जो हमेशा हमारा साथ देती हैं बहुत ही प्यार से। और यही गाना हम करेंगे सुनीता जी के लिए भी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वे भी गोंगो की ही रहने वाली हैं, उनकी तीन प्यारी बहनें विमला जो है कोंगोमा से, वीना जी जो है गुडलैंड से और अमृता जी जो रहती हैं गोंगो में ही। बस यूं ही प्यार से साथ दीजिएगा हमारा, फिल्म है उपहार, आवाज है लता मंगेशकर की। वैसे आपको याद दिला दें यही गाना हमें जोड़ेगा हमारे सुपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ, कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा बिल्कुल इसके

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुपहर के ठीक 3 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विद्या। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सेशेल्स और मॉरिशस के बीच साझा हितों पर आज सुबह माई स्ट्रीट स्थित स्टेट हाउस में चर्चा हुई। पत्रिका मिनी ने डॉक्टर नवीन रामगुलाम का स्वागत किया। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके बाद चर्चा आपसी हितों पर केंद्रित रही, विशेष रूप से इस कठिन वैश्विक परिवेश में एक दूसरे की मदद कैसे की जाए, इस पर बातचीत हुई। उनके छोटे द्वीप देशों के दर्जे पर भी चर्चा की गई। मॉरिशस सेशेल्स में एक उच्चायोग खोलेगा। कल मंगलवार बजट 2026-2027 को अपनाने का अंतिम चरण है। अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 26 जून को बिना किसी संशोधन के कमिटी स्टेज से गुजरने के बाद राष्ट्रसभा में फर्स्ट रीडिंग के लिए कार्यसूची में शामिल है। इसमें ऐसे उपाय शामिल हैं जो सीधे तौर पर दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से खरीद शक्ति, टैक्सेशन और सामाजिक सुरक्षा। मॉरिशस में वेतन वृद्धि का सिलसिला जारी है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में वेज रेट इंडेक्स में पिछली तिमाही की तुलना में 4.1% की वृद्धि हुई है, जो कई क्षेत्रों में वेतन में सामान्य वृद्धि की पुष्टि करती है। और विदेश में पाकिस्तान ने रविवार को अपनी सीमा से लगे अफगान प्रांतों में हवाई हमले किए और जमीनी सेना भेजी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। कम से कम 36 नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, और 160 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा की और इसे अपराध और अत्याचार करार दिया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूपिक में 54 साल के 54 years old के श्री महेन आबिलक, जो महेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके घर रॉबिन्सन नंबर 2 क्यूपिक से उठाकर भी कहा कि शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन विस आफ्टरनून एट 4:30। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।
0: घड़ी मिला लीजिए।

0: समय दोपहर के ठीक है 3:03 हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं ये विज्ञप्ति, और ये विज्ञप्ति है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई प्लेनवेयर के आसपास के इलाके जिनमें है रू आली कलकत्ता, इद्रिस गुमानी और कुछ इलाके इमाम बाकसर सुबदार के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल मंगलवार 30 जून को दोपहर के 12 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं, और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
0: आपकी पसंद कार्यक्रम, और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपके पसंदीदा गीतों को हम फरमाइशी तौर पर लेते हैं और इसे पूरा करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना और आपका साथ दूंगी आज फिलहाल। आपकी पसंद का ये कार्यक्रम शाम के 4 बजे तक नहीं पर 4:15 बजे तक आपके लिए जारी रखा जाएगा, तो ज़रूर आप हमारा साथ दीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर अगली जो फरमाइश आई है ये आई है विश्वानी दुमन की ओर से, जो हमेशा साथ देती हैं वाकवा से। उनकी प्यारी बहनें हैं इंदिरा और शारदा, साथ हैं नीला और प्रतिभा, और दे रहे हैं साथ उनकी सखियां शोभा जी और गीता गजाधर। तो बस आप साथ दीजिएगा ज़रूर। और फिल्म है वक्त आशा भोसले की आवाज़ में।

बिल्कुल, जिंदगी के जो पल अभी हैं, जिंदगी इसी में है, और इसी के साथ चलिए एंजॉय करते हुए आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धूल का फूल कार्यक्रम ये अगला गाना है, और मानती जी की पसंद पर ये गाना हम चलाने जा रहे हैं। निमल फौज से वे साथ दे रही हैं, उनकी दो प्यारी बहनें हमेशा साथ देती हैं, आरती और अनंती, साथ है उनकी बहुएं उर्वशी और अनुषा, और साथ दे रही हैं गिरीशा, नितिशा, साथ है हितांशु, भव्या और पुष्कर, लता जी की प्यारी सी आवाज़।

कहीं आंसू है तो कहीं खुशी। चलिए आज माला सुमारू जी बड़ी खुश हैं क्योंकि आज उनके यहाँ उनके प्यारे बेटे सुयश, बहू आशा और छोटी सी प्यारी सी नाती आयुषी आ पहुंची है कनाडा से छुट्टियाँ मनाने के लिए। और बिल्कुल आपके पति हमारा आपके साथ है, सूर्यदेव जी भी हमारा साथ दे रहे हैं सुमारू परिवार के साथ। तो ये गाना आपके नाम हम करना चाहेंगे, फिल्म है ज़मीर, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। बड़े दिनों के बाद खुशी आपके यहाँ आई है तो इस खुशी को गले लगा लीजिए क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ ही ज़िंदगी को और हसीन बना देती है। और ख़ासकर जब अपने बच्चों के साथ हम वो समय बिताते हैं, इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती। बस एंजॉय करते रहिए, बिल्कुल आपकी पसंद कार्यक्रम, आप ही का कार्यक्रम है।

0: हर बड़े दिनों में।
1: चलिए खुशियाँ आपके आंगन यूं ही झिलमिलाती रहे। और आज मना रही हैं अपना बर्थडे उर्वशी महेश, और बिल्कुल उनके पति विनेश, साथ है मम्मा प्रीति, पापा है क्रिश, बहन है विश्नी, बेटा केयान, साथ है भाई आकाश, सासुमा है सावित्री, जीजू है विक्रम, भाभी है प्रीति, साथ दे रही हैं पूनम और निशा और सभी मनसुख और महेश परिवार जो है बॉम्बू से, उनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। और बिल्कुल आकाश मनसुख, आपके नाम, आपकी तरफ से ये गाना हम उनके नाम करना चाहेंगे। फिल्म है शीन, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में रखा हुआ ये प्यारा सा गाना आपके लिए।

अभी का जैसा मौसम है, लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कि मानो हम कश्मीर में पहुंच गए हैं। ठंड कुछ ऐसे ही बढ़ रही है सुबह को और खासकर रात को। तो चलिए आप अपने सेहत का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ धर्म कर्म करते चले और धर्म कर्म का ये गाना सुनते चले। और ये गाना है मुकेश साहब की प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ गाना। गीता जी की पसंद पर हम चलाने जा रहे हैं पोफेया से, वे हमारा साथ दे रही हैं। उनके प्यारे पति हैं रोहित, साथ है आदित्य, आरव, तानिश, उनके तीन प्यारे नाती, छोटी सी प्यारी सी परी जानवी, तीन बहुएँ, तीन बेटे और सभी परिवार के नाम।

गुनगुनाते हुए इस सफर में हम भी आगे बढ़ रहे हैं और अगला गाना एक बार फिर मुकेश साहब की आवाज में रखा हुआ और ये गाना जाएगा आरती जी के लिए। त्रियोले से वे हमारा साथ दे रही हैं, फिल्म है राखी और ये गाना जाएगा उनके पति सुरेंद्र के लिए और साथ है आनंदी और रीमा, शिमला, तीन बेटियां, बेटा है एशले। वैसे ये गाने की फरमाइश करते हुए आरती जी के गाल तो बड़े लाल लाल हो गए, गाना ही कुछ ऐसा है। चलिए यहाँ पर बसंती जी भी बहुत ही प्यार से बुबासन से साथ जुड़ी हुई हैं, साथ देते रहिएगा और आज की जो ये कार्यक्रम है 4:15 बजे तक चलेगा।

जी हाँ, ये गाना है फिल्म जबक से लिया गया और ये गाना जाएगा शकुंतला जी की पसंद पर। मुंह ताइलोंग से भी साथ दे रही हैं उनकी प्यारी ननंद है गायत्री और बेटा अजय, बेटी सुनीता जो है अल्फोंस।

फिल्म है खुदा गवाह, अलका याग्निक मोहम्मद अजीज की आवाज, और अगला गाना है इंदिरा जी के पसंद पर। इंदिरा जी, वैसे ये गाना अनीता जी फ्लिक ऑन फ्लैग से मांग रही है, उनके सभी दोस्तों के नाम इंदिरा, श्यामा, मीरा, सीनंद और कविराज, साथ है साधना, मालिनी, कविता। तो बस एंजॉय कीजिए ये गाना। और इस फिल्म में नजर आई थी एवर ग्रीन, श्रीदेवी साथ नजर आए थे, अमिताभ बच्चन साहब।

यहाँ गीतों का सफ़र जारी है और आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल 4:15 तक। तो चलिए अगला गाना जो है फिल्म अधू जासूस से लिया हुआ गीत है और इस गीत को हम चलाने जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं सुदेवी जी, जो वाकवा से साथ दे रही हैं और अगले गाने की फरमाइश भी करती हैं। दीदी ललिता, सभी कुशल परिवार के लिए, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, साथ है बिंदु, संगीता, जीवराज और मलेगा के अनुषा, किरण और राम रतन, राम गुलाम, कुवारू और रघुबीर, रघुबर परिवार और साथ है रिदोई परिवार। फिल्म है दो जासूस और फिल्म का ये गाना है शैलेंद्र सिंह और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

चलिए हमारी भी नैया धीरे धीरे करते हुए पार लगती जा रही है और इस समय 3:48 बिल्कुल 48 मिनट हो चुके हैं। और चलिए अगला गाना जो है हम चलाएंगे आफेज की पसंद पर, जो इस वक्त लाविनिया से हमारा साथ दे रही हैं और उनके सभी बाबा साहेब परिवार के नाम। ये है श्री 420 का गाना और सभी राज कपूर के फैंस के नाम। लता जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ साथ दिया है मुकेश साहब ने भी इस गीत में।

भाई प्यार के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। और चलिए इसी के साथ अगला गाना लेते हैं, और ये है गायत्री जी की पसंद पर सैंपिया से। वे साथ दे रही हैं उनकी प्यारी बहन अमृता, साथ है उनकी तीन प्यारी बेटियां दिव्या, श्रुति और नेहा, भाभी है मीरा, साथ है उनकी बेटियां गिरिशा और मेधा, और बिल्कुल दो बेटे अमृता जी के कमलेश और सुधीर, बहू है सुधा। और ये गाना है फिल्म उड़न खटोला से लिया हुआ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में 1955 के दौर का ये गीत है। वैसे यहाँ पर साधना जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वैदिक खयोल से, और अपनी प्यारी बहन निविता को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। 3 वर्ष हो चुके हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। और बिल्कुल भाई दीपक, राज, बहन है साधना, पद्मिनी, सभी बुदारू परिवार और जीवन परिवार आज दुख में हैं, उन्हें बेहद मिस कर रहे हैं। तो चलिए वे जहाँ रहें बस हमेशा उनकी आत्मा शांत रहें, यही ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं।

भाई जब मोहब्बत हो जाती है तो कहते हैं ना कि राहें मुश्किल हो जाती है, मुश्किल से भी मुश्किल। और इसी के साथ चलिए हम भी आगे बढ़ रहे हैं और अभी थोड़ी ही देर में बिल्कुल 4 बजने वाले हैं। वैसे ये कार्यक्रम आज जारी रखा जाएगा 4:15 बजे तक, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए नाचे नागिन बाजे बीन ये गाने

की फरमाइश कर रहे हैं नंदलाल जी, जो इस वक्त बकवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये गाना जाएगा अमिता देवी का और शनाया के नाम। बिल्कुल, आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और लता जी की।

भाई ऐसे लाजवाब सिलेक्शन केवल हमारे जो ऑडियंसेस है वही चुनकर लाते हैं। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, दुल्हन एक रात की। ये गाना जाएगा गीता जी की पसंद पर, जो मोतायलोंग से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं। एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब की प्यारी सी आवाज। इस वक्त 4:02 हो चुके हैं, 4:15 बजे तक हम हैं आपका साथ देते हुए।

चलिए इसी गीत के साथ ज्योति जी जोशा तो बनागस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आशनी रेखा सुरेखा और सभी माधव परिवार का नाम भी जोड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में।

0: तो मौसम सुहाना हो गया एक हसी शाम को।
1: ऐसे लाजवाब गाने हों तो भाई शाम लाजवाब हो ही जाती है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जंगली फिल्म का ये अगला गीत हम लेते हैं, और ये जो गाना है लता जी की प्यारी सी आवाज़ में, और इस फिल्म में नज़र आई थी एवरग्रीन शर्मिला टैगोर, और बिल्कुल
0: पहले अपना
1: नटखट से शम्मी साहब। और चलिए इसी गीत को हम लेते हैं, बिल्कुल इस फिल्म का डेब्यू, इस फिल्म में डेब्यू के रूप में शर्मिला टैगोर जी ने काम किया था कश्मीर की कली, और बिल्कुल ये गाना इन्हीं पर फिल्माया गया। हालांकि ये फिल्म, जी हाँ, गाना तो है कश्मीर की कली पर फिल्म है जंगली, और जंगली फिल्म में तो सायरा बानो नजर आई थी, हमसे गलती हो गई, बिल्कुल जंगली फिल्म का गाना, और हमने तो बिल्कुल कश्मीर की कली, जब हमने ये गाने को सिलेक्ट किया तो हमारे मन में वो छवि बिल्कुल सामने आ गई शर्मिला टैगोर की। वैसे ये फिल्म में डेफिनेटली नज़र आए थे शम्मी साहब एक बार, और सायरा बानो नज़र आई थी इस फिल्म में उनके साथ।

0: दिल को खुश करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं, पर क्या करें, समय बहुत कम रह गया है। चलिए, यहाँ पर जन्मदिन मना रही हैं डायना राजकुमार सिंह और दादी दादा साथ है ममा शीना पापा मनीष की ओर से जो है लेकाजियान क्या पिप से हमारा साथ देते हुए। तो हम डायना को कहेंगे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, और साथ ही साथ बिल्कुल हम नाम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ है, विद्या जी जो है यूनियन पार्क से, उनकी प्यारी चाची कुमारी बहन सती, सुरेखा, बबीता और सुनीता, साथ है माधुरी जी और साथ दे रही हैं आंटी जी कॉन्फुको से उनके प्यारे पति के साथ, और आज उनका उनके बेटे अविनेश का जन्मदिन है और उनके पति भी साथ दे रहे हैं, दो प्यारी बहनें आरती और प्रिया, नेफ्यू हैं हर्षीला हिमांश और जीजा है हरवेश, और ये गाना ज़रूर हम आपके नाम चलाना चाहेंगे। कुंगमा से इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं दिलीप जी, संगीता साथ दे रही हैं, साथ है योगेश, मनीषा, कृष्णवी, निशान और बिल्कुल
1: आपकी पसंद
0: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनसुईया राम केलावन जो है त्रियोले से, और साथ दे रही हैं उनकी प्यारी बहन प्रेमिला सी गुलाम जो है कोंडमास से, और रागिनी साधना जो है बेचू परिवार फ्लाक से हमारा साथ देते हुए, पोंफाले से जैबून आप भी हमारा साथ दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके शोहर कासम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चार बेटे चार बहुएँ साथ हैं, जहीरा भी, नगमा, उर्फा, असगर, फैजुल्ला, हाद और हिदायत भी हमारे साथ है जुड़ चुके हैं, और माला जगी हमारे साथ हैं पेचित से, आशा जानू भी हमारा साथ दे रही हैं कॉटेज से, और उनकी प्यारी मम्मी कुमारी साथ है, शुभम, ऋषभ, दीदी आरती और जीजू राज और सभी जानू परिवार, और साथ नाम जोड़ती हैं चित्रा जी का और सुनने वालों का भी। तो चलिए, जन्मदिन जो मना रहे हैं आज उनके जन्मदिन को हम चार चांद ज़रूर लगाना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ लक्ष्मी जी भी बॉबू से जुड़ चुकी हैं, ममा निष्ठा, पापा जेसन, आज उनके यहाँ प्यारी सी परी आई है, नानी प्रिया, नाना है बाबू, फूफू समीला और पुपू दीदी, साथ है चाची देवीना, कवीना, चाचा अजय, सभी कजन्स है प्रीना और नेहा, कुनल और प्रियस। चलिए, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, और अफसोस बस गाना यहीं पर हमें समाप्त करना पड़ेगा, पर चलिए कोशिश हमारी जारी रहती है आपको खुश करने की, और ज़रूर यूं ही साथ दीजिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात बिल्कुल 5:30 बजे बचपन ऐसा कार्यक्रम में होगी जहाँ पर बिल्कुल बचपन की कुछ यादों को ताज़ा करेंगे, ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा। तब तक के लिए गानों को एंजॉय करते हुए आज के इस कार्यक्रम को जन्मदिन वालों के लिए स्पेशल बनाएंगे इसी गीत के साथ। और बिल्कुल हमारे बाद आ रहे हैं राजेंद्र आपका साथ देने के लिए तेलुगु कार्यक्रम को लेकर, तो जरूर आप एंजॉय कीजिए तेलुगु कार्यक्रम को। मिलते हैं ठीक 5:30 बजे।

0: 890 kilohertz. This is Radio Marches.
1: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, एमबीसी रेडियो आपके साथ।
2: इस समय स्टूडियो की घड़ी में ठीक 5:30 बज चुके हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है और बचपन ऐसा कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, आपका साथ देने आ पहुंची हूँ अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक। बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, सच में बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, पर हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाजवाब बचपन बिताया है। खेलते कूदते, पेड़ों पर चढ़ते, घुटना छिलते, मम्मी की डांट खाते, पप्पा की बेल्ट खाते, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा बचपन बिताया है। और मैं सच में दावे के साथ कह सकती हूँ जिन्होंने ऐसा बचपन बिताया है वो आज यही कहेंगे, भाई लाजवाब दिन थे हमारे, है ना। चाहे डांट खाते थे, चाहे घुटने छिलाते थे, कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि घुटने पर एक घाव ठीक हुआ नहीं कि दूसरा घाव उस पर जोरदार लगता था, और मम्मी प्यार से बात करने के बजाय हमें दो चटकन और लगाती, है ना। पर कुछ भी कह लो, वो जो बातें थी, वो जो दिन थे, वो आज के बचपन में नहीं, पर हम सच में ये ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि पहले के समय का जो बचपन था, पहले के समय में बच्चे जो थे बहुत ही शरारती थे, पर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शारीरिक और हम कह सकते हैं कि पारंपरिक मैदानी खेलों में ज़्यादा व्यस्त रहा करते थे। आजकल का ज़माना और है, आज हम डिजिटलाइजेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्निटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही आधुनिक ज़माना है, ज़माना बदल चुका है, जानते हैं, पर फिर भी अगर आज के बच्चों को भी वो खेल खेला जाए या उनको समझाया जाए कैसे खेला करते थे, तो सच में वो दिन वो खेल जो है उन्हें ज्यादा आकर्षित करते होंगे। चलिए आज के इस आधे घंटे के सफर में हम आपको याद दिलवाते हैं कि हम कैसे खेल खेला करते थे। भाई पहले के जमाने में महंगे उपकरण तो हुआ नहीं करते थे, मोबाइल तो थे नहीं उस ज़माने में, मोबाइल क्या, घर में कई बार टेलीफोन भी नहीं था, और घर में अगर किसी के गांव में एक आध टेलीफोन किसी के यहाँ आ जाता तो मतलब ये पूरे गांव भर की खुशी होती थी। और उस ज़माने में भाई दोस्तों का आंगन में आकर चीख कर हमें बुलाना, साथ में जाकर प्लेग्राउंड में खेलना, नदी किनारे खेलना, जहाँ पर किसी के आंगन में कोई बड़ा सा पेड़ हो वहाँ पर चढ़कर कूदना, या फिर आम तोड़ना, या फिर उस पर बंधी हुई लंबी सी रस्सी के साथ झूला झूलना, हाय हाय क्या दिन थे लाजवाब से। और सच पूछो तो ज़माने में हो सकता है कि यहाँ मॉरिशस में भी कई सारे लोगों ने गिल्ली डंडा, पिट्ठू या फिर सितौलिया जिसे कहते थे, या फिर लगोरी जहाँ पर 7 पत्थरों को रखा जाता था और फिर 2 टीमों के द्वारा वो बॉल लेकर उस पत्थर पर मारना, और अगर वो 7ों के 7ों पत्थर गिर गए तो भाई जो भागा दौड़ी मचती थी।

हाय हाय हाय, क्या मजा आता था उस खेल में भी। और सच बताओ तो छुपन छुपाई का खेल आज के बच्चे भी इतनी ही मजेदारी के साथ खेलते हैं। सच में, एक बच्चा आंख मूंद कर गिनती गिने और फिर बाकी सारे छुप जाए। दोस्तों, सच कहें तो आज के ज़माने में भी कई बार हम ये खेल बस बातों ही बातों में अपने बच्चों को बताते हैं। पर सच पूछिए तो आप में से कितने ऐसे हैं जो आज के ज़माने में भी बच्चों के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं? अगर आप सच में आज के ज़माने में भी ये खेल खेलते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए 4028085। और साथ ही साथ कंचे खेलना, हाय हाय क्या बात थी भाई। रंग बिरंगे कंचों की जो कलेक्शन हुआ करती थी, लोग उसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मार्बल्स या गोटियां हम कहते हैं, कांच की जो रंग बिरंगी गोलियां थी उसे हम कितना संभाल के रखते थे। इसी के साथ कई सारे बच्चे खो खो भी खेले होंगे, लंगड़ी टांग भी खेले होंगे और कबड्डी पोशंपा जैसे खेल भी। एक तरह से देखा जाए तो आपको शारीरिक कितना आपको भगाता था, दौड़ाता था ये खेल। उस जमाने में कहां जिम हुआ करते थे, कहां कोई एक्सरसाइज करने जाया करता था। बस यही उधम के साथ, यही उछल कूद के साथ हमारे व्यायाम हुआ करते थे। पर आज तो हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हमारे हाथों से वो जो मोबाइल जैसी जो छोटी सी चीज़ है उसने हमें इस कदर बांध दिया है कि हम अब उसी पर फुटबॉल खेला करते हैं, उसी पर लूडो खेला करते हैं, उसी पर सांप सीढ़ी खेला करते हैं, है ना। पहले के ज़माने में जब कोई फ्री बैठता था तो कैसे साथ में बैठकर, जैसे हम कहते हैं बुझावल, पहेलियां बूझते थे। दिमाग की कसरत भी हो जाया करती थी क्योंकि दिमाग लड़ाना पड़ता था कि भाई क्या हो सकता है जवाब इस पहेली का। और आज के ज़माने में तो भाई कुछ भी कह लो, किसी ने एक सवाल पूछा नहीं कि हाथ में फिर आ गया मोबाइल गूगल पर पूछने के लिए कि भाई इसका जवाब क्या है, है ना। एक छोटी सी चीज ने हमें कितना बांध दिया है। चलिए, रेडियो के माध्यम से हम भी जुड़े हैं बचपन ऐसा कार्यक्रम में। अगर आपके पास भी ऐसा कोई लाजवाब किस्सा है जो आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बेशक फोन घुमाइए 4028085, हमसे बातें कीजिए और हमें अपने बचपन के अनुभव जरूर शेयर कीजिए।

0: बिल्कुल श्री 420 का ये गाना, और इस फिल्म में नजर आए थे राज कपूर साहब और साथ नजर आई थी नरगिस, और बिल्कुल लता मंगेशकर की आवाज में रखा हुआ ये गीत हमने अभी भी सुना। चलिए इसी के साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं जो अपने जीवन का कोई अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं।
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी, आपका
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
1: और सभी बच्चों को और पेरेंट्स को मैं नमस्ते बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, और आपका नाम जरूर हमें बताइए।
1: हाँ,
0: भाई जी
1: उदयपुर से, उदय धनी राम जी उदयपुर से।
0: चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय जी।
1: मैं लूंगा और को भी मौका दूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और आपका क्या अनुभव?
1: प्रोग्राम जब शुरू किया तो मैं अपने बचपन का याद कर दिया।
0: चले गए आप बचपन की गलियों में।
1: बोलते थे पेड़ पर चढ़ना, आम तोड़ना।
0: हाँ जी,
1: तो हमारे
0: हाँ जी।
1: यहाँ थोड़ा अजपुर में थोड़ा ठंड है, लेकिन आम के पेड़ हैं लेकिन फ्रूट नहीं आता।
0: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन सांवला बोलते हैं ना।
0: हाँ हाँ,
1: तो जगह जगह पर सांवला है।
0: बिल्कुल,
1: तो हम सांवला के ऊपर पेड़ पर
0: हाँ,
1: कितने ऊंचाई हो मैं तो जाकर वह उसे फ्रूट वो जबाला के ना टूटता था
0: जी जी,
1: फिर शाक में लेकर करता था।
0: अरे वाह, और दोस्तों के साथ बांटकर खाना
1: साथ, हाँ।
0: हाँ, वो तो एक बहुत ही लाजवाब।
1: हमारे पास नदी भी है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जहाँ था भाषा बोलते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो हम लोग कैसे होलीडे में
0: हाँ?
1: हम लोग जाते थे तैरने, दो घंटा तीन कभी कभी छह घंटे हम
0: मतलब उस टाइम समय की कोई परवाह ही नहीं थी, कोई टेंशन ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे आज के टाइम में हम कैसे टेंशन में जीते हैं, वैसा कोई टेंशन था ही नहीं उस टाइम पर।
1: हाँ, गुल्ली डंडा भी खेली।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: और बॉल और वो जो
0: गेंद के साथ
1: सेट बोलते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: उसमें कपड़े डालकर उसे बांध कर में हम लोग बॉल बनाते थे। हम लोग
0: मतलब बॉल था नहीं, लेकिन हम लोग कैसे भी करके वो बॉल को फैब्रिकेट करते थे और उसी के साथ खेलते थे। पर क्या मजा आता था
1: रास्ते पर।
0: हाँ जी,
1: प्लेग्राउंड दूर था।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: लगभग 1.5 किलोमीटर।
0: हाँ जी
1: हाँ, तो हम लोग ऐसे ऐसे हमने अपने बचपन बिताए।
0: हाँ, बहुत बहुत लाजवाब।
1: अभी कम बच्चे लोग देखते हैं कि वो
0: आज के जमाने में ये सारे खेल, मुझे लगता है बहुत कम बच्चे जानते होंगे इन सारे खेलों के बारे में, है ना। हाँ जी हाँ जी,
1: ज्यादातर मोबाइल पर रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वगैरह
0: अब बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल का जो समय है वो जैसे हमने शुरू में कहा कि
1: हाँ जी, हमारा
0: हाँ
1: हमारा जो पोते है बेटी का जो बच्चा है,
0: हाँ हाँ,
1: वो आते हैं तो हम बॉल खेलते हैं।
0: हाँ, बिकॉज आपने उनको वो खेलना सिखाया है।
1: दे रहा हूँ अपने
0: हाँ
1: बच्चों का जो
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: वहाँ पर वो जो टॉय है जीसीबी का, एक बार जीसीबी आया था उसके घर के नजदीक।
0: हाँ जी,
1: वो अपने जीसीबी निकाल कर
0: हाँ,
1: वो काम कर रही है। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो भी उसका मशीन है, वो काम कर रहे हैं इसे
0: बढ़िया। और आपको मैं, आप जैसे बता रहे हो ना, मैं आपको बता दूँ, हम लोग जब स्कूल में जाया करते थे तो हम लोग भी रुमाल जो होता है उसी का बॉल बनाते थे।
1: अच्छा।
0: और फिर मतलब हमारे पास बैट नहीं हुआ करती थी, तो हम क्या करते थे, जो हमारा जो किताब होता था उसी को लेकर हम बैट बनाते थे, और एक जन वो बॉल फेंकता

0: था और हम उसको किताब से उड़ाकर मारते थे। और वो भी एक ऐसा ज़माना था कि हमें खिलौने की भी आवश्यकता नहीं थी, हम अपने खिलौने खुद बना लेते थे।
1: खिलौने अपने खुद बनाते
0: बनाते थे।
1: वो सेबोला बोलते हैं ना?
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ, वो भी बनाकर हम लोग उड़ाते थे।
0: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, आपने भी याद दी, ताज़ा कर दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी, शुभ संध्या आपको। और बिल्कुल जैसे उदय जी ने हमें ये कहा कि वो ज़ोंबालाक तोड़ा करते थे, मैं आपको बता दूं मेरे बचपन का किस्सा भी मुझे एक याद आ गया कि हमारे घर के पास में भी, हमारी मौसी के घर के पास में एक ज़ोंबलों का पेड़ हुआ करता था और हम उस पेड़ पर जैसे तैसे चढ़ के ज़ोंबलों तोड़ा करते थे। और आपको तो पता होगा कि ज़ोंबलों यानी जामुन, वो होते हैं जामुनी रंग के, और वो लेकर हम अपने पॉकेट में भरा करते थे। और आप खुद ही सोचिए कि उस पॉकेट की क्या हालत होती होगी, पूरे कपड़े हमारे जामुनी रंग के हो जाते थे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इस मजे में माँ की डांट खाना, माँ से पिटाई, बिल्कुल ये सारी चीजें भी हमने की है जो हमें बहुत ज्यादा याद आती है। तो चलिए, हंसते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, जानकर हमें बेहद अच्छा लग रहा है।

0: अरे तीतर, बोलो बताओ।
1: तीतर के जो आगे तीतर, तीतर के जो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर।
2: तो

बिल्कुल 5:50 हो चुके हैं और जैसे हम पहले के ज़माने की बात करते थे तो आज के ज़माने का भी जो खेल है, जो अंदाज़ है, वो बदला है, तौर तरीके बदले हैं और बिल्कुल आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, गैजेट्स का ज़माना है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये ज़माना बुरा है, बस ये ज़माना थोड़ा हटके है, थोड़ा आगे है, थोड़ा रफ्तार से भरा हुआ है। और बिल्कुल आज के ज़माने में मोबाइल गेम्स आ चुके हैं, स्मार्टफोन या टैबलेट्स पर लोग आज BGMI, फ्री फायर, कैंडी क्रश और रोब्लॉक्स जैसे गेम्स खेला करते हैं। प्ले स्टेशन आ चुके हैं, कंसोल गेमिंग आ चुका है, टीवी स्क्रीन पर आज फीफा, GTA, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स खेला करते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर गेमिंग का ज़माना हो चुका है, इसीलिए इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के खिलाड़ियों के साथ आप कई प्रकार के गेम्स जैसे अमंग अस और ऐसे नई तकनीक वाले गेम्स आज बहुत ज़्यादा रफ्तार में हैं और बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों को इसकी आदत है। और आजकल कह सकते हैं कि क्लब और इंडोर स्पोर्ट्स का ज़माना है। एक दौर आया था जब कहते हैं कि पेड़ काट कर फिर सड़कें बनाई जा रही थी, जहां पर ट्रैफिक बढ़ चुका था। तो ये भी सही बात है कि हम बच्चों को यूं ही बाहर खेलने नहीं भेज सकते, इसीलिए फिर इंडोर गेमिंग का ज़माना बढ़ा। पहले के ज़माने में लोग बैडमिंटन खेला करते थे, बास्केटबॉल खेला करते थे, पर यही खेल फिर आगे चलकर इंडोर स्पोर्ट्स में शामिल हो चुका। बिल्कुल लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या स्केटिंग जैसे खेल शामिल होने लगे। और फिर जैसे जैसे हम पहले के ज़माने में छोटी छोटी गाड़ियाँ चलाया करते थे प्लास्टिक की, शायद आपको याद होगा, फिर आधुनिक ज़माना आगे बढ़ा, सेल वाली गाड़ियाँ आई, फिर और आगे ज़माना बढ़ा यानी बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ आई, और उसके बाद आई रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ। भाई ज़माना इवॉल्व हो रहा है, इसीलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि बस हमारा ज़माना अच्छा था। हर ज़माने की एक अलग बात, एक अलग खासियत, एक अलग स्पेशलिटी। बिल्कुल पहले के ज़माने में हम खुले मैदान में खेला करते थे, गलियों में खेला करते थे, आंगन में खेला करते थे, पर जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें आई जिसके कारण हमें भी ज़माने के साथ बदलना पड़ा। घर के अंदर ही खेल ऐसे ऐसे बनाए गए और ये बनाने वाले और कोई तो थे नहीं, लोग ही थे। जी हाँ, स्क्रीन के सामने क्लबिंग करना, खेल खेलना, साथ ही साथ पहले के ज़माने में मुफ्त या फिर हम कह सकते हैं कि सस्ते उपकरण के साथ हम खेला करते थे क्योंकि वो ज़माना वैसा था। पर उसी के साथ जैसे जैसे ज़माना बदला तो आज हम समय के साथ चलने की कोशिश में लगे हुए हैं और स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, गेमिंग्स और कंसोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले के ज़माने में जो भी खेल हम खेलते थे उसमें शारीरिक व्यायाम हुआ करता था, सामाजिक मेल जोल हुआ करता था, सोशलाइजिंग हुआ करती थी, पर आज के ज़माने में भी हम कहते हैं ना कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आजकल बच्चों को अगर आप देखें तो बच्चों का ही बर्डन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, उनके पास टाइम कहाँ है वो बाहर जाके खेले। और आजकल सोशलाइजिंग बहुत कम हो चुकी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सोशलाइजिंग थ्रू मीडिया यानी नए तौर तरीके, नए तरीके के सोशलाइजिंग तकनीकों को लोग अपना रहे हैं। और मानसिक फुर्ती के लिए भी आजकल मोबाइल पर हम गेम्स खेलते हैं, पर चलिए इसी के साथ हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, गेम्स अगर खेलते भी हैं तो कुछ ऐसे गेम्स खेला करें जो आपको लॉन्ग रन में आपके मानसिक तनाव को डेफिनेटली वो दूर करें, साथ ही साथ आपको स्फूर्ति महसूस हो। और बिल्कुल ये भी

जरूर याद रखें कि बस घंटों भर आप ना बैठें, 2-3 घंटे वेस्ट ना करें। कई बार बस कुछ टाइम स्क्रीन के लिए ठीक है, पर बहुत लंबे समय तक अगर स्क्रीन भी यूज़ करी जाए तो ये भी हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए आशा करते हैं बचपन ऐसा कार्यक्रम के साथ आपने भी कुछ जाना होगा, हमें भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला और आपको हमारी प्रस्तुतिकरण पसंद आई होगी। यही आशा के साथ छोड़े जाते हैं ये प्यारा सा गाना और इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले सोमवार को बचपन ऐसा कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा, वैसे भूलिएगा नहीं, कल सुबह हम दोबारा से मुलाकात करेंगे आपसे सुबह का नजराना कार्यक्रम में। सुबह 6 बजे आएंगे आपको जगाने के लिए। तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत हसीन है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के ठीक 6 बजे हैं। नमस्कार, सोमवार 29 जून 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। माहे के स्टेट हाउस में सीशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने साझा हितों और इलाकाई सहयोग पर चर्चा की तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। इस बीच सीशेल्स ने स्टॉली नीति में भव्य समारोह के साथ अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई। आजसू अधिकारियों ने पहली बार प्रेस को संबोधित करते हुए 2026-2028 के रणनीतिक योजना के तहत 2026 के पहले 6 महीनों के जब्ती आंकड़े, तस्करी के नए रुझान और सार्वजनिक धारणा से जुड़े परिणाम प्रस्तुत किए। बजट के तहत स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम का उद्देश्य नागरिकों को ऊर्जा संक्रमण में शामिल करना है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को स्थापना लागत का 25% सब्सिडी मिलेगी। इस योजना से लगभग 3,600 परिवार लाभान्वित होंगे और पात्रता मानदंड जल्द तय किए जाएंगे। इस गुरुवार संसद के बाहर श्रमिक संघों के एक मंच ने तख्तियां और नारेबाजी के साथ पेंशन सुधार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नई प्रणाली श्रमिकों पर अतिरिक्त बोझ डालती है और एक मौलिक सामाजिक अधिकार को खतरे में डालती है। पश्चिम अफ्रीका में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए मॉरिशस के बैंकिंग ग्रुप MCB ने आइवरी कोस्ट के अबिजान में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले इस देश में मॉरिशस की कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। और विदेश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के अनुसार यूरोप में आई अभूतपूर्व शुरुआती ग्रीष्मकालीन हीट वेव के कारण 21 जून से अब तक 1300 से अधिक असामयिक मौतें दर्ज की गई हैं। जर्मनी, पोलैंड और चेक गणराज्य समेत कई देशों में तापमान के पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। पेशाब समाचार विस्तार से। माई स्थित स्टेट हाउस में आज सुबह सीशेल्स और मॉरिशस के साझा हितों पर चर्चा हुई। पैट्रिक एमिनी ने डॉक्टर नवीन रामगुलाम का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से अनिश्चित वैश्विक संदर्भ में अपने सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। मॉरिशस सीशेल्स संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक इस वर्ष पोर्टलुई में आयोजित की जाएगी। मॉरिशस सीशेल्स में एक उच्चायोग खोलेगा। वैलेरी काली, अदिति अवतार।
2: विक्टोरिया स्थित स्टेट हाउस में आज सुबह प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को सैन्य सलामी दी गई। ये सम्मान सेशेल्स के इतिहास के इस महत्वपूर्ण घड़ी में मॉरिशस की भागीदारी के लिए सेशेल्स की तरफ से सराहना और कृतज्ञता दर्शाता है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने लिनिटे स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय पैरेड के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी को बधाई दी।
3: Je voudrais remercier pour son invitation et sa show qu'ils ont été hier là, c'est extraordinairement bien.
2: मैंने इस आमंत्रण के लिए आभार प्रकट किया। कल का शो एकदम अनोखा और अद्वितीय रहा। इसके अलावा हमने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। हम दोनों छोटे टापू देश सिज के सदस्य हैं और हम दोनों ही जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके अलावा सेशेल्स भी हमारी तरह ईंधन सप्लाई की समस्या झेल रहा है। बढ़ते दामों के साथ हम देख रहे हैं कि एक दूसरे की मदद कैसे की जा सके।
4: इसके बाद दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की, जैसे जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे छोटे विकासशील टापू देशों की स्थिति तथा मौजूदा कठिन और अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच सहयोग की संभावनाएं आदि। मॉरिशस जल्द ही ज्वाइंट कमीशन की 14वीं बैठक की मेजबानी करेगा।
2: जल्द ही ज्वाइंट कमीशन की 14वीं बैठक मॉरिशस में लगेगी। इसके लिए हम एक तारीख तय करेंगे। साथ ही मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ने मॉरिशस में सेशेल्स के दूतावास की स्थापना करने का फैसला लिया है और यहाँ भी हमारा दूतावास खुलेगा।
4: इस बैठक के अंतर्गत पिछले मार्च महीने में मॉरिशस और सेशेल्स के बीच तय हुए 7 प्रोटोकॉल समझौतों पर और बातचीत के स्तर की संधियों पर भी गौर किया गया। ऐसा सहयोग जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद हो।
1: और कल रात सीशेल्स के लोगों ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने

0: के लिए स्टालिनी ते में शिरकत की और उन्होंने 3 घंटे से अधिक समय तक चले कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें उनके राष्ट्र के लचीलेपन, एकजुटता और एकता को उजागर किया गया। मंच पर पात्रिकी अमीनी के साथ उनके मेहमान श्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर नवीन रामगुलाम सहित अन्य लोग मौजूद थे। सेशल्स के राष्ट्रपति ने उस इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सराहना की जिसने 29 जून 1976 को स्वतंत्रता मिलने के बाद से उनके देश को प्रगति करने में सक्षम बनाया है। और इस बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कुछ शब्द बयां किए। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: जब मैं भारत की औपचारिक यात्रा पर गया था तब हम कुछ सहायता योजनाओं पर सहमत हुए थे। अब भारत ने इस लाइन ऑफ क्रेडिट को रेटिफाई किया है। इससे हमें विकास कार्यों के लिए करीब 20.5 बिलियन रुपए की रकम प्राप्त होगी। ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसके लिए इस पर हमें एक हल्का इंटरेस्ट चुकाना होगा, लेकिन इससे हमें मूल ढांचा कार्यों में सुविधा मिलेगी। इसके लिए मैंने मोदी जी का आभार प्रकट किया और साथ ही हमने खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। ईंधन सप्लाई को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर होगा। हम सेशल्स के काफी करीब हैं। हमारी संस्कृतियाँ, क्रियोल भाषा आदि समान हैं तथा सचिव सागर रामगुलाम और सर जेम्स मानचाम के जमाने से दोनों देशों के बीच अच्छे और घनिष्ठ संबंध हैं। जब मुझे आमंत्रण मिला तो मैंने यह आश्वस्त किया कि मैं यहाँ जरूर आऊँ, जिससे सेशल्स और मॉरिशस के संबंध और मजबूत हो।
0: अन्य खबरों में, जब्ती का लेखा जोखा, तस्करी के नए रुझान और सार्वजनिक धारणा। ये पहली बार है जब आजसू के अधिकारियों ने प्रेस को संबोधित किया है और अपने रणनीतिक योजना 2026-2028 के संदर्भ में 2026 के पहले 6 महीनों के अपने परिणाम प्रस्तुत किए हैं। ओलों देवी सिंह को सुनते हैं।
2: Une saisie presque 6 milliards roupies de cocaïne.
0: पिछले सालों की तुलना में गत साल को छोड़कर, क्योंकि पिछले साल ये 9 बिलियन रुपए था, अल्फा ब्रेवरी ने 6 बिलियन रुपए की लागत वाली कोकीन जब्त की थी। अतः पिछले साल के लिए 3 बिलियन रुपए का अनुमान लगा सकते हैं। आजसू ने 1,232 मामले की रिपोर्ट दर्ज की है और उसने 1,156 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1,156 लोगों में उपभोक्ता, डीलर्स और तस्कर शामिल है। पुलिस के स्तर पर अगर ये शब्द सुर्खियाँ बटोर रहा है तो ये बुरी भावना से ही किया गया है। बॉ काउंसिल के स्तर पर ये प्रतिबद्धता ली जा रही है कि हम ये शब्द हटाएंगे। फिर आजसू के स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। ये किसी पेशे पर वार करना नहीं था, क्योंकि पुलिस फोर्स विशेषकर आजसू के सदस्यों को भली भांति मालूम है कि संविधान में धारा 10(2) के तहत ये प्रावधान है कि आपको अपने पसंद का एक वकील चुनने की अनुमति है।
2: Au courant des dispositions de la Constitution sous la section 10(2) qui dit pour on a le droit constitutionnel retenir service un avocat de votre choix.
0: ये बजट के प्रमुख उपायों में से एक है जिसका उद्देश्य मॉरिशस के नागरिकों को ऊर्जा संक्रमण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम के तहत पात्र परिवार अधिग्रहण लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्राप्त करेंगे, जो प्रति इंस्टॉलेशन 75,000 रुपये तक सीमित होगा। पात्रता मानदंड इस सप्ताह के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। लगभग 3,600 परिवार इस सहायता योजना से लाभान्वित होंगे। एमसीबी पश्चिम अफ्रीका में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है। मॉरिशस के इस बैंकिंग ग्रुप ने अबिजान आइवरी कोस्ट में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पहल इस तेजी से बढ़ते देश के प्रति मॉरिशस की कंपनियों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है, जिसे आज अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक माना जाता है। अब्दुल बुलाकी, अदिति अवतार।
1: मॉरिशस का मर्शल बैंक ने आधिकारिक तौर पर कोजीवो में एक कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये देश सब सहारन अफ्रीका के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक केंद्रों में से एक के रूप में उभर रहा है। ये घोषणा मॉरिशस के सबसे बड़े बैंकिंग ग्रुप ने 18 जून को अबिजॉ में वहां के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विदेश मामलों की मंत्री नियाले काबा के साथ एक मुलाकात के बाद की। एमसीबी के लीगल हेड रोयल लॉम्बे कहते हैं, हमारा यहाँ भव्य स्वागत हुआ। हमने बहुत खुशी के साथ मंत्री को सूचना दी कि हम यहाँ बसने का आवेदन दे रहे हैं। अबिजॉ में मॉरिशस के ऑनरेरी कंसुल फ्रेडरिक लाम कहते हैं, ये कोजीवो की आर्थिक कारगरता विकसित करने के लिए मॉरिशन संस्थाओं पर गहरा विश्वास दर्शाता है। करीब 7% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ कोजीवो तेजी से विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा 30 मिलियन से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में मॉरिशस की दिलचस्पी सिर्फ वित्तीय सेवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि मॉरिशस की कई कंपनियां पहले से ही वहां अलग अलग क्षेत्रों में मौकों की तलाश कर रही हैं। मॉरिशस के लिए कोजीवो के ऑनरेरी कंसुल उदोराव अपाजी कहते हैं, टेरा ग्रुप ने कोजीवो में गन्ना पैदावार में बड़ा निवेश किया है। साथ ही आईबीएल ग्रुप मछली पैदावार और मवेशी पालन के साथ जुड़ा हुआ है। कोजीवो में बड़े पैमाने पर संसाधन मौजूद हैं, जिससे मॉरिशस को लाभ उठाना चाहिए। इस देश के पास पेट्रोल, गैस, कृषि सब हैं तथा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा कोकोआ उत्पादक है। दूसरी तरफ कोजीवो भी मॉरिशन विशेषज्ञता से फायदा उठा सकता है, क्योंकि मॉरिशस का भारत और चीन के साथ निर्यात की संधियां कायम हैं। इस तरह मॉरिशस कोजीवो से कोकोआ आयात करके चॉकलेट पैदावार कर सकता है। इसके अलावा कोजीवो एक बड़ा कॉटन उत्पादक भी है। पिछले मई महीने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने सहयोग और निवेश के नए मौकों की पहचान करने के लिए कोजीवो में एक बिजनेस मिशन का नेतृत्व किया था। इस यात्रा के दौरान शुरू हुई बातचीत अब दोनों देशों के बिजनेस ऑपरेटरों के बीच जारी है, जिसे मॉरिशस और अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक के बीच नई रणनीतिक साझेदारियों के नए आयाम खुल रहे हैं।
0: संसद के सामने हाथों में तख्तियां, नारे लगाते हुए और एक साथ उठती आवाजें इस गुरुवार श्रमिक संघों के प्लेटफॉर्म सड़कों पर उतरा, यानी आज, जिसका मुख्य उद्देश्य पेंशन सुधार का विरोध करना था। विरोध का मुख्य कारण ये था कि इस प्रणाली को श्रमिकों के लिए बहुत बोझिल माना जा रहा है और इसमें किए गए बदलाव उनके अनुसार एक मौलिक सामाजिक अधिकार को खतरे में डालते हैं। और अब फुटबॉल की बात करें तो इस विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा को एक साहसी दक्षिण अफ्रीकी टीम को हराने के लिए आखिरी पलों तक इंतजार करना पड़ा। एक गोल बस एक ही, लेकिन ऐतिहासिक, जिसने कनाडा को अंतिम 16 में पहुंचा दिया। अजमल मोइटब, अरविंद बिसेसर।
3: ग्रुप स्टेज का राउंड लगभग 2 हफ्ते 3 दिन और साथ में लगभग 72 मैच खेले गए। अब से नॉकआउट राउंड शुरू हो गया है। सभी 32 टीमें क्वालिफाई हो गई हैं और राउंड ऑफ 32 का मुकाबला तय हो गया है। इस वर्ल्ड कप का पहला नॉकआउट मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के बीच हुआ। मैच शुरू में सुस्त चाल से चल रहा था। दोनों टीमों को अच्छे मौके मिले पर गोल नहीं बन पाया। बढ़िया रक्षात्मक खेल को लेकर दक्षिण अफ्रीका टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि कनाडा गेंद पर अपना कब्जा बनाए रख पाया, लेकिन आखिरी समय में जाके दक्षिण अफ्रीका टूट गया। इंजुरी टाइम का दूसरा मिनट चल रहा था और कनाडा का खिलाड़ी स्टीफन उस्ताकुयो के शॉट पर ये गोल बनता है। कनाडा 1-0 से मैच जीत लेता है और राउंड ऑफ 16 विच एम द फिनाल में पहुंच गई ये टीम। ये एक ऐतिहासिक क्वालिफिकेशन है। दक्षिण अफ्रीका ने अच्छा खेला, लेकिन आक्रामक खेल की कमी थी, इस वजह से बाहर हो गई।
0: और राउंड ऑफ 32 के मुकाबले लगातार जारी हैं, जिसमें आज रात और कल सुबह के लिए 3 बड़े मैच निर्धारित हैं। ब्राजील का मुकाबला जापान से, जर्मनी का सामना पराग्वे से और अंत में नेदरलैंड्स की भिड़ंत मोरक्को से होगी।
3: राउंड ऑफ 32 का दूसरा मैच आज रात 9 बजे ब्राजील और जापान के बीच खेला जाएगा। ब्राजील की टीम हमेशा अपने आक्रामक शैली, खेल में रचनात्मकता और किसी भी समय गति बढ़ाने की क्षमता से बहुत प्रसिद्ध है और उसका सामना है जापान से, जो मजबूत सामूहिक संगठन एवं अनुशासन और तेजी से ऊंचा दबाव बनाने की क्षमता रखने वाली टीम है। जर्मनी का मुकाबला रात के 12:30 बजे पहागवे से होगा। दी नेशनल मानचाफ्ट कब्जा और तीव्रता पर आधारित खेल के साथ विश्व पटल पर अपना ऐतिहासिक दबदबा वापस पाने की कोशिश करेगी। उसके सामने है पहागवे की टीम, एक प्रबल प्रतिद्वंद्वी जो दक्षिण अमरीकी जोन से आई हुई है और इस टीम को हराना आसान नहीं होगा क्योंकि ये टीम खाली जगह के बंद और सेट पीस पर पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अंत में 5:00 बजे एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला है नेदरलैंड्स और मोरक्को के बीच। डच टीम में प्रतिभाशाली पीर ही है और संरचित खेल होता है। उस तरफ मोरक्को की टीम जो पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, ब्राजील को रोका पहले मैच में, उसके लिए इस टीम से बच के रहना होगा।
0: और शुरुआत में हम आपको बता रहे थे कि कल रात सेशल्स के लोगों ने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए स्तालिनीते में शिरकत की और उन्होंने 3 घंटे से अधिक समय तक चले कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें उनके राष्ट्र के लचीलेपन, एकजुटता और एकता को उजागर किया गया। रजनी बिकर।
4: 29 जून 1974 स्तालिनीते में भारी भीड़, माही के रहने वाली सेशल्स वासी और साथ में टापुओं के भी निवासी मौजूद। गणराज्य के राष्ट्रपति और उनके मेहमानों के सामने एकत्र हुए झंडे को फहराते हुए देखने के लिए। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के लिए राष्ट्रीय परेड की शुरुआत सेशल्स और विदेश से आए कुछ लोगों के पैराशूट से उतरने के साथ हुई। स्थल पर परेड की झलक, द्वीप समूह की ताकत और साथ में मित्र देशों की इकाइयां भी, जैसे चीन, भारत, मॉरिशस और रूस। एक भव्य परेड का आयोजन, भीड़ और यहां तक कि महानुभावों ने भी अभिवादन किया। राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने मजबूती, एकता, भाईचारे और सहयोग की सराहना की, जिनकी बदौलत उसकी जनता एक अलग पहचान बना पाई। एक ऐसा देश बना सेशल्स जो एक बेहतर भविष्य के लिए अभी भी कार्यरत है।
5: 50 years ago, Seychelles took its rightful place among the community of nations as a sovereign and independent republic. Since then, we have remained steadfast in our commitment to friendship, mutual respect, peaceful coexistence, and constructive international cooperation. The progress we celebrate today has been made possible through the resilience and determination of the Seychellois people, strengthened by the friendship, solidarity, and cooperation of our international partners. For this, we express our sincere gratitude.
4: देश के नौजवानों की ओर से एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत, जिसमें सेशल्स राष्ट्र के निर्माण की झलक मिली।
0: और ये बजट के प्रमुख कदमों में से एक है, जिसका उद्देश्य मॉरिशस के नागरिकों को ऊर्जा संक्रमण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम के तहत पात्र परिवार अधिग्रहण लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्राप्त करेंगे, जो प्रति इंस्टॉलेशन ₹75,000 तक सीमित होगा। माधवी जागरनाथ, अदिति अवतार।
6: घरों की छतों पर सोलर पैनल बिठाने का प्रोग्राम इस साल एक नया आयाम ले रहा है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन स्कीम के तहत योग्य परिवारों को पैनल खरीदने की लागत का 25% भाग सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। ये रकम हर इंस्टॉलेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा ₹75,000 तक हो सकती है।
7: Le gouvernement invite avec comme si vous donnez un boost à ce projet là pour donner 75,000 rupees. Right. À chaque famille qui est intéressée, mettre un système solaire, l'eau de la maison. Nous, au niveau du CEB, nous faisons le nécessaire pour l'installation le système, techniquement, l'application jusqu'à le commissioning. Mais pour le grant, c'est la DBM qui occupe la partie grant. Alors, il y a une roadmap qui nous met en place, qui nous peut finaliser, qui nous pouvait avec une étape à suivre, qui nous permet le nouveau website, et nous pouvons expliquer le client quand il vient d'un customer service, à la qui étape il besoin faire pour être capable de bénéficier de sa grant.
6: प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सीबी रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए एक समर्पित विभाग कायम करेगा।

0: d'ici, dans, lui dis, à peu près un à deux semaines maximum, le besoin de finaliser tout, inclus, et dans ce qu'il appelle le « eligible customer ». Alors, le « eligible customer », vous pensez qu'il peut être une grille de revenus qui peut être déterminée, que le ministère des Finances et le ministère de l'Énergie peut travailler.
1: इस सहायता योजना के लिए बजट में लगभग 270 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे इस साल करीब 3,600 परिवारों को फायदा होगा।
2: विदेश की खबरों में, वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी भूकंप के बाद से अब तक कम से कम 1,450 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि विदेशी सहायता और राहत कर्मियों की बढ़ती संख्या आपातकालीन कार्यबल को मजबूत करेगी और मानवीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने के अनुसार यूरोप में अभूतपूर्व शुरुआती ग्रीष्मकालीन हीट वेव सैकड़ों लोगों की असामयिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार हो सकती है। सुमेरा अकबर अली।
3: चेक रिपब्लिक ने इतवार को जून का सबसे गर्म दिन दर्ज किया। राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग ने कहा कि 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पोलैंड में भी तापमान सबसे उच्च रहा। रोम में सड़कों पर स्मॉग टैक्स समाधान ढूंढे गए ताकि लोगों को धूप और इस तेज गर्मी से राहत मिले। वहां लगातार दूसरे दिन के लिए 41.1 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यूरोप भर में एक ऐसा भी देश नहीं है जो मौसम गर्मा के असरात से दरकिनार है। बुजुर्गों को जितना तक हो सके घर पर ही रहने को कहा जा रहा है। यूके में दो दिनों के लिए मजबूरन स्कूली छुट्टियां भी दी गईं। कुछ मुल्कों में खास स्मार्ट घड़ियों से अधिकारी निगरानी रख रहे हैं।
2: और अंत में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल रजनी बिकर के साथ।
4: दक्षिण पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और वर्षा होती रहेगी। मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटो पर कभी कभी सामान्य से तेज बारिश होगी। कुछ इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे और विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाएगी। दिन के दौरान बाद में मौसम में सुधार आने लगेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी एवं पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20-23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19-22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:41 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:46 पर सूर्योदय।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:23 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। राय रोड सुयाक में 69 साल के 69 years old के जनाब मोहम्मद हुसैनी, जो उस्ताद गोरा भाई नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात आठ बजे उनके घर रारोद सुयाक से उठाकर सुयाक का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8 PM। ब्रांच रोड लालमाटी में 69 साल की 69 years old की कुमारी पद्मावती बसावा, जो लीला नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर लालमाटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रॉयल रोड आलबियों में 92 साल की 92 years old की श्रीमती अहिल्या काली, जो शादो नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10:30 उनके बेटे सुचित दुखिया के घर रारोद आलबियों से उठाकर मेजिन बॉम्बू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30। रारोद

0: उस दुफलाक में 71 साल के 71 years old के श्री धनराज बोयरो, जो कुमार नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुकमीन भोइडो के घर रॉयल रोड पर दुफलाक से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। डिस्पेंसरी रोड थ्रियोली में 88 साल के 88 years old के श्री राणा प्रताप ताकुरी, जो राणा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले बैंक ऑफ मॉरिशस के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2:45 उनके घर डिस्पेंसरी रोड थ्रियोली से उठाकर तेमिनिस थ्रियोली की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:45 PM। थ्रेबो नंबर 2 वाकवा में 100 साल की 100 years old की श्रीमती शांति सवाराम, जो दादी लोंगान नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे प्रेमपथ चमन के घर थ्रेबो नंबर 2 वाकवा से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। स्कूल लेन लागोजा में 91 साल के 91 years old के श्री सेलिया सनासी जग्या, जो रामू नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 8:30 उनके घर स्कूल लेन लागोजा से उठाकर माहिजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 8:30। सिबरत लेन फ्लोरियाल में 73 साल की 73 years old की श्रीमती मारी देजरे द्वारिका, जो पुम नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके पति श्री ईश्वरलाल द्वारिका के घर सिबरत लेन फ्लोरियाल से उठाकर अलीब्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। प्रेमियर श्रीमय मारीजानी रोजबेल में 90 साल की 90 years old की श्रीमती धर्मावती रामदीन, पैदाइशी नाम राऊ और जो मामा अनिल नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 उनके बेटे सुनील रामदीन के घर प्रेमियर श्रीमय मारीजानी रोजबेल से उठाकर मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 नून। रॉयल रोड मोन्सिडा में 80 साल की 80 years old की श्रीमती शांति बायलक्सिमो, पैदाइशी नाम तानू और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 9:30 उनके बेटे आत्माराम लक्सिमो के घर रॉयल रोड मोन्सिडा से उठाकर मेजिन कॉलोमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Radio, 24 hours a day.

0: सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल मंगलवार 30 जून 2024 दिन के 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक प्लेनवेथ और आसपास के इलाकों में रू अली, रू कलकत्ता, रू इद्रिस गुमानी और इमाम बाकस सबदार में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजली प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

भजले प्रभु का नाम। समस्त श्रोताओं, आप लोगों का हार्दिक अभिवादन करते हैं और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भक्तिमय वातावरण में आपका हम शानदार अभिवादन कर रहे हैं। तो चलिए, कहते हैं ना, जब अपने कदमों पर हम विश्वास रखते हैं तो मंजिल दूर नहीं लगती। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

श्रोताओं, जब हम विश्वास की बात करते हैं तो ये वह शक्ति है जो कठिन से कठिन राह को भी आसान बना देती है। जब मन में विश्वास होता है तो हर चुनौती एक नए अवसर का रूप लेती है। विश्वास केवल दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर और विश्वास पर भी होना बहुत ही आवश्यक है।

श्रोताओ, कहते हैं कि जिंदगी की राह में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर दिल में विश्वास बना रहे तो हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर अवश्य आती है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

भजले प्रभु का नाम, श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बल दे रहे हैं विश्वास पर। कहते हैं कि विश्वास ही वह ताकत है जो गिर कर भी हमें फिर से उठना सिखाती है। तो चलिए इसी सीख के साथ कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। श्रोताओं भजले प्रभु का नाम, हम इस कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं, साथ निभाने के लिए धन्यवाद। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

मोहतरम सामीन, हौज़े कौसर क्या है? कौसर जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के हैं और वो मोती और याकूत पर बहती है। उसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार, उसका पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद है। बहावाला तिर्मिज़ी शरीफ।

हौज़े कौसर की एक कैफियत। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़े कौसर के बर्तन सितारों के बराबर होंगे, इससे जो भी इंसान एक घूंट पी लेगा तो हमेशा के लिए उसकी प्यास बुझ जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमें हमेशा नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: नमस्ते हमी के सब श्रोता लोग के अभी 9:01 होलवा और हमने के है मुलाकात भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में शुरू हुआ था। भोजपुरी तड़का हर रोज नियन हमने प्रस्तुत करब जा 11 बजे लेक तो हर खातिर लाइन खुलल बा 402-8085 पर या फिर मैसेज भेजे खोज बजा तो 5251700-5 पर भेजे जा मैसेज और जहाँ हो बजा खुश खुश रहिए जा हंसते रहिए जा मुस्कुराते रहिए जा मुस्कान जन बा ई बिखरते रहिए जा। हमने के कार्यक्रम में हमने लेके आए हैं जा जुन जुन गाना वो सब तो हमने तरह के सुनवावे के कोशिश करब जा बाकी सबसे ज़्यादा हमने तो हर पसंद के गाना सुनवाओ अब जा कौन गाना पसंद करेला ये हमने के बढ़िया जाए दोनों नंबर पर जन दिल्ली जाते हो लोग के और हमने के पहला गाना हमने वासुदेवा मोहन जी के गावल तो हर खातिर प्रस्तुत करब।

रोहित जी मंगले हवन निको का ना रुद्रदत्त पुकंज के गावल रोहित जी रहे लन गांव बिले और ई गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर विशेष तौर पर अपन पत्नी करुणा जी खातिर।

पानी के बुलबुला बिस्वजीत महेश जी के गावल, महेश बिस्वजीत जी के गावल गाना हमने आत्माराम जी के पसंद पर बजावत है जा। आत्माराम जी बेले ऐसे गाना मंगले हुआ अपन बहन ललिता, छोटी प्रभावती और सुदेवी जी खातिर और बेलिया के पूरा स्नू परिवार खातिर।

पानी के बुलबुला के बाद चला हमने दादा दादी की कहानी सुनी जा गासन सिंगारों जी की आवाज़ में, और ये गाना हमने गायत्री जी खातिर बजवाओ था जान वेल फ्रांस से गायत्री जी अपन बेटा अजय खातिर, मायबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर, मोतालों के भाभी शकुंतला खातिर, और नोवेल फ्रांस के सखी गीता बाई खातिर मंगले हवन।

चला व्यास पर सिनू जी के गावाली गीतवा सुनी जा, हम भी फटफटवा में बैठ के गीतवा सुनी जा। फटफटवा वाला गाना हमने से मंगल हवन रोजिल से लेखराज जी, लेखराज जी गाना अपन पत्नी शांति खातिर मंगल हवन और बेटी सुविधा के नाम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का में चला हमने विनोद सिद्धार्थ जी के ठेला ठेली गाना सुनी जा और ये गाना हमने बजवाए लजा ललिता जी खाते ललिता जी त्रियोले से मंगले होन एगो गाना और ये विनोद सिद्धार्थ जी के गाना उनका नाम करत हैं जा और ललिता जी ये गाना अपन भाई सुरेश के नाम करत हवन भौजी शोभा और भतीजा प्रवेश के नाम उनकर बहिन सुदेवी ज्ञानी खातिर प्रभावती जी छोटी जी आत्माराम जी और हरीश जी खातिर और छोटी जी खातिर स्पेशली गाना मंगत हवन बुध के उनकर जन्मदिन बाद उनकर जन्मदिन के अवसर पर ढेर शुभकामना हमके पूरा टीम बगल से और ललिता जी बगल से छोटी जी तोहर जन्मदिन पर तोहरा बहुत बहुत सुकून बहुत शांति मिली।

गाना चंचल थवाजा संतोष महादेव जी के गावल गाना है। शांति जी त्याकूर से गाना मंगले हवन दागोचक के मराठी परिवार खातिर और अपा दागोचक के अपन भगीना ओम खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का में चरसु देवी जी के नाम करी जा हमनी। अगला गाना ये गाना है आदेश ठाकुर प्रसाद जी के कावल, और ये गाना हमने माफ करिए लक्ष्मी ठाकुर प्रसाद जी के गावल, नया जमाना गाना है। और हम

नी ये गाना बजावत है जा वाकवा के सुदेवी जी बगल से उनका पूरा परिवार खातिर थैले के दीदी ललिता खातिर और कुशल परिवार खातिर आत्माराम भैया खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेगा के रामरतन परिवार राम गुलाम और कोवारू परिवार खातिर।

बजवाई राजा राजन राजन लक्ष्मण जी खातिर लाफलोगा के उनकर पत्नी माला खातिर उनकर बेटी प्रगति और प्रार्थना खातिर बहन मानती खातिर और भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर और उनकर साली जी खातिर।

चढ़ल बा मड़ मिट में गरम पानी गाना हमनी संतोष महादेव जी के आवाज में सुनब जा अमृता जी के पसंद पर मौदार बे के अमृता जी मंगले होवन गाना इतु परिवार खातिर सैंपिया के महादेव परिवार खातिर और माला बिहारी जी खातिर ओलिए के

विक्रम कलाचंद जी के गावली गाना हमने के पूर्वज लोग के बात करत हवन और ई गाना हमने बजावत है जा लीलो जी खातिर। लीलो जी रहलन पदोपी माँ और अपन तीन गो बहिन खातिर मंगले हवन संध्या विशालिनी और मेनका खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: चल अभी कुछ सुने जा संतोष महादेव जी के और एको गाना, और ई गाना हमने रूपा जी खातिर बजावत है जा फोन दिशा के रूपा जी ई गाना मंगले होवन अपन सब पूरा परिवार खातिर और अपन सब सहेली लोग खातिर। चल सुनी जा हमने संतोष महादेव के।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में अभी कुछ हमने सरिता बुधुज के एल्बम के गाना सुनब जा। गाना हमने रिफ्ली कॉम्फ्ला के अनीता जी के फरमाइश पर चलावत हैं जा उनकर पूरा परिवार खातिर और उनकर संगत यालो खातिर।

और चला हमने भाई अब्बू जी के पसंद के गाना सुनब जा। अब्बू जी वाकवा से गाना मंगले हवन आफेज असलम आया जायान जाहिरा और काला चोती जी खातिर साथ में रईस जी खातिर और अपन सखतिया अप्पी और उनकर पत्नी जी खातिर संगे संगे ये गाना रकीबा जी खातिर मंगले हवन अब्बू जी उनकर खातिर दुआ करत हवन कि उनकर सेहत अच्छा रही।

0: अभी जो गाना हम सुनत हैं जा महन हरपाल जी के गावल गाना है और बीतल दिनवा के बारे में बोलत हवन। ई बीतल दिनवा वाला गाना सुने खोजत हवन तो ये से हरि प्रेम बिहारी जी अपन सब बेटा लोग खातिर और पूरा परिवार खातिर मांगत हवन ई गाना।
1: सर पे

आराम जो हल्के संगे संगे चला गमट करी जा जुबेदा गाना सके और ई गाना हमने से संतोष जी मंगले हवन बेल दे दिया से।

विजय राव जी मेहनत पर बात करत हवन और मेहनत के एक किस्सा रवीन जी मंगले हवन पूरा सुखी परिवार खातिर।

अभी हमने त्रिलोक गंगा जी के गावली को ऐसा गाना सुना अब जा जिनमें हमने के मोरिस देश के कितना बड़ाई करल गलबा और इनके देश के सुंदरता के बखान करल गलबा।

सुनीतानंद को जिके गावली गाना के बाद चला सुनी जा हमने विजय गणपत जिके गावली गीत दोस्ती होला और दोस्ती हमने तनी भाई ते रह जा चाहे हमने के कार्यक्रम के समय भी पूरा हो गल अभी 11 बजे होला बा और ये हमने के कार्यक्रम के समय तो पूरा हो ये जाए बस हमने की दोस्ती बरकरार रही यही उम्मीद के संगे संगे तोहला से विदा ले बाब अभी थोड़ा घड़ी में सुनिया जा आज के हमने के सुनहरे पल कार्यक्रम और सुनहरे पल कार्यक्रम में सुनिया जा आज के सिलेक्ट करल पुराना गाना तो चला ई गाना के संगे संगे हमने के मुलाकात भी समाप्त हो जाए आवतला फिर मिलब जा शुभ रात्रि नमस्ते।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज़
1: पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
3: सुनहरे पर रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनेशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से स्वागत है इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मोहम्मद रफ़ी जी, लता मंगेशकर, किशोर दा और मुकेश दा के गीतों को दिल से पसंद करते हैं, तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए एक खास तोहफा है। तो चलिए शुरू करते हैं सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है। इनमें मोहब्बत है, इनमें जज्बात हैं और जिंदगी के हर रंग छुपे हुए हैं। तो आज रेडियो मॉरिशस पर हम मिलकर सुनेंगे वो गीत जो हर जनरेशन के दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। बिल्कुल जी, सुनहरे पल में कुछ गिने चुने नगमे खासकर हमारे प्यारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

हम तो चाहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सोचे वो जमाना जब कैसेट चलती थी, रेडियो पर गाने रिकॉर्ड किए जाते थे और हर गीत दिल में उतर जाता था। आज सुनहरे पल में हम उसी खूबसूरत दौर को फिर से जिंदा करेंगे, तो साथ बने रहिए और लुफ्त उठाइए इस संगीतमय सफर का किनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आपके प्यार और साथ के बिना ये महफिल अधूरी है। आज फिर हम लेकर आए हैं यादों का, जज्बातों का और सुरों के सजी एक अनोखी महफिल। सुनहरे पल में आपका दिल से तो हमने स्वागत कर लिया, तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अगला नगमा हमारी तरफ से खासकर आपके लिए सुनहरे पल में।

जिंदगी कितनी भी क्यों ना आगे बढ़ जाए मेरी जान, कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमें वापस लेके जाते हैं उन दिनों में जब जिंदगी थोड़ी सी मासूम थी, रिश्ते थोड़े से गहरे थे और खुशियाँ बहुत छोटी छोटी बातों में मिल जाती थी। आज सुनहरे पल में हम उन्हें यादों को फिर से महसूस करेंगे, तो बस दिल को हल्का कर लीजिए, मुस्कुराइए और चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर जहाँ पे हर एक गेट हमने कर दी है आपके नाम।

उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आपने आज दिल से एंजॉय किया। फिलहाल के लिए हमारा तो वक्त हो चला जाने का, आप हमें इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और सुनहरे पल में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, एंड बस ऐसे ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना, मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

हे शिवानी, तू लगती है नानी, बनेगी कब रानी। हे हे शिवानी।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग रेडियो।
1: तेरी बाहों में हम जीते मरते रहे यूं।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: दिला दे घर बना दे घर, दिला दे घर।
2: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

बोल संक, तुम्हारी ऐसे तैसे ढपक ढपक लगे हुए हजाम हजाम कर बंद करो ये नौटंकी। अरे मुँह का देख रहा है, किसी राजा महाराजा को राजू राजू कह कर बुलाओगे का? ये बिलुआ को हजाम नहीं, बार बार कहकर बुलाओ बार बार, और वो भी इज्जत से बिल्लू बार बार, समझा गया? नहीं नहीं दही खींच कर पन्हैया एक ससुरा मार दे तो पटाक से।